अभी आपने सुना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में नकुल मल्होत्रा का गायन राग ललित में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा है। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 6:10 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं ये रचना सुरेश वाडेकर की आवाज़ में।

ईश्वर का नाम ध्यान गुणगान जो शांति और सुकून देता है वो और कहीं नहीं मिल सकती। वही हमें ऊर्जा देता है, इस जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और एक शांति जो सुकून हमें देता है, वो सभी को ज़रूरत है उसकी, उस शांति की। सभी उस तलाश में है, क्योंकि इंसान खुश रहना चाहता है या कुछ भी चीज़ें अच्छे चाहता है तो किस लिए चाहता है? कि ताकि उसे शांति मिले। पर हम कहेंगे कि सबसे परम शांति, जो अच्छी शांति होती है, जो आपके मन को सुकून दे, वो ईश्वर के गुणगान में, उन्हीं के भजन ध्यान में है।

भाई तरलोचन सिंह रागी की आवाज़ में भी हम सुन रहे थे ये शब्द। और इसी के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं चिंतन भगवान महावीर के दर्शन पर।

इतिहास कहता है ईसा से 599 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मां त्रिशला की कोख से राजकुमार वर्धमान का जन्म हुआ। शीघ्र ही उन्होंने घर छोड़ दिया और वर्षों कठिन तप कर एक ऐसे दर्शन की आधारशिला रखी जिसे समझकर अगर आदमी जीवन जीने लग जाए तो सचमुच पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आए। जिनेंद्र ने इस पूरे दृग विषय को देखकर 7 तत्व माने हैं। ये हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें जीव अजीव को द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य व्यक्त अवस्था का नाम है, अव्यक्त अवस्था का नाम भाव है। अनादि अविद्या के कारण कर्म जीव में प्रवेश कर जाते हैं। जीव के बाद अजीव तत्व के 5 भेद हैं: धर्म, अधर्म।

मगर जाने अनजाने हम में से हर कोई हिंसा करता है। करित हिंसा आदमी खुद करता है, कारित हिंसा वह है जिसे आदमी दूसरों से करवाता है। तीसरी हिंसा है अनुमोदन हिंसा, जिसे आदमी होते हुए देखता है मगर कहता कुछ भी नहीं। दूसरे महाव्रत सत्य के विषय में सबसे बढ़िया उदाहरण उनका है जिन्होंने हाथी को सूप, खंभा या रस्सी बताया था। महावीर कहते हैं, आदमी का अपनी प्रकृति को पहचान लेना ही सत्य है। और तीसरे महाव्रत, ब्रह्मचर्य को साधे बिना सत्य की समझ नहीं होती। चौथा महाव्रत अचौर्य है। मन में चोरी का भाव भी अगर पैदा हो जाए तो जिन अनुशासन कहता है चोरी हो गई। परिग्रह यानी संग्रह यानी होर्डिंग का सिद्धांत। तीर्थंकर महावीर को मानव मन की समझ थी, तभी तो उन्होंने अपरिग्रह को पांचवा महाव्रत माना। भगवान महावीर कहते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार के कारण आश्रव होता है। अगर आदमी क्रोध, मान आदि छोड़ दे तो भाव और द्रव्याश्रव दोनों से बच जाता है। बाहर से आने वाले हर प्रभाव को रोक देना संवर कहलाता है। जिन अनुशासन में कर्म के प्रवेश को रोकने के 62 उपाय हैं, जो सम्मितियां और गुप्तियां कहलाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, आश्रव और संवर से जो जीव बच जाता है वह निर्दोष हो जाता है।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन भगवान महावीर के दर्शन पर। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस के बाल कांड का भाग 62।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस के बालकांड का भाग 62। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेशः हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमं अन्तिमं च चरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्णखनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नीर अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः।

0: भारतम् इटली च सांस्कृतिकविनिमयं प्रवर्धयितुं प्राचीनसभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुञ्च द्विसहस्राब्दस्य सप्तविंशतितमं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतरसम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां पशुपालकानां मत्स्यपालकानां कृषिवैज्ञानिकानां श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मलासीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतमस्ति तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबंगालराज्ये दक्षिण चतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना सप्तवादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं षड्वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य षड् प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरंगतः तीव्रतापतरंगस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है।

0: भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक ओला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगी। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के 1 साल से भी कम समय बाद हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said, India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production. India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said, stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and

अभी आप सुन रहे थे संगीते का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आपने सुना निशा रे की आवाज़ में भजन। तबले पर संगत कर रहे थे सलीम अहमद, बांसुरी पे विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

बिल्कुल, सुबह हो गई है और सुबह का जो ये वक्त है ये है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीतू भरी गुड मॉर्निंग का। और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। सुबह की ताज़ी हवा, चाय की खुशबू और प्यारे प्यारे गीतों का साथ वाकई दिन की शुरुआत अच्छी लाजवाब बनाएंगे ये सब। और बहुत प्यारे प्यारे गीत हम लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए ये अगले कुछ मिनटों तक संगीत के सुहाने सफर में हमारे साथ चलने के लिए। और एक और बहुत ही प्यारा सा गीत मोहित चौहान की आवाज़ में सुनते हैं।

वाह क्या बात है, संगीत सच में मन को सुकून देता है। और दोस्तों सुबह का जो समय है ना, वो सिर्फ नए दिन की शुरुआत नहीं बल्कि नए विचारों और नए उम्मीद जो उम्मीदें होती हैं आपकी, उसका भी समय होता है। और अगर आपका दिन पॉजिटिव सोच के साथ शुरू हो जाए तो पूरा दिन शानदार गुजरता है, क्योंकि जब आप खुशी के मूड में होते हो तो यूँ कहें कि आप पॉजिटिव जो विचार रखते हैं तो उससे क्या होता है कि आप है ना सुबह सुबह पूरी ऊर्जा से भर जाते हैं, और ऐसे लगता है कि सब कुछ अच्छा लगता है। और कोई चीज़ बेकार भी हो तो आप उसे इग्नोर फटाफट कर पाते हो। तो पॉजिटिव विचार हो सुबह सुबह और मूड फ्रेश हो तो वाकई अच्छा लगता है। और साथ में बहुत ही प्यारे प्यारे गीत सुन रहे हो तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरह से कहा जो कहते हैं ना, गीत भी एक थेरेपी है, संगीत थेरेपी है जो मन को सुकून देता है और एक तरह से अलग सी शांति भी आप अनुभव कर सकते हो। और बाकी में गीतों में आप भूल भी जाते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, और एक सोच जो होती है ना वो और अच्छी और

बहुत कुछ ढूंढता है हमारा दिल जिंदगी सही में, कि बहुत सारे हमारे ख्वाब होते हैं, ख्याल होते हैं कि बिल्कुल ये पूरे होने चाहिए, ये हमारे काम पूरे होने चाहिए। और मैं तो कहूँगी कि ज़रूर पूरे होने चाहिए, एक पॉजिटिव सोच के साथ और कड़ी मेहनत के साथ सारे ख्वाब पूरे होते हैं। और कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आता ना तो कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, तो ये समय भी एक तरह से अच्छा है, क्योंकि एक तरह से आप उस समय आप अपने आप पे मनन करते हो और रिक्रिएट करते हो। और यूँ कहें कि कभी कभी उसका भी एक अपना लुत्फ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अब सुनते हैं एक और प्यारा संगीत।

हैं कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं प्यारे प्यारे गीत लाएं आपके लिए और आप जिन्हें सुन के यूँ कहें कि बहुत खुश हों और एक ऊर्जा नई आपके जीवन में संचार हो ऊर्जा का, और बहुत ऊर्जा के साथ ही आप अपने कामों में लगे। और ये जो कार्यक्रम है, आप बिल्कुल कहें कि अंतिम पड़ाव पे आ गया है और खत्म ही होने वाला है, तो मुझे तो इजाज़त दीजिए। आपके लिए तो हम ये कहेंगे कि जो सुबह है आपकी बहुत सुहानी हो और पूरा दिन ही अच्छा बीते, और एक और पॉजिटिव सोच के साथ और एक यूँ कहें नई शुरुआत करें। और हर एक दिन, हर एक पल एक नई शुरुआत होती है। अपने आप को खूब एंजॉय कीजिए, अपना खूब ख्याल रखिए, सेहत का भी और अपनी खुशियों का भी ख्याल रखिए। यही हम आपसे कहेंगे कि अपने पर फोकस ज़रूर करें, क्योंकि आप हैं तो दुनिया है, यही एक सत्य है। तो इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त, मुझे यानी शोभा शर्मा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पर जाइएगा कहीं नहीं, एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत संगीत आपके इंतज़ार में इस कार्यक्रम में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को

0: और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने मतदान

0: केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
1: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट आपका और कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
2: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी, चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से

0: their names. The video has been viewed over 11 million times. The Pioneer writes, PM Modi's melody gift to his Italian counterpart sends internet into a frenzy. The Asian Age writes, after talks with Putin, Xi calls for immediate end to West Asia war. Hindustan Times headlines, talks in final lap, strikes if no deal, says Trump. Iran says conflict will expand beyond region if US resumes attacks. Financial Express headlines, RBI lines up $5 billion swap to aid liquidity. In the growing market of cosmetics, Central Drug Standard Control Organization has issued an advisory saying cosmetics can only be rubbed, sprayed or sprinkled on body. The newspaper headlines, no cosmetic job with jabs, warns drug regulator. The Indian Express in an exclusive writes, working in my own grave, how workers are training robots that may replace them. The news item writes about workers in factories who are asked to wear smart glasses throughout their day. The exercise reflects a growing global push by AI and robotics companies to gather what's called egocentric data, first-person recordings of human activity that can teach machines how people perform physical tasks. And finally, The Economic Times writes, Google rejigs iconic search box for AI era, adding Google is redesigning its iconic search box and adding new artificial intelligence coding tools in its first step to expand influence in the age of AI. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पांच मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुज़ाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हल्के में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। इससे कबल कल भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को खुसूसी कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया, जो बाहमी ताल्लुकात में एक अहम कदम है। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें ज़राअत, अहम मादनियात, आयुर्वेद, साइंस, टेक्नोलॉजी और भारत से भारतीय नर्सों के इटली जाने में सहूलत पैदा करना शामिल हैं। दोनों मुल्कों ने टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने की रोकथाम से मुतालिक मुफाहिमत नामों पर भी दस्तखत किए। रोम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुश्तरक अखबारी बयान में कहा कि इटली दुनिया भर में डिज़ाइन और दुरुस्तगी के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान अपने हुनर, सलाहियत और कम खर्च इख्तिरा के एक पावर हाउस की है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली डिज़ाइन तैयार करने और दुनिया के लिए मुहैया कराने के उसूल पर आगे कदम बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और इटली के दरमियान दिफाई सनती खाके के तहत साजो सामान मिलकर तैयार करने की राह हमवार हुई है।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: पेश है एक रिपोर्ट।
4: वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कामयाब दौरा भारत के बैन अलावामी ताल्लुकात और सकाफती ताउन को मजबूत करने की उनकी जारी कोशिशों का हिस्सा रहा है। वजीर आजम मोदी का यह इटली का पहला दो तरफा और मजमू तौर पर तीसरा दौरा था। उनके इस दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम प्रोग्राम और सरगर्मियां अंजाम पाईं। उन्होंने इटली के सदर सर्जियो मटेरेला से मुलाकात की। उन्होंने वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी के साथ वफद की सतह की बातचीत की, जिसमें भारत और इटली के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की गई। खुराक और ज़राअत की तंजीम के उनके दौरे का मकसद कसीर जहतिया और आलमी सतह पर खुराक की यकीनी फराहमी के भारत के अज़्म को मुस्तहकम करना था, जहां उन्हें अहम यूएन एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। दोनों फरीकों ने 2027 के लिए सकाफत और सियाहत के इटली भारत साल के आगाज़ का भी फैसला किया। उन्होंने पुरजोश भारतीय और इतालवी फनकारों से भी मुलाकात की, जिन्होंने रोम आमद पर उनका इस्तकबाल किया। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान सकाफती तबादलों को फरोग देने और मुजाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझबूझ को बढ़ावा देने और सकाफती सिफारतकारी को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात सिर्फ सियासी और इकतसादी राबतों के जाविये से ही नहीं देखे जाते, बल्कि अवाम और मुआशरों के दरमियान रिश्तों से भी इनकी अक्कासी होती है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल गूगल, मेटा और टेलीग्राम समेत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की और मुकाबला जाति इम्तिहानात से मुतालिक गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात, खासतौर पर टेलीग्राम चैनल्स और नामालूम ऑनलाइन ग्रुपों के जरिए गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। 21 जून को दोबारा होने वाले नीट यूजी इम्तिहान से कबल ये मीटिंग अहमियत की हामिल है। हुकाम ने कहा है कि अहम इम्तिहानात से पहले इस तरह के कई चैनल बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाते हैं और पेपर लीक होने के फर्जी दावे करने लगते हैं, जिससे तलबा और वालिदैन में गैर ज़रूरी तौर पर घबराहट, फिक्रमंदी और इबहाम की कैफियत पैदा होती है। मगरबी बंगाल में जनूबी 24 परगना जिले के फाल्टा असेंबली हलके में आज दोबारा पोलिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी कमीशन ने वहां 29 अप्रैल की वोटिंग को रद्द कर दिया था और पूरे फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया था, क्योंकि वहां राय दहिंदकान को डराने धमकाने, पोलिंग मराकज में गैर मजाज अफराद की मौजूदगी और वोटिंग मशीनों के साथ मुमकिन छेड़छाड़ समेत बेजाबतगियों की कई इत्तलात मौसूल हुई थीं। दो आज़ाद उम्मीदवारों समेत 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने ऐलान किया है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता बैलेट पर उनका नाम मौजूद है, क्योंकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख पहले ही गुजर चुकी है। इस चुनाव में दिबांशु पांडा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक को मैदान में उतारा है। सीपीआईएम की तरफ से शंभुनाथ कुर्मी चुनाव लड़ रहे हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए ज़मीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। कल नाबन्ना में रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अहदेदारों की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर इस अमल का आगाज किया। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
5: रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने साबिका सरकार पर तावुन न करके सरहदी सिक्योरिटी में रखना डालने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरहद पर बाड़ लगाना मुल्क और रियासत की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने इस तनाजुर में दरंदाजी, स्मगलिंग, जाली करेंसी, जबरन मजहब बदलने और गैर कानूनी बांग्लादेशियों के आने से वाबस्ता जराइम का हवाला दिया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 4000 किलोमीटर तवील सरहद में से लगभग 2200 किलोमीटर का सरहद का इलाका मगरबी बंगाल से मुत्तसिल है। तकरीबन 1600 किलोमीटर के इलाके पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर के इलाके में कोई बाड़ नहीं है। कल जो 27 किलोमीटर अराजी हवाले की गई है उसमें 18 किलोमीटर खारदार तार लगाने के लिए और 9 किलोमीटर बीएसएफ की जांच चौकियों और बुनियादी ढांचे के बंदोबस्त के लिए है। वजीर आला ने यकीन दिलाया कि मजीद अराजी जल्द ही मुंतकिल की जाएगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाजाराई में आम शहरियों के तहफ्फुज के बारे में सलामती काउंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हरीश परवदा नैनी ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिल नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सितम जरीफी की बात है कि पाकिस्तान ने जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो बिल्कुल भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश परवता नैनी ने यह रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो भारत में अपने साझेदारों के साथ अमरीका के क्याम को 250 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के मुंतजिर हैं। अपने दौरे से कबल एक वीडियो पैगाम में जनाब रूबियो ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और अमरीका दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत है, लिहाजा अमरीका इसे मिलकर मनाने का मुतमन्नी है। भारत में अमरीका के सिफारतखाने ने भी मजकूरा वीडियो शेयर किया है। अमरीका 4 जुलाई को आज़ादी के ऐलानिये पर दस्तखत किए जाने के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। जनाब रूबियो इस महीने की 23 तारीख से भारत के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। ये उनका भारत का पहला दौरा होगा। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्तोदुलिदिस कल शाम भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचे। उनके हमराह एक आला सती वफ्द भी है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई हवाई अड्डे पर सदर क्रिस्तोदुलिदिस का इस्तकबाल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खारिजी उमूर की वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सदर क्रिस्तोदुलिदिस का ये दौरा भारत कुब्रुस शराकतदारी की बढ़ती हुई रफ्तार को उजागर करता है और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका अकदार और मजबूत अवाम से अवाम के दरमियान रवाबित पर मबनी हैं। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। कांग्रेस कानून साज पार्टी के रहनुमा राजेश कुमार और मेलूर से रुकने असेंबली पी विश्वनाथन को काबीना में शामिल किया जाएगा। साल 1967 के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस सरकार रियासती काबीना में शामिल होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम, मनिकम ठाकुर और दीगर बहुत से रहनुमाओं ने मखलूत हुकूमत कायम करने के वजीर आला विजय के फैसले का खैर मकदम किया है। हलफबरदारी की तकरीब आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज भी शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के बाद हिस्सों में भी गर्मी का जोर जारी रहने का इम्कान है। आज मुल्क में इंसदादे दहशतगर्दी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आम लोगों की तकलीफ को उजागर करते हुए और ये दिखाते हुए कि कैसे दहशतगर्दी कौमी मफाद के खिलाफ है, नौजवानों को दहशतगर्दी और तशद्दुद से दूर करना है। इस दिन दहशतगर्दी के खिलाफ हलफ लेने के साथ साथ दीगर सरगर्मियां मुनक्किद की जाती हैं। साल 1999 में आज ही के दिन मुल्क ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को एक दहशतगर्दाना हमले में खो दिया था। आईपीएल क्रिकेट में कल रात ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीद बरकरार है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित प्रभात कुमार का गायन। राग है विलास खानी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रभात कुमार। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। यहाँ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री प्रदीप सरकार।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में आप सुन रहे थे पंडित प्रभात कुमार से सरोद वादन। राग था विलास खानी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे श्री प्रदीप सरकार। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:15 और ठीक 4 सेकेंड। और अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका। नमस्कार, उद्योग पत्रिका के संक में आप सभी का स्वागत है।
2: नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र एक पत्रकार के रूप में बीते 3 दशक से कई मुद्दे पर लोगों से बात करने, उसे विस्तार देने, जनता पाठकों के समक्ष रखने का अवसर मिला है। उसी कड़ी में आज हम पूर्वोत्तर के विकास की बात कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है मेघालय सहित पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचना विकास को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक संभावनाओं का विशेष उल्लेख किया है। इसी दिशा में अब एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में आगामी 11 और 12 जून को नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा। यह समिट पूर्वोत्तर भारत में निवेश, कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। इस समिट के पूर्व नई दिल्ली स्थित मेघालय हाउस में एक कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेघालय की तेज आर्थिक प्रगति और भारत की विकास यात्रा में पूर्वोत्तर की बढ़ती भूमिका को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉर्नाड के संगमा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मेघालय की अर्थव्यवस्था पिछले 5 वर्षों में दोगुनी हो गई है, जबकि पूंजी निवेश वर्ष 2018 की तुलना में 4 गुना बढ़ गया है। राज्य ने पिछले 3 से 4 वर्षों से लगातार मजबूत आर्थिक गति बनाए रखी है, जिससे निवेशकों का निवेश विश्वास मेघालय के प्रति बढ़ा है। राज्य सरकार ने मेघालय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के बड़े प्रोत्साहन शुरू किए हैं। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि मेघालय ने देश के छोटे राज्यों में सबसे मजबूत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण किया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री श्री संगमा ने कहा कि मेघालय का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क पहले से ही पूरी क्षमता से काम कर रहा है, जबकि आगामी दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में राष्ट्रीय और वैश्विक कंपनियों ने जबरदस्त रुचि दिखाई है। उन्होंने बताया कि राज्य का पहला आईटी पार्क पूरी तरह भर चुका है, जबकि दूसरे आईटी पार्क को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का और विस्तार किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद लगातार 3 वर्षों तक लगभग 10% वास्तविक GSDP वृद्धि दर्ज करने वाला मेघालय देश का एकमात्र राज्य बन गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2018 के लगभग 29,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में करीब 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से अपेक्षाकृत दूर माना जाता रहा है, लेकिन अब यह धारणा तेजी से बदल रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉर्नाड के संगमा का यह बयान इस बदलाव की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। उनका यह कहना है कि पिछले 3-4 वर्षों में निरंतर आर्थिक विकास ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। केवल एक राजनीतिक दावा नहीं, बल्कि उस नई आर्थिक दिशा का संकेत है जिसमें मेघालय आगे बढ़ रहा है। मेघालय को देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल करना इस बात का प्रमाण है कि राज्य ने विकास के नए मानक स्थापित करने की कोशिश की है। खास तौर पर राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति निजी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। यह नीति न केवल निवेश को बढ़ावा देने का माध्यम है, बल्कि रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण आधार भी। सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि मेघालय अब केवल प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटनों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि तकनीक और उद्यमशीलता के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। राज्य में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकसित होना इस बात का संकेत है कि युवा पीढ़ी अब पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर नवाचार की राह पर चल रही है। राज्य का पहला आईटी पार्क पूरी क्षमता के साथ संचालित होना और दूसरे आईटी पार्क की बढ़ती मांग यह दर्शाती है कि मेघालय डिजिटल अर्थव्यवस्था व्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया सपने को साकार कर रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती रुचि इस दिशा में राज्य की संभावनाओं को और मजबूत करती है। केंद्र सरकार की भूमिका भी इस परिवर्तन में अहम है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू जी द्वारा यह आश्वासन कि पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचों और क्षेत्रीय एकीकरण को निरंतर समर्थन मिलता रहेगा राज्य के विकास प्रयासों को नई ऊर्जा देता है। साथ ही मेघालय सरकार को विकास की गति बढ़ाने का श्रेय दिया जाना यह बताता है कि राज्य और केंद्र के बीच समन्वय सकारात्मक परिणाम दे रहा है। 11 और 12 जून को हो रहे आगामी शिखर सम्मेलन में परिवहन, नेटवर्क, शहरी बुनियादी ढांचा, डिजिटल कनेक्टिविटी और निवेश साझेदारी पर फोकस होना इस बात का संकेत है कि पूर्वोत्तर अब केवल रणनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है। इस समिट में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री सर्बानंद सोनोवाल और अन्य कई केंद्रीय मंत्री, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री, निवेशक, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह सर्वविदित है कि श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के विकास के केंद्र में रखा है। उनकी सोच स्पष्ट रही है कि जब तक देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र तेज गति से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक भारत के समग्र विकास की कल्पना अधूरी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर को केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं देखा बल्कि इसे भारत की अष्टलक्ष्मी के रूप में पहचान दी। उन्होंने इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को समझते हुए आधारभूत संरचनाओं के विकास पर विशेष जोर दिया है। केंद्र सरकार एक्ट ईस्ट की नीति पे पहले से अधिक काम कर रही है। पिछले वर्षों में पूर्वोत्तर में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हजारों करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया गया, नए पुलों और सुरंगों का निर्माण हुआ जिससे दूर दराज के इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने में बड़ी सफलता मिली है। बोगीबिल ब्रिज जैसे रणनीतिक महत्व के पुलों का निर्माण, विभिन्न राज्यों में नए रेलवे ट्रैक का विस्तार और क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत नए हवाई मार्गों की शुरुआत ने पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीति के तहत डिजिटल इंडिया का लाभ भी पूर्वोत्तर तक तेजी से पहुंचा है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच रही है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रशासनिक सेवाओं में नई क्रांति आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत में विकास के लिए मिलने वाले फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, रोजगार के नए अवसर और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। बजट में भी इस क्षेत्र को पहले से बहुत ज्यादा मदद मिली है। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2013-14 के बीच जितना पैसा पूर्वोत्तर को मिलता था उसकी तुलना में अब सकल बजटीय समर्थन GBS 208% बढ़ गया है। वहीं वर्ष 2014 से 2024 के बीच पूर्वोत्तर के लिए मिलने वाला 10% GBS बजट 381% बढ़ा है। इसके अलावा क्षेत्र के लिए खास योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे PM डिवाइन जिसमें 6600 करोड़ का बजट रखा गया है ताकि बुनियादी जरूरतों और रोजगार से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना में भी इस क्षेत्र ने अच्छी प्रगति की है। इसके प्रमुख उदाहरणों में सौभाग्य योजना के तहत पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में 100% घरों तक बिजली पहुंचाना और हर घर जल योजना के तहत लगभग सभी घरों को पानी पहुंचाना शामिल

0: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

गीत, मुंदरी डॉट कॉम, मोर उडारी, अपना, काले रंग, गुलाबां दे, जेठू, हादसे, सफर, कर, कलाकार ते सजरी रचना कादर सिरज चुका है। उस दियां कई नावल रचनावां अनेकां ही भारतीय भाषावां विच अनुवादित हो चुकियां हन। इस तों इलावा उन्हां दे 9 कहानी संग्रह ते 8 होर वार्तक, कविता अते संपादित पुस्तकां हन। कलमकार लंबे अरसे तो इंग्लैंड की धरती उपर आबादकार वजो रह रहा है। इस वसों दौरान अनेक ही तजुर्बे उसकी झोली पे जेड़े उस अपने जीवन सफर दौरान पराइया रैतलों उपर हासिल किए। आवास तो प्रवास तीक का यह सफर बहु सभ्याचारक स्पेस, ग्लोबली सरोकार, रिश्तिया की बदलती व्याकरण, नारी मर्द संबंधा विचला तनाव, सभ्याचारक वित्त, पीढ़ी वित्त, पितरकी प्रबंध दियां कदरां कीमतां, नारी सरोकार, पंजाबी विरासत आदि उस दियां रचनावां दा मरकज कहे जा सकते हैं। कादर नावल लेखक दी 17वीं नावल रचना है, जिस विच ओह एक वक्री तरह के वर्तमान अते भविखमुखी तनाव नूं सिरजदा है। पहली पड़त ते टैक्सट सधारण पद्धर दी जापती है। रचना विचले बिरतांतक सरोकार नवें नहीं हन, पर बदल रही स्थितियां परिस्थितियां तहत बन रही गुंझलों वह बड़ी सूखम दृष्टि नाल पेश करता है। पछमी धरातल उपर विचरद्या भी पंजाबी मानसिकता पितरकी प्रबंध दिया कदरां कीमतां अधीन ही जकड़ी हुई है। लिंग भेद की राजनीति नारी होंद नूं कमजोर करती है। नारी की स्थिति पिंड तो वैनकूवर तक हाशियागत ही रहती है। सवाल पैदा हुंदा है कि असी आर्थिक तरक्की तो बथेरी की, पर मानसिकता पक्षों असी अज भी पिछा खिचू कदर कीमतों नाल ही बजे हुए हाँ, खास करके नारी हस्ती दे मसले विच। कादर नावल एक बहुपात्री रचना है, जिस विच अनेक पात्रां दे मसले भी वक्रे हैं। कई बारी तो स्थितियां इन्नियां उलझ जांदियां हन कि उन्हां नूं सुलझाउण दा कोई राह ही नहीं दिसदा। नावल दी कैनवस भारत, इंग्लैंड ते कैनेडा तक फैलदी है, पर ज़्यादा बिरतांत इंग्लैंड ते कैनेडा दरम्यान गतिशील रहिंदा है। बिरतांतक रचना दा मैं पात्र अते उसकी पत्नी कुलजीत ते बच्चे रोमला अते अनीश इंग्लैंड विच रह रहे हैं, पर पति पत्नी दा रिश्ता सुखाला नहीं, दोहां विच एक मूक दूरी बनी रहिंदी है। बच्चियां दा अपना संसार है जिथे वह इकला विचरना पसंद करते हैं। मैं पात्र भाव सोहम दी भैन लखवीरा ते उसका परिवार वैनकूवर रहिंदे हन, उत्थे ही उसके कुछ दोस्त अते मामे दी धी ते उसका परिवार भी रहिंदे हन। उसका खास दोस्त सुखराज भी वैनकूवर रहिंदा है ते उसकी भैन नाल उसके परिवारिक संबंध हन। उह सके भैन भरा वांग वरतो विहार रखते हैं। सुखराज का विआह पलविंदर कौर नाल पंजाब विच हुंदा है, पर वह विआह तो पहला ते बाद विच भी कई औरतां नाल संबंध रखता है। इस संबंधी सोहम नूं पता है, वह बहुत बार सुखराज नूं समझाउंदा है पर वह नहीं मानदा ते सोहम दी व्याहुता जिंदगी उपर तंज कसदा उसनूं ही चुप करा दिंदा है। नतीजन सोहम मजबूरन चुप्पी वट लैंदा है, पर दोस्ती तुरदी रहिंदी है। जदों सुखराज दी पत्नी पलविंदर कौर कैनेडा लई इकल्या सफ़र करदी है तां सुखराज उसकी जहाज़ की टिकट इंग्लैंड 4-5 दिन रोक के फिर कनेडा दी करवाउंदा है। सोहम नूं कहिंदा है कि वह उसनूं एयरपोर्ट तो लै लवे, वह 2 दिन उन्हां कोल रह लवेगी ते 2 दिन इंग्लैंड रहिंदे अपने मामे ते चाचे नूं मिल लवेगी ते फिर मुड़ कनेडा आ जावेगी। एयरपोर्ट ते लैण आया सोहम सोचदा है किवें लभेगा एक अनजाण औरत नूं। वह होर लोकां वांग एक तख्ती उपर उसका नाँ लिखण लगता है, तो केवल पलवी ही लिख पाउंदा है। इंज पलविंदर तो वह पलवी सहजे ही बन जाती है। उधर पलवी आधुनिक ख्यालों की कुड़ी छेती ही सोहम नाल इंज विहार करन लग जाती है जिवें वह एक दूजे नूं चिरां दे जानदे होण। सोहम उसनूं इंग्लैंड घुमाउंदा, रिश्तेदारां दे लै के जांदा अते अंत ओह कनेडा चली जाती है। कनेडा पहुँच के वह अपनी नवी जिंदगी का आगाज़ अपने पति सुखराज नाल करती है। सुखराज पितरी संरचना नाल बजया पल्लवी नूं दाबे हेठ रखदा कुटदा।

कपितियां चुनिया ने कोरी मोड़े टंगिया माही दूर हसता चे जुल्फाने नंगिया सूफ दिया सुथना ने तेड़ सप रंगिया

चूड़ा कर छन छन रोला पाया कंगना गोदे गोदे हथा बिच मक्खन आवे संगना ओदी चांदी दी पार गई थाली ते चो

0: जिते जाम दी जवानी ना संभाली ते चोए मुतो नाली ओए कंठे वाला तार कटदा।
1: उषा सेठ दी आवाज विच हुणे असीं इस लोक गीत दा आनंद माण रहे सी। इस लोक गीत दे नाल ही अज दा पंजाबी प्रोग्राम हुण खत्म हुंदा ए। आस ए मिट्टी दी महक प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होएगा। हुण अनीता नू देओ इजाजत।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में प्रसारित होंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनाधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्ट मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह लगभग इसी समय लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार को कांग्रेस के

पांच विधायक वीसी के, आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम के दो दो विधायक और एसपी वेलुमणी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं आपकी दोस्त आरती कौर। दोस्तों आज तारीख है 21 मई और आज का दिन है बेहद ही खास क्योंकि आज पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो सबसे पहले आप सभी चाय प्रेमियों को यानी कि हम सबको आप सबको जो भी चाय को पसंद करते हैं चाय पर फिदा हैं उन सबको चाय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ हर घर से सुबह सुबह रसोई में से खुशबू जो सबसे पहली आनी शुरू होती है वो चाय की होती है। सुबह हो या शाम चाय हमेशा आपकी काम आती है। तो आप सबको इस चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे चाय के बारे में जानेंगे और जानेंगे आप सबसे कि कितनी पसंद है आपको चाय। क्या आप किस तरह की चाय पीते हैं, कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं, टपरी वाली चाय पीते हैं या फिर दूध वाली चाय पीते हैं या ग्रीन टी के मजे लेते हैं। तो चाय के तो कई रूप हैं और हर रूप में वो आपके साथ होती है लेकिन वो कितनी खास है आपके लिए ये आप हमें बताइए IP Radio Delhi@gmail.com पर अपने मेल करके।

यहाँ एक गरम चाय की प्याली हो और आज का दिन तो यही कहने का दिन है, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं किसी रूप में चाय तो पसंद आ ही जाती है। जैसे कि हमारे एक साथी हमारे साथ जुड़े हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा। इन्होंने तो चाय दिवस पर बहुत ही खूबसूरत सी कविता हम तक पहुँचाई है। लिखते हैं, चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एहसासों का नाम है। सुबह की ताजगी हो, दोस्तों की महफिल हो या थकान भरी शाम, हर पल को खास बना देती है एक प्याली चाय। भारत में चाय लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। किसी के लिए ये आदत है, किसी के लिए सुकून, तो किसी के लिए अपनों से जुड़ने का बहाना। अदरक वाली चाय की खुशबू, इलायची की मिठास और मिट्टी के कुल्हड़ का स्वाद दिल को एक अलग ही खुशी देता है। विश्व चाय दिवस पर हमें ये याद दिलाता है कि छोटी सी चाय की प्याली रिश्तों में मिठास और जिंदगी में अपनापन खोल देती है। हर घूंट में प्यार, हर खुशबू में अपनापन, यही है चाय की असली पहचान। विश्व चाय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई, बहुत ही खूबसूरत सी आपकी ये जो कविता है, ये जो लाइनें आपने, पंक्तियां जो लिखकर भेजी है, बहुत अच्छी हैं। और सच में ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि सुख हो, दुख हो, दोस्तों की महफिल हो, घर परिवार का साथ हो, खुशी की बात हो, किसी भी तरीके का मौका हो, मौसम हो, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, चाय आपके साथ हमेशा होती है। आप सुकून भी मानते हैं उसे और आप अपनी आदत भी बनाते हैं उसे।

तो चाय पर आज हम कर रहे हैं बात, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मना रहे हैं और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि चाय कैसी पसंद है, कितनी खास है आपके लिए चाय। लेकिन सब कुछ करने से पहले आपको चाय का थोड़ा सा इतिहास भी तो बता दें, आखिर ये हमारे भारत में आई कैसे। तो चाय के इतिहास की बात करें तो 5000 साल पहले 2737 ईसा पूर्व चीन में इसकी शुरुआत हुई थी। माना जाता है कि चीन के एक राजा थे शेन नुंग, एक बार अपने बगीचे में बैठे थे। उनके सेवक पीने के लिए पानी उबाल रहे थे, तभी हवा के एक झोंके से जंगली चाय की कुछ पत्तियां उड़कर उबलते हुए पानी में जा गिरी। जब राजा ने उस पानी को पिया तो उन्हें उसका स्वाद बहुत अनोखा लगा और शरीर में एक गजब की ताजगी महसूस हुई। और राजा ने इस पौधे को नाम पता है क्या दिया था? नाम दिया था चे, जिसका मतलब है जांच करना या ढूंढना। बस यहीं से चाय की सफर की शुरुआत हो गई। लेकिन ये तो बात रही चीन की, जहाँ पर पहली बार पता चला कि ये चे है। हमारे भारत में तो हर घर घर में ये चाय बनती है, पहुंची कैसे? तो

चाय को घर घर की रानी बनाने का श्रेय जाता है अंग्रेजों को। 19वीं सदी 1820 के दशक में अंग्रेजों को चीन से चाय खरीदने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तब स्कॉटिश एडवेंचरर रॉबर्ट ब्रूस ने असम के जंगलों में स्थानीय जनजातियों सिंगफो, जिन्हें सिंगफो कहा जाता था, उन लोगों को एक खास पत्ती की चाय पीते देखा। इसके बाद 1830 के दशक में अंग्रेजों ने असम और फिर दार्जिलिंग, इन दोनों जगह पर बड़े पैमाने पर चाय के बागान लगाए। शुरुआत में ये चाय सिर्फ अंग्रेजों और अमीर भारतीयों के पीने के लिए थी, लेकिन उसके बाद ये घर घर की रानी बन गई और इस कदर बन गई कि आज ये हमारी साथी बन चुकी है। लेकिन अंग्रेज तो इसमें सिर्फ पानी, चाय पत्ती, दूध, चीनी डाल के पी लेते थे, लाइट टी कह सकते हैं उसे। पर हम इंडियंस तो अपने आप में अलग है ना, हमें नहीं समझ में आती ये सब चीजें। हमने इसमें डाले अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च, तुलसी और भी पता नहीं क्या क्या करके चाय का स्वाद ही बदल डाला और चाय को बना दिया।

0: bump, it's time to bump, to bump, it's time to bump, to bump, it's time to bump, to bump, it's time to bump, to bump, it's time to bump, to bump, it's time to bump, to bump.
1: तो श्रोताओं आगे बढ़ते हैं आपके संदेशों की तरफ जो हमारे पास आया है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया की तरफ से। कहते हैं टी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे परिवार के साथ चाय पीते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं, बड़ा लुत्फ आ रहा है, हमें भी शामिल करें स्टेशन रोड जमशेदपुर से। तो भाई आप शामिल हो चुके हैं और आप तो सच में चाय दिवस मना रहे हैं क्योंकि आप चाय पीते हुए संगीत का मजा ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से आशीष कुमार सहगल हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने और हीरामन शेंडे जी, प्रणव प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने ये हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही जुड़े हैं जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, कोई भी गीत ये सुनना चाहते हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने के पीछे कई गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं। इसका महत्व केवल चाय की चुस्की तक सीमित नहीं है बल्कि इससे जुड़े लाखों लोगों की जिंदगी से है। चाय दिवस के प्रमुख महत्व जो इन्होंने बताए हैं वो हैं चाय उत्पादक, श्रमिकों के आधार अधिकार, इनका समर्थन, और इस दिन का मुख्य उद्देश्य चाय बागानों में काम करने वाले लाखों मजदूरों और छोटे किसानों के कार्य स्थिति में सुधार करना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात करी क्योंकि चाय बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देती है और ये जो चाय उत्पादक हैं ये बहुत मेहनत करते हैं और इनके अधिकारों की बात रखने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। इसके साथ ही जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, गांव चौधरी बस हरियाणा से। ये कहते हैं हमेशा काली चाय पीते रहे हैं लेकिन आजकल बीमारी ज्यादा है इसलिए ग्रीन टी, अर्जुन की छाल की वी चाय इन्हें ठीक लगती है।

दोस्तों चाय पर बात हो और ये गीत ना चले ये तो हो ही नहीं सकता भाई। सच में शादी के लिए जब लड़की देखने जाते हैं, जब परिवार, तो सबसे पहले, लड़की से भी पहले जो चीज़ सामने आती है वो होती है चाय पियेंगे। तो भाई हमारी बेटी ने बनाई है, कुछ ऐसी बातें आपको सुनने मिलती है। और लोग चाय के लिए कई बार ऐसी चीज़ें करते भी हैं कि चाय पीने के लिए लड़की देखने भी चले जाते हैं। खैर ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन ये बात सच है कि दो परिवार भी चाय पर जुड़ जाते हैं, रिश्ते जुड़ जाते हैं जन्मों जन्मांतर के। तो ये है चाय का जादू। फिलहाल बढ़ते हैं आप सबके संदेशों की तरफ। ये है हमें तो लौंग, इलायची और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, अगर मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है हर मौसम में। उत्तम नगर दिल्ली में, दिल्ली से लिखते हैं बुजराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इसके साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो कहते हैं चाय का प्याला महज एक पेय पदार्थ नहीं है, इसमें वो शक्ति है जो रूठों को एक कर देती है, मोहब्बतों में इजाफा कर देती है, सीमित मात्रा सेवन से शरीर को ताजगी देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। और मैं तो इसे जड़ी बूटी बोला करता हूँ, सुबह की अंगड़ाइयों को जो दूर कर दे उसी का नाम चाय है। और कभी इंद्रप्रस्थ पर चाय पीने जरूर आएगा। जी हाँ बिल्कुल आइए। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी ऐसा लिखते हैं। साथ ही जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से कहते हैं बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम, किसी भी खूबसूरत नगमे पर शामिल कीजिए। तो भाई खूबसूरत नगमा तो आप सबकी तरफ से ही ये बोला गया है और आप सब तक पहुंच रहा है।

अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक कैथल हरियाणा से। कहते हैं चाय से संबंधित जो जानकारी आपके द्वारा हमें मिल रही है वो बहुत पसंद आ रही है। इस समय आपका कार्यक्रम हम EMU ट्रेन में सुन रहे हैं, नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो आपसे गुजारिश है हमें जल्द ही कार्यक्रम में शामिल कर ले। तो भाई आप जल्द ही कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। और जहाँ तक ट्रेन की बात आपने करी है तो भाई ट्रेन तो चाय के बिना वैसे भी अधूरी है। ट्रेन में जो सफ़र करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से चाय का बेसब्री से इंतज़ार होता है और वो चाय वाला चाय लेकर आता है और हम सब के कान खड़े हो जाते हैं और हमारी खुशबू हम उस खुशबू की तरफ बढ़ जाते हैं कि हमें तो भाई अब चाय चाहिए और सबके हाथों में चाय आ जाती है। तो ट्रेन का सफ़र और चाय का साथ ये अपने आप में बेमिसाल है।

तो ये जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। ये कहते हैं कि सादर प्रणाम कार्यकर्ता आपके पसंद कार्यक्रम में, और ये गीत सुनना चाहते हैं शायद मेरी शादी का ख्याल। तो भाई शादी का ख्याल तो थोड़ी देर पहले ही आ चुका है, यानी कि इसके पहले ही ये गीत प्ले हुआ है। अगर आप कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो आपने जरूर सुना होगा, और आपका जो ये संदेश है ये भी शामिल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है जवाहर नगर दुर्ग से आरती कांबड़े, मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े, ये हमारे साथ जुड़े हैं। चाय बागानों के मजदूरों की मेहनत की वजह से हम सुबह की ताजगी का आनंद लेते हैं। चाय एक पुरानी परिपाटी है, कृपया हमारा नाम भी शामिल कीजिएगा। तो भाई आपका नाम शामिल हो चुका है, और ये बात आपने सही कही, वो बहुत मेहनत करते हैं मजदूर, और उसके बाद उनकी जो ये मेहनत है वो खुशबू बनकर चाय के जरिए हम तक पहुँच जाती है। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा उर्फ नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का। आपसे मैं जरूर कुछ कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा ही एक ही शायद मेल भेजते हैं, और उसमें हमेशा आपकी शिकायत होती है कि आपका मेल शामिल नहीं होता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सबको पता है कि मेल शामिल होता है, आप शायद कार्यक्रम नहीं सुनते हैं, तो इस बात पे जरा ध्यान दीजिए, कार्यक्रम को सुना कीजिए। फिलहाल आपने लिखा है हम तो मीठी मीठी चाय पीते हैं, दीदी जी सबसे मीठी मीठी बातें तभी तो होती हैं। मीठी मीठी बातें आप चाय पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा मीठी मत पीजिएगा, डायबिटीज भी हो सकती है। तो बस मीठी मीठी चाय, मीठी मीठी बातें, सबका स्वाद लेते रहिए, लेकिन इतनी शिकायतें मत कीजिए, कार्यक्रम को थोड़ा सुन भी लिया कीजिए। अगले जो श्रोता है उन तक पहुँचने से पहले आइए थोड़ा सा गीत और सुनिए।

जी हाँ, बात घूमने फिरने की हो या फिर सिर्फ घर में रहने की हो, चाय हर जगह आपके साथ निभा ही जाती है, आपका साथ दे ही देती है। और चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक एहसास है। सुबह की ताजगी, शाम का सुकून, दोस्तों के साथ महफिल की जान, ये वो जादुई प्याली है जो रिश्तों में मिठास और बातचीत में गर्माहट खोल देती है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को इस खास मौके पर चाय की कुछ अनूठी बातें। एकता का प्रतीक, पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीज चाय ही है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और लिखने वाले हैं शोदा रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। साथ ही हमारे साथ जो अगले श्रोता हैं वो हैं, हम भूल गए रे चावल दाल मगर चाय नहीं भूले, राजू अग्रवाल, प्रियांशी, विवेक चौधरी, वास हिसार से।

श्रोताओं, ये हमारे पास संदेश आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार का लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम, बेहतरीन प्रस्तुतिकरण और बेहतरीन नगमे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे इन्होंने शायद कोई मैसेज भी इस पर भेजा होगा जो मुझे फिलहाल नहीं मिला है। कहते हैं हमारा मैसेज लगता है आपको मिलता ही नहीं है। भाई मिलता तो बिल्कुल है, तभी तो ये मैसेज आप तक पहुँचा है और मैं बता रही हूँ। और वैसे इन्होंने लिखा है, वैसे चाय ने रिश्तों को जोड़ा है और दोस्त बनाने का काम चाय ने किया है, दुश्मनी मिटाने का काम भी चाय ने किया है। जी हाँ, ये बात सही है। चाय की चुस्की में जो सुकून है वो अलग ही एक लेवल का होता है। पता नहीं कैसे जब सर में दर्द होता है तो दवा से ज़्यादा चाय असर कर जाती है, और जब किसी दोस्त से थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है तो उसे चाय पिला दीजिए, देखिए कैसे वो लाइन पर आ जाता है, कैसे उससे आपकी दोस्ती हो जाती है। और अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे साथ हैं व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, कहते हैं दूध वाली चाय बेहतरीन है। भाई सबकी अपनी अपनी पसंद है, आपको दूध वाली चाय पसंद है, कोई काली चाय भी पीता है, किसी को ग्रीन टी अच्छी लगती है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन ये बात सही है कि चाय एक ही है। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हैं कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल।

दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके संदेशों की तरफ। लिखते हैं होस्ट जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग जी, एनी सॉन्ग मॉडल टाउन करना से सुधीर नूतन, संदीप कुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा और किरण ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं गांव चौधरी बास हरियाणा से मांगेराम सतौर, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार कहते हैं बहन आरती गौर जी, हम चाहे दूध बड़े पीते, गर्मी के मौसम में एक दो बार चाय जरूर पीनी चाहिए, दूध वाली चाय ये शायद कहना चाहते हैं। और लिखते हैं कि क्योंकि ये ठंडी होती है, कुछ दोस्त कहते हैं कि चाय की तासीर गर्म होती है, मैं कहता हूँ ठंडी होती है। तो भाई ये तो अपने अपने मानने की बात है, कुछ लोग 45 डिग्री हो या 50 डिग्री चाय नहीं छोड़ सकते और कुछ लोग होते हैं जो चाय से बिल्कुल कन्नी काटते हैं कि नहीं भाई हम तो चाय नहीं पीते, हम तो कॉफ़ी वाले हैं या तो हम तो ब्लैक टी वाले हैं, मतलब कुछ ना कुछ अपना अलग ही वो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाय उनके भी जिक्र में समाई होती है। ये आगे जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं वो हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वीर, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ये हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं बार बार सेम ही संदेश हमारे पास आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर।

अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, परदीन, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार कहते हैं, मैडम जी चाय का महत्व हमारे जीवन में बहुत अहम है। चाय पर चर्चा तो अक्सर होती ही रहती है, बस समय होना चाहिए। जी हाँ, चाय पर चर्चा भी होती है, ये इन्होंने बहुत सही बात की। हम किसी भी टॉपिक पर बात करना चाहें तो हाथ में एक चाय ले लेते हैं और फिर वो टॉपिक इतना लंबा छिड़ता है कि वो अपने आप में एक चर्चा का विषय बन जाता है। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं गांव हीरा वाली फजलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा कहते हैं, नमस्कार जी, प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं। इसके साथ ही जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगले श्रोता जुड़े हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही जुड़े हैं अनवर साबरी, सन्नूर साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी, दाऊद सराय सहारनपुर से, और अगले साथी हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, ये जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से।

0: तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार में 23 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। इनमें 3 नई महिला मंत्री भी शामिल हैं। सरकार में पहले से ही 9 मंत्री हैं, जिनमें एक महिला मंत्री सुश्री कीर्तना भी शामिल हैं। अब कैबिनेट में कुल 32 मंत्री हो जाएंगे, जिनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी शामिल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर चेन्नई के लोकभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 627 अंक की उछाल के साथ 75,945, जबकि निफ्टी 200 अंक बढ़कर 23,859 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals,

0: Kim in New Delhi. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already qualified for the playoffs. And Indian equity markets traded higher today in early deals amid hopes of easing tensions in West Asia after Iran said it was reviewing latest proposal to end the conflict. And that is the end of this news bulletin.
1: संगीतमय कार्यक्रम स्वरांजलि में आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत अभिनंदन। साथियों, लोकगीत आम लोगों द्वारा, कलाकारों द्वारा रचित, मौखिक रूप से प्रसारित और सामुदायिक आयोजनों पर गाया जाने वाला एक लोकप्रिय विधा है, जिसमें भावनाओं, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम होता है। देश के अलग अलग राज्यों, क्षेत्रों, समुदायों में संस्कार गीत, मौसम के अनुसार ऋतु गीत, भक्ति गीत, श्रम गीत, प्रेम गीत जैसे कई लोकगीत हैं। भारत की सांस्कृतिक धरोहर में ब्रजभूमि का एक विशेष स्थान है। श्री कृष्ण की लीलाओं की पावन धरती ब्रज अपने मधुर लोकगीतों, रसिया, होरी, कजरी और मल्हार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आज स्वरांजलि कार्यक्रम में हाकिम सिंह और साथी आपके लिए ब्रज लोकगीत प्रस्तुत करेंगे और गायन में सहयोग करेंगे कुमारी रागिनी, संतोष देवी और विजय सिंह। और आज के ब्रज लोकगीत को अपने संगीत से सजाएंगे हारमोनियम पर कादिर खान। तालियों के साथ में इनका हौसला भी अफजाई करते रहिए। नगाड़े पर ईश्वर सिंह खींची, ढोलक पर सलीम खान, परकासन पर गुलाम जाफर और बांसुरी पर तान छिड़ेंगे ज्वाला प्रसाद। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी दिल्ली के YouTube चैनल पर भी आप सुन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रिज लोकगीत।

साथियों, आज स्वरांजलि कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं ब्रिज लोकगीत। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और आसपास के क्षेत्रों के लोकगीतों में राधा कृष्ण के प्रेम, गोपियों की भावनाएं, ऋतुओं का सौंदर्य और ग्रामीण जीवन की सहजता देखने को मिल जाती है। तो चलिए, अब यह है अगली प्रस्तुति, आइए आनंद लेते हैं। नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई।

कुमारी रागिनी और संतोष देवी की ये सुंदर प्रस्तुति और इसके बाद अगली प्रस्तुति। साथियों, ब्रज लोकगीत हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इनमें प्रेम है, भक्ति है, लोक जीवन की सादगी है और इनमें भारतीय परंपरा की आत्मा बसती है। चलिए अब सुनते हैं ये अगली प्रस्तुति, देखो री मुकुट झौटा के रहियो।

साथियों, स्वरांजलि कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल और आकाशवाणी दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर। और आज स्वरांजलि कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं ब्रज लोकगीत। साथियों, ब्रज के लोकगीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भावनात्मक गहराई है। भावनाओं का अथाह समंदर है। उस गहराई

साथियों, ब्रज के लोकगीतों में हास्य, प्रेम, भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जी हाँ, रसिया, होरी, बधाई गीत जैसे कई गीत की अपनी अपनी विशेषता है। चलिए अब अगली प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। तेरो जमुनों में कूद गयो लाल, सुन जसुदा मैया।

साथियों, ब्रज के लोक गीत केवल गीत नहीं, गाने नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत है। गांव की चौपालों से लेकर मंदिरों तक हर जगह इन गीतों की गूंज सुनाई देती है, और जब भी हम इन गीतों को सुनते हैं, हम उनमें डूबते चले जाते हैं। उनका एहसास कुछ अलग ही होता है। आइए अब सुनते हैं ये अगली प्रस्तुति, दुल्हन मोकू लाए है ओ मैया।

0: साथियों, आज स्वरांजलि कार्यक्रम में हाकिम सिंह, कुमारी रागिनी, संतोष देवी और विजय सिंह आपके लिए ब्रज लोक गीत प्रस्तुत कर रहे थे। हारमोनियम पर थे कादिर खान, नगाड़े पर ईश्वर सिंह, ढोलक पर सलीम खान, परकासन पर गुलाम जाफर और बांसुरी पर थे ज्वाला प्रसाद। आज का यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया प्रकाश थपलियाल, अमित कुमार, भावना भारद्वाज, सुनील कुमार और गौरव सेन ने। प्रस्तुति सहयोग रहा नूतन झा, रामस्वरूप मीना, दिनेश मीना, रेवती राजन, विशाल और दिव्या का। कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर। अब आज का स्वरांजलि कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले स्वरांजलि कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। अब अपने दोस्त कमल किशोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक

के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थीं। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड के 100.1 MHz पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता बेहद पुराना है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखें, जिससे आप जुड़े रहें अपने मन पसंद शो घर आंगन के साथ। आप हमें मेल भेज सकते हैं और हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके विचारों का, सुझावों का इंतजार हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा भी। तो खूब ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
1: जी हाँ, यादें। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर की शुरुआत की खूबसूरत ढेर सारी प्यारी प्यारी यादें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसी की, यानी कि 3 अक्टूबर 1957 को आकाशवाणी ने बॉम्बे यानी मुंबई से देश की सुरीली धड़कन विविध भारतीय सेवा की शुरुआत की। भारतीय श्रोताओं को मनोरंजन और सुगम संगीत का एक स्वदेशी मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। उद्घाटन के दिन विविध भारती पर प्रसारित होने वाला पहला गीत मन्ना डे द्वारा गाया गया नाच रे मयूरा था। फिल्म संगीत के साथ साथ हवा महल, संगीत सरिता, भूले बिस्तरे गीत, जयमाला और छाया गीत जैसे अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित होते थे। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त जैसी सिनेमा जगत की महान हस्तियों ने भी अपनी आवाज और उपस्थिति से इस सेवा की गरिमा को बढ़ाया। विविध भारती ने हिंदी फिल्म संगीत के माध्यम से पूरे देश को भाषाई और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया था। लता मंगेशकर की आवाज में गीत फिल्म है।

0: 90.
1: अब बात करते हैं कुछ संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस की, जिसे आमतौर पर सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल 21 मई को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया की ताकत हमारी विविधता में है। हमारे देश भारत ने तो सांस्कृतिक विविधता की मिसाल खुद मिलती है। अलग अलग भाषा, खान पान, त्यौहार, पहनावे सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। सांस्कृतिक विविधता सिर्फ उत्सव नहीं, ये विकास का इंजन है। जब अलग अलग संस्कृतियाँ एक दूसरे से सीखती हैं तो नई नई विचारधारा जन्म लेती हैं, नए आविष्कार होते हैं और समाज आगे बढ़ता है। इस दिन हमें वादा करना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए दूसरी संस्कृतियों का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान करना ही सच्चा विकास है। तो आज से शुरू करते हैं, किसी एक नए दोस्त से बात करें, किसी अलग भाषा का गाना सुने या किसी दूसरे त्यौहार में शामिल हों, विविधता को अपनाएं और विकास को आगे हमेशा आगे बढ़ाते ही जाएं।

और अब बात करते हैं राजीव गांधी की पुण्यतिथि की। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम उन युवा प्रधानमंत्री को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आधुनिक बनाने का सपना देखा था। मात्र 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी, जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू किए और शिक्षा विज्ञान को नई दिशा भी दी। वे कहते थे, भारत एक पुराना देश है लेकिन युवा राष्ट्र है और मैं भी युवा हूँ। मेरा सपना एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का है। और इन दूरदर्शी नेता को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी याद हमें प्रेरित करती रहे कि हम मिलकर एक बेहतर भारत बनाएं। और साथ ही आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है क्योंकि ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ही आता है। इस दिन हम संकल्प लेते हैं कि भारत की अहिंसा की परंपरा को मजबूत रखेंगे और मानवता के लिए काम करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण भारत बनाने का वादा करें।

अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में गीत, फिल्म थी आनंद। अब बात करते हैं कुछ विश्व चाय दिवस की। आज हम बात करें एक ऐसे पेय की जिसके बिना सुबह की शुरुआत अधूरी लगती है, और वो है हमारी प्यारी चाय। चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पानी के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ये पेय है चाय। सुबह उठते ही चाय, काम के बीच में चाय, दोस्तों के साथ चाय, ठंड में चाय, बारिश में चाय, हर मौके का साथी है चाय। ये सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लाखों किसानों की रोजी रोटी भी है। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की चाय तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आज का दिन उन चाय उत्पादकों के नाम है जिनकी मेहनत से ये प्याला हमारे हाथ में आता है। चाय हमें एनर्जी देती है, स्वास्थ्य लाभ देती है, और सबसे बढ़िया दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारने का भी बहाना देती है। तो चाय हमें एक दूसरे से जोड़ती भी है। कितने ही रिश्ते चाय की दो प्यालों के साथ शुरू हुए हैं। ऑफिस में, ट्रेन में, घर में, हर जगह चाय से बातचीत शुरू होती है। और आज चाय दिवस पर अपनी फेवरेट चाय बनाकर पीजिए,

0: मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और अब बात करते हैं कुछ स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं के लिए। नए रूप में प्रस्तुत ये योजना महिलाओं को बेहतर वित्त पोषण, मजबूत समर्थन और सपनों को सफल व्यवसायों में बदलने के बड़े अवसर प्रदान करने को तैयार है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि सशक्त महिलाओं के नेतृत्व में एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक कदम है। स्टैंड अप इंडिया योजना महिला उद्यमियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक बैंक लोन प्रदान करती है और योजना प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला को ऋण देने का लक्ष्य रखती है जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। और खास तौर पर इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह महिला उद्यमी होनी चाहिए। व्यक्तिगत उद्यमों के लिए कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रक हिस्सेधारी एक महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। ब्याज दर बैंक के सबसे कम दर के बराबर होती है जो आमतौर पर 3% से अधिक नहीं होती और ये ऋण 7 वर्ष तक की अवधि में चुकाया जा सकता है जिससे 18 महीने की अधिकतम मोहलत अवधि शामिल हो सकती है। और इसके लिए खासतौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड बहुत जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र और व्यवसाय का पता होना चाहिए, व्यवसाय योजना का नाम होना चाहिए और ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और उनके काम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है।

और अब बात करते हैं पर्यावरण के अनुकूल ही खुद को चलाएं, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होने और धरती की रक्षा करने से ना सिर्फ ये ग्रह रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। जैसे गर्मियों में घर को ठंडा और ताज़ा रखने के लिए आसपास आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं अपने घर में, और हरियाली से भरा रहेगा आपका ये घर और ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। पूरे हफ्ते कम से कम प्लांट बेस्ड पदार्थों को चुनें जिसमें बहुत सारी सब्जियां, फल, फलियां और अनाज शामिल हों, जिससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी। आप अपनी बैटरी, कागज़, कंटेनर, कपड़े और कठोर प्लास्टिक उत्पादों को रिसाइकलिंग कर सकते हैं इससे पहले कि आप कुछ भी फेंक दें, उसे रिसाइकिल कर लें। आजकल पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है यानी प्लास्टिक, और सिंगल जो प्लास्टिक है वो बैन करने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत है, और इसका इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दें। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें, ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर हर कोई खुद से ऐसे कदम बढ़ाए जिससे प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, ताकि स्वच्छ और खुली हवा में सांस ली जा सके। लता मंगेशकर, सुरेश फड़े की आवाज में गीत फिल्म है।

और अब बात करते हैं घर से निकलते हुए यानी गर्मी के मौसम में बाहर निकलने से पहले सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि गर्मी के चलते अस्पतालों में ओपीडी में डिहाइड्रेशन, उल्टी, सिरदर्द मरीजों की तादाद बढ़ गई है और डॉक्टर ने सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों, बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, शुगर बीपी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। सर्द गर्म शिकार हो रहे डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि खासतौर पर रात को तापमान बढ़ने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है, जिससे सुबह थकान और कमजोरी की शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा तेज धूप में एसी वाले कमरों में आने जाने के कारण भी लोगों की सेहत बिगड़ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अक्सर एसी को 16-18 डिग्री पर चलाते हैं लोग, जिससे शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ जाता है। तो एसी का तापमान हमेशा 24 से 27 डिग्री के बीच रखना जरूरी है। ठंडे कमरे से अचानक गर्मी में निकलने से सांस के पुराने मरीजों की समस्या बढ़ रही है। दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें और बच्चे इस दौरान बाहर न खेलें, नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें, ORS और नींबू पानी, नारियल पानी का सेवन ज़्यादा करें और बाहर पानी जो रेड़ी पर मिलता है उससे पानी पीने से बचें। यदि अगर बहुत ज़रूरी बाहर जाना है तो खास तौर पर छाते और पानी की बोतल साथ लेकर जाएं, साथ ही अपने डॉक्टर की सलाह से दवा की डोज भी ज़रूर रख लें।

और अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपसे होगी अगली मुलाकात। अगली प्रस्तुति तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, यानी सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत

0: प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation. India has called out Pakistan's long-tended record of genocide at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said, it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
3: It is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत, खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। कार्यक्रम एक ही फिल्म में, एक ही फिल्म कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज एक ऐसी चुनिंदा फिल्म जो कि कहीं ना कहीं हमारे दिल के करीब होती है। तो आज दोस्तों इसी कड़ी में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही फिल्म, या कहूँ कि बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्मों की अगर हम बात करेंगे तो इस फिल्म का नाम ज़रूर हमारे जहन में आता है, जिसने उस दौर में समाज की रूढ़ियों को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि देखने वालों के दिलों को भी झकझोर के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए सन 1975 में आई एक ऐसी क्लासिकल फिल्म जो कि न सिर्फ कहानी के मद्देनज़र हमारे दिल के करीब है बल्कि अगर हम इस फिल्म के संगीत की बात करें तो बस हम लोगों के दिल में आज भी कहीं ना कहीं बसा हुआ है इस फिल्म का संगीत। जी दोस्तों, बात कर रही हूँ मैं फिल्म जूली की।

0: पसंद।
1: जी दोस्तों, जूली फिल्म जो कि सन 1975 में आई और सबके दिलों में एकदम से छा गई। जूली सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आईना थी जिसने उस जमाने में, जी हाँ 1975 में, काफ़ी पहले की बात है, उस टाइम पर जब इंटरकास्ट मैरिज को या फिर शादी से पहले प्रेगनेंसी जो है ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हुआ कर।

देते थे, उन चीज़ों को बेहद ही संजीदगी के साथ इस फिल्म में दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। दिखाया गया कि किस तरह से एक एंग्लो इंडियन लड़की जूली और एक हिंदू लड़के की ये मोहब्बत समाज की दीवारों से टकराती है। और इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था एक नई लड़की ने, जिसने अपनी मासूमियत और अपनी दमदार एक्टिंग से रातों रात सबको बना लिया अपना दीवाना।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और आपके साथ हूँ मैं, आपकी होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। और हम बात कर रहे हैं फिल्म जूली के बारे में। जूली फिल्म जिसमें मेन किरदार यानी कि जूली का किरदार निभाया अभिनेत्री लक्ष्मी ने। लेकिन अभिनेत्री लक्ष्मी का सिलेक्शन इस किरदार के लिए होना अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। और इसके पीछे कोई ऑडिशन या कोई पुरानी सुपरहिट फिल्म का कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जूली असलियत में सन 1974 में आई सुपरहिट मलयालम फिल्म चट्टकारी की एक रीमेक थी। जो मलयालम फिल्म थी उस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर था, जो एंग्लो इंडियन लड़की का कैरेक्टर था, वो लक्ष्मी ने निभाया था। और केरल में ये फिल्म इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रही कि इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और लक्ष्मी जो कि जूली फिल्म में भी उन्होंने अपने एक्टिंग से, अपने अभिनय से दर्शकों को बहुत ही अच्छे से सभी के दिल में वो समा गई, उसी तरह से वहाँ पर भी वो पूरी तरह से छा गई थी, सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। और जब इस फिल्म के निर्माता बी नागर रेड्डी और निर्देशक के एस सेतुमाधवन ने इस फिल्म को हिंदी में बनाने का सोचा, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई हिंदी दर्शकों के लिए एक ऐसी अभिनेत्री लेकर आएँ जो जूली के किरदार में बिल्कुल फिट रहे। अब क्योंकि सेतु माधवन जानते थे कि जो मेन फिल्म मलयालम में बनी थी उस फिल्म में किस तरह से शानदार अभिनय किया था और इस तरह का बोल्ड कैरेक्टर निभाया था लक्ष्मी ने, तो उनसे बेटर इस कैरेक्टर को और कोई नहीं निभा सकता। उस कैरेक्टर के साथ उनके अलावा और कोई जस्टिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता था कि लक्ष्मी की एक्टिंग रेंज कितनी अच्छी है। और यही वजह थी कि लिया गया, चुना गया इस डब्ड, इस रीमेक फिल्म में भी लक्ष्मी को ही एज अ जूली के रूप में। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, सुनते रहिए कुछ सुने अनसुने किस्से फिल्म जूली से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और बात कर रहे हैं हम फिल्म झूली की। झूली फिल्म जिसमें लक्ष्मी जी ने निभाया कैरेक्टर झूली का, और ये उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म थी, यानी कि कह सकते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली फिल्म रही। और पहली फिल्म में उन्होंने वो कमाल करके दिखाया कि फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्होंने हासिल किया। वैसे आपको बता दें, इस फिल्म में एक और ऐसी अभिनेत्री थी जिसे शायद बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था सुपरस्टार श्रीदेवी ने, और उन्होंने इस फिल्म जूली में जूली यानी कि लक्ष्मी की छोटी बहन एरन का किरदार निभाया था। और उस वक्त श्रीदेवी की उम्र मालूम है कितनी थी? मात्र 11 से 12 वर्ष की।

जी दोस्तों, जुड़े हैं आप कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और वाकई में इस फिल्म की कहानी जितनी बेबाक थी, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म की कामयाबी में दूसरा सबसे बड़ा हाथ था इस फिल्म के जादुई संगीत का। जी हाँ, जब भी हम इस फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो इस फिल्म के जो संगीतकार हैं उनका जिक्र जहन में आ जाता है, संगीतकार राजेश रोशन साहब, जिन्होंने इस फिल्म से अपनी एक अलग पहचान बनाई। ज़रा सोचिए उस दौर में जब कव्वाली, गज़ल और एक रेगुलर धुनों की बोलबाला था, वही सब चल रही थी। उस वक्त राजेश रोशन साहब ने वेस्टर्न और इंडियन म्यूज़िक का एक ऐसा फ्यूज़न तैयार किया कि हर कोई झूम उठा। जी हाँ दोस्तों, और शायद यही वजह थी कि प्रीति सागर की आवाज़ में जो गीत था माई हार्ट इज़ बीटिंग, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो पहला पूरी तरह अंग्रेज़ी वाला गाना बना जो कि हर हिंदुस्तानी की ज़बान पर चढ़ गया। सोचिए, हिंदुस्तान में बॉलीवुड फिल्म में एक पूरा गाना अंग्रेज़ी में, और ये कमाल किया राजेश रोशन साहब ने उनके संगीत ने। और जो गीत अभी आप सुन रहे थे किशोरदा की आवाज़ में, क्या गीत है। जब भी किसी को मोहब्बत होती है, पहली मोहब्बत होती है, तो उसका दिल यही गाना गुनगुनाने के लिए करता है। जी हाँ दोस्तों, इस तिगड़ी ने इतना खूबसूरत संगीत दिया इस फिल्म में, या कहूँ कि एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया कि जिसकी खुशबू आज भी हम सभी के जहन में बसी हुई है, और वही खुशबू बसी है हमारे दिल में हमारे श्रोताओं के संदेशों की। तो उनके संदेश भी हम शामिल कर लेते हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश जी एक बार फिर से संदेश भेजते हैं, वीरगाम जंक्शन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजित भावसार, प्रमिला बेन भावसार, भावेश कुमार और सनी भावसार जी के साथ में, सुनील पाठक, कमल, गाव्या मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं नरकली बाजार जगराओ पंजाब से, सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनार प्रसाद जाधव नेहरू चौक पैठण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला संदेश हम तक पहुँचाया है वटिंडा खेड़ा, वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरगांव सुर संगम रेडियो श्रोता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये हैं अजीत भवसार जी, इन्होंने बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी जानकारी हम तक पहुँचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक पहुँचाई है। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहार बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ है मास्टर अल कबीर।

भारगन मुल्तानी ठाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन टेलू नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनेजा पूनम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज हिमांशु सुथार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश डीबी राणा जी का नेहरू विहार दिल्ली से। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये एक अगला संदेश है सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन मुखी जी का शांतिनगर सोनीपत से। ग्राम नागरकोरा जिला राजनांदगांव से बगलू बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, सोपान ताड़े, नारायण इंगले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है संदीप मकर जी ने। ज्योति मन्नत भारत, कमल सहानी पिंगावाला चौक, गुरैया जालंधर पंजाब से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया अपार जी के साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। राजकोट से परवीन डिसूजा जूली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों बहुत सारे संदेश हैं जो कि हम तक आए हुए हैं। और ये अगला जो संदेश है इसको भेजा है अनिल मोहन जी ने पीटीआई संसद मार्ग से। संत ज्योति जी का एक बार फिर से हम तक ये संदेश आया हुआ है। और दोस्तों ये सुधाकर जाधव जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायल, प्रथमेश सर्वत, देशमुख कुमारी प्रणाली जी के साथ में ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूषण खेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल खेरा फजिल का पंजाब से, विशाल विशु और लाडली खेरा के साथ में ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यादों का कारवा आज यही तमता है। और फिल्म जूली एक फिल्म नहीं बल्कि गुजरे जमाने का वो हसीन लम्हा है जो संगीत के साथ हमारे दिलों में आज भी धड़क रहा है। तो ये सफ़र बस यहीं तक, अब वक्त हुआ आप सभी से विदा लेने का। तो मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, छोड़े जाती खूबसूरत संगीत लता जी की आवाज़ में। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: When Ambassador Harish Parvathaneni said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border.
1: It is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
0: In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already secured a place in the playoffs, while Chennai Super Kings will be looking to strengthen their chances for the fourth spot in the points table. Meanwhile, Kolkata Knight Riders kept their playoff hopes alive with a 4-wicket victory over Mumbai Indians at the Eden Gardens in Kolkata last night. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
4: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत एवं कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
2: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
1: It is ironic that Pakistan with its long term...
5: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
1: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
6: इंडिया इज रिसेंटली लॉन्च।
7: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
6: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
7: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
2: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
5: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
2: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 4थे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
8: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
9: चाय ये चाय।
10: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग

0: में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका आपके मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम एक ही कलाकार में। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी साथी, आपकी मितवा, आपकी अपनी दीप्ति। और आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा के उस शानदार फिल्मकार की कहानी जिन्होंने ना सिर्फ फिल्में बनाई बल्कि एक पूरा दौर गढ़ के रख दिया। एक ऐसा नाम जिसने रोमांस को नई उड़ान दी, संगीत को नई चमक दी और दिए बॉलीवुड को कई यादगार सितारे। दोस्तों, आज का ये खास कार्यक्रम समर्पित है मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी साहब को। तो चलिए चलते हैं पुराने दौर की खूबसूरत गलियों में, जहां हर धुन में जादू था, हर कहानी में मासूमियत और हर फिल्म में दिल धड़कता था।

दोस्तों कितना अच्छा होता ना जब यूं ही हंसते गाते जिंदगी का सफर गुजर जाए। 14 अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मे सुबोध मुखर्जी एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते थे जिसका हिंदी सिनेमा से बड़ा गहरा रिश्ता रहा। उनके बड़े भाई शशाधर मुखर्जी पहले से ही इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे, लेकिन सुबोध साहब ने अपनी अलग पहचान बनाई और वो पहचान थी दिल को छू लेने वाली कहानियां, संगीत से भरी फिल्में और शानदार मनोरंजन। कहा जाता है कि उन्हें फिल्मों में स्टोरी टेलिंग सबसे ज्यादा पसंद थी। वो मानते थे कि अच्छी फिल्म वही है जो दर्शकों के दिलों में उतर जाए। 1955 में आई मुनीम जी और यहीं से शुरू हुआ सफलता का सिलसिला। इस फिल्म में थे सदाबहार देवानंद साहब और संगीत था एसडी बर्मन साहब का। यानी सोचिए, कहानी दमदार, संगीत लाजवाब और निर्देशन सुबोध मुखर्जी का। जादू तो होना ही था, है ना?

दोस्तों, फिल्मिस्तान स्टूडियो में सहायक निर्देशक के तौर पर काम करने वाले सुबोध साहब को पहली फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला फिल्म पेइंग गेस्ट से, लेकिन उन्होंने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी। बतौर निर्देशक सुबोध साहब ने साल 1955 में फिल्म मुनीम जी को निर्देशित किया। देवानंद, निरूपा रॉय और प्राण साहब जैसे सितारों से सजी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और इस फिल्म को हिट देने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाले कमाल के निर्देशक सुबोध साहब की शागिर्द से लेकर जंगली और तीसरी आंख जैसी फिल्में आज भी दर्शकों की पहली पसंद रहती हैं। निर्देशन के अलावा वे अपनी फिल्मों के लिए लेखन का काम भी करते थे। शागिर्द उनकी खुद की लिखी फिल्म है जिसमें उनके भतीजे जॉय मुखर्जी और सायरा बानो के साथ आईएस जौहर साहब मुख्य भूमिकाओं में थे और इसके बाद 1957 में उन्होंने पेइंग गेस्ट को भी निर्देशन दिया जो एक बार फिर से सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का बैनर एसएमपी सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस शुरू किया और इसकी पहली फिल्म थी लव मैरिज जिसमें देवानंद साहब और माला सिन्हा जी मुख्य भूमिकाओं में थी। वैसे अगर बात करें सुबोध मुखर्जी साहब के परिवार की तो उनके परिवार में ऐसे कई नाम हैं जो हिंदी सिनेमा जगत का बड़ा जाना पहचाना चेहरा रहे हैं। फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी उनके भाई थे और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि दिग्गज अभिनेता जॉय मुखर्जी से लेकर हिंदी सिनेमा के जाने माने चेहरे देव मुखर्जी, रानी मुखर्जी, काजोल और तनिषा मुखर्जी भी उनके ही परिवार से हैं। बातें करेंगे उनके बारे में और भी, लेकिन पहले ये गीत।

दोस्तों, इस गीत से पहले हमने बात की थी फिल्म शागिर्द की, जो उनकी खुद की लिखी फिल्म थी। उनकी फिल्मों में ना एक बात कॉमन थी कि उनकी कहानियां बहुत भारी नहीं होती थी, लेकिन असर असर बहुत गहरा छोड़ती थी। परिवार, प्यार, रिश्ते और जिंदगी को मुस्कुरा कर जीना, यही उनकी फिल्मों का असली रंग था। और शायद यही वजह है कि आज भी, इतने सालों के बाद भी, उनकी फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती हैं, महसूस की जाती हैं, इंजॉय की जाती हैं। उनकी फिल्मों में संगीत हमेशा कहानी का हिस्सा बनता था, सिर्फ गाने नहीं। यानी अगर ये कहा जाए कि वो म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के मास्टर थे, तो शायद गलत नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं शागिर्द फिल्म का ये गीत।

मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदा दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

जबरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जॉय मुखर्जी और आईएएस जौहर साहब की और उस पर रफी साहब की आवाज का कमाल। यही तो था सुबोध साहब का रचा हुआ जादू। 1961 में आई फिल्म जंगली ने हिंदी सिनेमा में दोस्तों काफी कुछ बदल दिया। इस फिल्म ने शम्मी कपूर की इमेज को नई ऊंचाई दी और लॉन्च किया खूबसूरत सायरा बानो को। अच्छा, आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। जंगली फिल्म का शुरू में नाम मिस्टर हिटलर रखा गया था, जिसे बाद में बदल कर जंगली कर दिया गया और वो याहू, याद है ना आपको, अभी सुनवाऊंगी, जो आज भी लोगों के जुबान पर है, उसे असल में शम्मी साहब ने नहीं बल्कि उनके दोस्त प्रयागराज साहब ने कहा था, मतलब अपनी आवाज दी थी। सुबोध साहब उन फिल्मकारों में से थे जिन्होंने रंगीन फिल्मों को नई पहचान दी और जंगली उन शुरुआती फिल्मों में से थी जिन्होंने ईस्टमैन कलर टेक्निक को बड़े स्तर पर लोकप्रिय बनाया। कश्मीर की वादियां, शम्मी कपूर की एनर्जी, संगीत की मिठास और कैमरे में कैप्चर्ड खूबसूरती, सब कुछ मिलकर एक सपना सा बन गया। तो चलिए सुनवाते हैं आपको याहू।

मोहम्मद रफ़ी को भी आपने सुना फिल्म जंगली में, और आज हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम में सुबोध मुखर्जी साहब की। दोस्तों, इस फिल्म यानी जंगली में जो अभिनय किया सायरा बानो साहिबा ने, उसके लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला और शम्मी कपूर साहब रातों रात सुपरस्टार बन गए। वैसे उनकी फिल्मों के गाने ना बड़े कमाल के होते थे, जो रिलीज होते ही लोगों के दिलों पर छा जाते थे। लोगों ने भी महसूस कर लिया था कि ये निर्देशक सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, ये यादें बनाते हैं। लगभग दो दशकों तक हिंदी सिनेमा को नई राह दिखाते हुए सुबोध मुखर्जी साहब ने फिल्म निर्माण और निर्देशन में कई आयाम गढ़े। इन दो दशकों में उन्होंने अपनी कला के जरिए हिंदी सिनेमा को एक नए मुकाम तक पहुँचाया। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 8 फिल्मों का निर्माण और 9 फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी आखिरी दो फिल्में तीसरी आंख, जो कि 1982 में, और उल्टा सीधा 1985 में रिलीज हुई थीं।

दोस्तों 21 मई 2005 को मुंबई में कैंसर के कारण 84 वर्ष की आयु में वे हमारे बीच से विदा हो गए। हिंदी सिनेमा में बेहतरीन और साफ सुथरा मनोरंजन देने के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों ये था हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे कलाकार को हमारा छोटा सा सलाम जिसने फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं एक खूबसूरत एहसास बनाया। इसी के साथ इस कार्यक्रम से दीप्ति पाठक निधीश को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे फिर यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। नमस्कार।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम

0: समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
1: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है
1: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है
1: विलेज तहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग लकी और ऋषि नवरंग
0: और ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
1: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी
1: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर

0: हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
0: जी
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
0: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुन्नार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी
1: यही वो अनोखी जगह है जहाँ विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी
1: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं।
0: जी
1: कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
1: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने

0: घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल

कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
1: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक

0: सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।
1: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो। आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ दादी माँ, का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
2: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ। जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
0: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता बच्चों के।

0: मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना? क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओहो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर बई नाचे मोर। नाचे मोर बई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर बई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में

0: साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
5: हाँ।
6: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू।
7: इसे काट। भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिसको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
7: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे।
6: अरे अटकू भाई, वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह, क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
8: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है,
6: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
4: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
7: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
6: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
4: अब अटकू मटकू

0: सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
1: अरे वाह, अटकू मटकू।
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
2: पेड़ हमारे
3: दोस्त हैं।
2: जीवन में हरियाली लाओ,
3: पेड़ लगाओ,
4: पेड़ लगाओ।
5: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: कर रहे हैं बहुत
1: हम्म,
0: ज्यादा समय की, तो हमारे सामाजिकता पे असर पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: हम सोशल आइसोलेट होते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगी शॉर्ट टर्म यानी जहन के बारे में।
1: बिल्कुल
0: उस जहन के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी इंसान अभी जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर इंटरनेट देखता है, जो नॉर्मल लिमिट्स हैं आजकल वो है 1.5 से 2 घंटा। लेकिन अगर हम 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन में, टाइम स्पेंड करने में या सोशल बॉन्ड्स बनाने में, तो वो इंटरनेट एडिक्शन की कैटेगरी में आता है। जहां तक हम बात करें कि साइकैट्री मानसिक रोग विभाग में 2 प्रकार की क्लासिफिकेटरी सिस्टम है, या जो बीमारियों को लेबल करता है कि ये बीमारी जैसे कि डिप्रेशन है या स्किजोफ्रेनिया है, उस तरीके का अगर हम लेबल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आज तक इंटरनेट एडिक्शन अभी तक
1: जी
0: नहीं है, डिसऑर्डर के कैटेगरी में नहीं है। अभी जो ICD-11 है, जो इस समय प्रारूप चल रहा है, जो बीमारियों के बारे में, मानसिक बीमारियों के बारे में क्लासिफिकेशन करता है, उनका डिस्क्रिप्शन देता है, कैसे उनकी बीमारियों को डायग्नोज करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के में गेमिंग और गैम्बलिंग डिसऑर्डर्स है।
1: अच्छा
0: तो यही 2 चीजें आई हैं, लेकिन रिसर्च आगे बढ़ रहा है। पहले ये भी नहीं थी, क्योंकि इतनी जरूरत ही नहीं थी कि इसको बीमारी के रूप में देखा जाए, अब वो बढ़ा है।
1: नहीं, कई बार देखा है कि बच्चे मोबाइल के ऐसे में एडिक्ट हो जाते हैं कि उसके बिना वो ना तो खाना खाते हैं ना घर में रहते हैं, मतलब खेलना कूदना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो ऐसे में क्या कहते हैं?
0: मैं इसको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाह रही थी
1: जी
0: कि जैसे कि अगर हम ये कह रहे हैं कि गेमिंग और गैम्बलिंग ही बताया उन्होंने, लेकिन अभी जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी,
1: जी
0: आप वो देखिएगा, वो बिहेवियरल एडिक्शन का पार्ट हो जाएंगे। जब नई ICD-11 की जगह आप 12 आएगी, जो अप्रोक्सीमेटली 10 साल बाद आती है, इतना टाइम एक रिसर्च को लगता है, क्योंकि वो WHO की किताब है,
1: जी
0: वो पूरे वर्ल्ड पे मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में ज्ञान देती है कि किस तरीके से कोई बीमारी, क्योंकि हम आप में देखें कि अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारी बीमारी अलग तरीके से प्रेजेंट करती है।
1: बिल्कुल
0: अगर हम वही बात अफ्रीका की बात करें तो वो सेम बीमारी अलग तरीके से लक्षण देती है।
1: बिल्कुल
0: तो उसी प्रकार से उसको इतना टाइम लगता है वो डेटा कलेक्ट करने में। जो आप इंटरनेट एडिक्शन बात कर रहे हो, मेरा ये मानना है और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से सिचुएशन खराब हो रही है, अंदाजन 24.78% अडोलेसेंट एज ग्रुप आजकल इंटरनेट में एडिक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है,
1: बिल्कुल
0: इट विल क्वालिफाई एज अ डिसऑर्डर, जस्ट लाइक स्किजोफ्रेनिया, जस्ट लाइक OCD और जस्ट लाइक डिप्रेशन, जैसे कि अवसाद, पागलपन, ये उसी तरीके की बीमारी के साथ में समकक्ष खड़ा होगा।
1: बिल्कुल तो ये बताइए कि नौजवानों में और बच्चों के जहनी सेहत पे जो इसका असर पड़ रहा है, तो इसको हम किस तरीके से देखते हैं या किस तरीके से इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे अब?
0: जो भी चीज अगर आप आज की बीमारी में देखेंगे, तो मैं ये नहीं कहूंगी इट इज अ क्योर, इसका कोई पूर्ण रूप से, मूल रूप से या जड़ से इसका इलाज हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर हम TB की बात करें, तो हम उसमें ATT देते हैं, हम सबको पता है, और अगर हमने बिल्कुल नियमित तौर पे वो दवाई खाई है, तो उसका मूल जड़ से इलाज होता है, जो हम कहते हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन साइकेट्री की या जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी है, इसका इलाज, एक रोकथाम जरूरी है, एक हम बचाव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हार्म रिडक्शन कर सकते हैं, यूजफुल उसमें ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह वो चीज जाना बिल्कुल आज के जमाने में मैं कहूंगी नामुमकिन है।
1: आप एक डॉक्टर भी हैं, एक टीचर भी हैं, एक जो को पढ़ाती भी हैं,
0: जी
1: आप एक माँ भी हैं, और सबसे बड़ी चीज कि आपके पास रोजाना ऐसे ऐसे ही मरीज आते हैं, तो आप क्या देखती हैं कि उसमें कहीं ऑफिस से परेशान है वो, कभी घरेलू जिंदगी से परेशान है, रिश्तों से परेशान है, या आपको लगता नहीं है कि सब कुछ ये मोबाइल और इंटरनेट की ही देन है?
0: मैं बिल्कुल इस बात से आपके बिल्कुल इस बात से वाकिफ हूं और इस बात से एग्री करती हूं कि आपने जो बात कही है, ये चीज हम पूर्ण तरह एग्री करते हैं। और जब आप कहोगे कि इसको ठीक या इससे थोड़ा उभरा कैसे जा सकता है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, हम उस समय इस चीज को यूज करते हैं। अगर आप और मैं अपने जमाने में देखें, तो जनरली अगर 20-25 साल पहले जाएं, तो शायद ही रेयरली फीमेल्स वर्क करती थी।
1: जी
0: हमारे घर

0: में एक वर्किंग मेंबर होता था जो फादर या मेल होता था, महिलाएं घर पे रहती थीं और वो बच्चों का ध्यान रखती थी। वो देखती थी कि बच्चे कितनी देर टीवी देख रहे हैं, कितनी देर नहीं देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। इस चीज पे बहुत कड़ी नजर एक माँ के तौर से होती थी।
1: बिल्कुल।
0: एक चीज, अब माँ शाम को बच्चे आने के बाद में आती है। आई कंप्लीटली एग्री, और मैं खुद एक वर्किंग फीमेल हूं तो मुझे लगता है कि इट इज ये एक महिला की मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है कि
1: जी
0: हम एक अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ें। लेकिन देयर हैज टू बी ए बैलेंस। अगर घर में दो लोग हैं और वो दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वापस जब पेरेंट्स आते हैं तो आप समझिए रोजमर्रा की जो हमारी ऑफिस की दिक्कतें हैं, हमारी गलती है कि हम उन्हें घर लेके आते हैं, हम उन्हें सॉल्व करके आए।
1: बिल्कुल।
0: जब हम घर पे हों तो हम घर के बारे में सोचें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आज की तारीख में अगर घर में चार मेंबर हैं तो चारों के पास में फोन है,
1: बिल्कुल
0: इंटरनेट की सुविधा है, और चारों अलग अलग सोफे पे बैठ के इंटरनेट देख रहे हैं। पापा भी देख रहे हैं, मम्मी भी देख रहे हैं, अब्बू भी देख रहे हैं, दादू भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। कोई ये बात समझ ही नहीं रहा कि आराम से वो चार लोग बैठ के चाय पी के बात भी कर सकते
1: बात
0: हैं।
1: भी कर सकते हैं।
0: वो चीज नहीं है। पहले हमारे जमाने में हमारे अब्बू क्या करते थे कि हमारे साथ में बैडमिंटन खेलते थे, गर्मियों की छुट्टियों में हम लूडो या चेस खेलते थे। आजकल के बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो क्या इस पे कैसे हम कदगन लगा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं इसको?
0: देखिए, जब हम एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं तो फिर हम उसको थेरेपी करते हैं।
1: जी
0: जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फोन आजकल की बेसिक निहायती इम्पॉर्टेंट जरूरत है, तो
1: जी
0: मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना फोन रिस्ट्रिक्ट करना होता है। एक टाइम फ्री जोन होता है, जैसे कभी हम काम करते हैं और फिर हम हमें संडे बनाया गया है।
1: बिल्कुल
0: संडे क्यों बनाया गया है? कि हम काम नहीं करेंगे उस
1: काम
0: दिन।
1: नहीं करेगा।
0: वो हमारी सेहत के लिए और हमारे जहन दोनों के लिए बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है।
0: उसी तरीके से क्या हम अपनी जिंदगी में एक रूल बना सकते हैं कि हम जब ऑफिस से आएंगे उसके 2 घंटे बाद फोन नहीं देखेंगे, उसके 15 मिनट। हमें अपने आप को टाइम लिमिट करना पड़ेगा कि हो सकता है हम सब वर्किंग हैं और हम सब अर्जेंट कंडीशंस में वर्किंग हैं।
1: जी
0: जैसे मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं अपना फोन नहीं देखूंगी और कोई मरीज का फोन आ गया कि वो बहुत सिक है, तो वो मुझे लगता है कि वो नेग्लिजेंस है।
1: बिल्कुल
0: तो क्या ऐसा हो सकता है जो हमें करना चाहिए, अपने आप को, हम सबको करना चाहिए कि टाइम लिमिटेड फोन देखें, कि हमें 15 मिनट्स देखना है, इतने आवर्स का ड्यूरेशन फ्री रखना है। फोन आए तो फोन अटेंड करना है, ना कि सोशल मीडिया पे चीजें पोस्ट करना है। अगर आप देखोगे जितने लोग अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर रहे हैं, मैं उस बारे में भी बात करूंगी। आप कहीं घूमने जाते हैं, लोग अपने मतलब यूएस घूमने जा रहे हैं, उस एनवायरमेंट को, उस माहौल को अपने अंदर
1: हाँ
0: असिमिलेट करने की जगह, उस चीज को एंजॉय करने की जगह लोग
1: जी,
0: फोटो खींचते हैं।
1: फोटो खींचते हैं, सही बात है।
0: आप उस चीज को महसूस नहीं करते। और मुझे लगता है कि हम किसी जगह जा रहे हैं तो हमें उसको अंदर से महसूस करना चाहिए। वो कैसा दिख रहा है, कैसी हवा चल रही है, क्या आवाज सुनाई दे रही है।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: फरमाया।
0: वरना हम टीवी में ही देख लीजिए अगर हमको फोटो खींचनी है, लेकिन लोग फोटो खींचते हैं, 150-200 फोटो खींचेंगे, फिर उसके बाद में उसको आधे से ज्यादा टाइम सेलेक्ट करेंगे। जो हम अपने परिवार के साथ घूमने आए थे, हम अडल्ट हैं, हम घूमने आए थे अपने बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, माँ बाप के साथ में घूमने आए थे, उस बारे में भी हम कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम उनके साथ में इंजॉय करने के बजाय पहले फोटो खींचने में टाइम खराब करेंगे, फिर उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर पोस्ट करेंगे, एंड उसके बाद में भी गेम खत्म नहीं हो रहा,
1: लाइक
0: हम लाइक्स देखते हैं।
1: देखेंगे।
0: अब आप ये सोचिए कि क्या है।
1: बिल्कुल।
0: ये हो गई बड़ों की बात। छोटों की बात पे अगर हम आए तो छोटे बच्चे जो हैं, मैं कई बार, मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ। सबसे कॉमन सवाल है, मे बी शुरू के दो इंट्रोडक्शनरी सवालों के बाद में सवाल पूछती हूँ, और वो सवाल है, आप अपने माता पिता से कितनी बार बात करते हो दिन में?
1: तो उसका जवाब
0: उसका
1: तो
0: जवाब
1: समझ गया मैं।
0: दो
1: बिल्कुल
0: मिनट का साइलेंस के बाद में जब जरूरत होती है तब बात कर लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: अब आप समझिए वो 2 मिनट बच्चे को क्यों लगा, कि वो सोच रहा है उसने आखिरी बार अपने माँ बाप से बात कब करी
1: कब
0: थी,
1: की।
0: और वो भी कई बार बेफिजूलत की बात करना बड़ा जरूरी है
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि बेटा आज स्कूल में दिन कैसा रहा, नंबर कितने आए, पढ़ाई में क्या था, होमवर्क क्या है। इसके अलावा
1: जी
0: आज आपका दिन

0: कैसा रहा?
1: बिल्कुल
0: ये एक सवाल है जो बहुत जरूरी सवाल है मेरे हिसाब से।
1: बिल्कुल
0: ये आपने कब पूछा था आखिरी बार अपने बच्चे से?
1: बिल्कुल, ये तो सवाल है,
0: ये सवाल है और ये बहुत जरूरी सवाल है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो कोई ऐसा मरीज आया हो जो मोबाइल एडिक्टेड हो, इंटरनेट एडिक्टेड हो, जरा सा हमारे सामेईन को बताया ताकि उससे सुन करके वो भी कुछ सीखें, और उनके आसपास भी कोई अगर ऐसा हो तो उनके लिए कारामत बात हो।
0: मैं मरीज की बहुत डिटेल्स तो डिस्क्लोज नहीं
1: नहीं,
0: कर
1: नहीं
0: सकती,
1: बिल्कुल नहीं, नाम बिल्कुल
0: बट
1: मत
0: मैं
1: लीजिए।
0: आपको एक फैमिली के बारे में बताऊंगी। एक बच्चा था जो 15 साल का था, उसका छोटा भाई था 10 से 11 साल का। ये दो बच्चे थे। उनके फादर जनरली अपने काम के बारे में
1: जी
0: बाहर रहते थे, उनकी मदर वर्किंग थी, वो एक अध्यापिका थी। तो वो उस समय जब बच्चे स्कूल से आते थे तब वो घर में रहती थी, लेकिन वो लेडी बहुत स्ट्रांग लेडी इन टर्म्स ऑफ कि डोमिनेंट के बच्चों को संभाल पाए वो नहीं थी। बच्चे शुरू से पढ़ाई में बे इंतहा अच्छे थे, तो माता पिता को भी अपनी तरफ से ये कोई शक नहीं था कि बच्चे आगे अपना फ्यूचर ढंग से डिसाइड कर लेंगे। धीरे धीरे जब ये फोन का एरा आया और इंटरनेट आया, तो उसके बाद में बच्चे धीरे धीरे फोन देखने लगे। और वो फोन पहले तो ऐसा होता था कि थोड़ा बहुत क्लास वर्क नहीं करते थे या होमवर्क नहीं करते थे, जो क्लास में काम छूट जाता था वो नहीं करते थे। मदर को लगा ठीक है, अभी ये उम्र का तकाजा है, 14-15 साल की उम्र होती है, बच्चे थोड़ा सा थोड़ा अपने आप में ये समझने लगते हैं कि हम सब समझते हैं, हमें आता है। ऐसे उन्होंने धीरे धीरे करके आखिरी के 4 या 5 महीनों में वो बच्चे उस लेवल पे आ गए कि दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे। उसके बाद में वो उन्होंने वो टीवी के आगे जो अपना वीडियो गेम है उसके आगे लगे रहते थे। हद तब हुई जब उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। वो खाना पीना तभी खाते थे जब उनकी मम्मी उनके हाथ में कटोरा देके जाती थी दाल चावल, तो वो खा लें या रोटी सब्जी, तो प्लेट हाथ में है तो हमने खा लिया। बाथरूम रोकने के लिए भी वो वेट कर रहे होते थे कि ये वाला तो स्कोर कर ही लेता हूँ, फिर उसके बाद में आगे जाता हूँ। इस लेवल पे स्थिति आ गई थी, नहाना धोना बंद कर दिया था, खाना उतना ही अगर माँ ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है, दोनों बच्चे। फिर उसकी उसकी जो जब वो हमारे पास में आए तो हमने उनको एक चीज समझाई कि अब चीजें हो चुकी हैं, तो उसको जो पहले चीज हो चुकी है जो खराब है उसके बारे में बार बार हम उनको बताएं कि नहीं आपने पहले ध्यान देना चाहिए था, तो उससे कोई फायदा नहीं। आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मतलब मुझे लगता है कि उपाय से जरूरी काम इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने उनको एक ही चीज समझाई कि कोई बात नहीं, हमें उन दोनों बच्चों को एडमिट करना पड़ा क्योंकि वो उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे थे। अगर जैसे ही टीवी उसकी मदर बंद कर रही है तो वो लड़ने पे आ जाते थे, यहां तक कि मार पिटाई पे उतारू थे वो,
1: बिल्कुल
0: जीने और मरने वाली सिचुएशन थी, अपना सर तक दरवाजे में मतलब दीवार में मारते थे। इस लेवल की समस्या है जो कि हमें लगता है कि नहीं इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है आज की तारीख में। और फिर हमने उनको वार्ड में भर्ती रखा और उस बच्चे ने फिर इंजीनियरिंग में करा भी, पर अगले 2 या 3 साल तक जब हमने उसको फॉलो अप किया तो हमने छोटा वाला फोन दिया हुआ था। ऑल्दो उसकी वजह से उसको कुछ लिमिटेशंस थी क्योंकि आज के जमाने में आपको पता है छोटे क्लास से लेकर इंजीनियरिंग तक के बच्चों को इंटरनेट की आवश्यकता है। तो उससे उसका डाउनफॉल हुआ, बट एटलीस्ट ही इज एबल टू रीच। बट ये हर समय हर वक्त हर मरीज के साथ में हो पाए ऐसा जरूरी नहीं
1: है। ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक चीज और भी है कि हम चूंकि इंटरनेट का जमाना है और रील का जमाना है, तो रील पे बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, हमारे सामने भी आती हैं, कई बार हम भी देखते हैं और देखते रह जाते हैं कि बैठे 5 मिनट के लिए और वो आधा घंटा निकल जाता है, क्लास में जाना है या कोई प्रोग्राम करना है तो देख लेते हैं, जरा सा एक रील देख लेते हैं, लेकिन एक देखा, दो देखा, तीन देखा, मालूम चला अरे वक्त तो निकल गया। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, तो बच्चे तो जाएंगे ही, लेकिन इसमें एक चीज़ और आई है कि रील में हर चीज़ सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी आ रही है और लोग उसको फॉलो भी करने लगे हैं, जिससे हमारा समाज भी बिगड़ रहा है और सेहत भी बिगड़ रही है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम ज़्यादातर अगर मोबाइल देखें, टीवी देखें, यानी स्क्रीन को हम ज़्यादातर देखें, तो हमारे जिस्म के अंदर बदलाव आएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो इस पर आप क्या कहती हैं?
0: जब भी हम इंटरनेट में स्क्रीन टाइम देते हैं तो हमारा जो स्क्रीन टाइम मैंने 1.5 से 2 घंटे बताया था फॉर नॉट वर्किंग पर्पसेस, अगर उससे ज्यादा हम चीजें करते हैं और स्पेशली हम रील्स देखते हैं, आप देखिए अगर आप एक मूवी देख रहे हो तो आपका एक कनेक्शन

0: बिल्ड हो रहा है, एक
1: बिल्कुल
0: स्टोरी बन रही है,
1: बिल्कुल
0: तो आप विच मीन्स यू आर अटेंडिंग टू थिंग्स,
1: जी
0: आपका अटेंशन बन रहा है उस एक मूवी में, उस एक एपिसोड में,
1: बिल्कुल वो कहानी बनती चलेगी,
0: कहानी बनती है, विच मीन्स आपका वर्क, दिमाग वर्क करता है कि अच्छा ये ऐसे है, प्रीवियस वाली चीज से ये ऐसे कनेक्टेड है,
1: बिल्कुल
0: विच मीन्स यू आर स्टिल इंक्रीजिंग द अटेंशन।
1: बिल्कुल
0: लेकिन जब आप रील्स देखते हो तो एक चीज खत्म होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि उस जो रील आप देख रहे हो उससे 4 रील पहले आपने क्या देखी थी आपको याद
1: याद
0: नहीं,
1: नहीं, बिल्कुल
0: उसका कारण यह है कि वो इन अटेंशन कॉज करता है। वो इन अटेंशन फिर आपकी नॉर्मल वर्किंग में आता है, वो चीज इन अटेंशन से एकेडमिक डिक्लाइन है, सोशल डिक्लाइन है। आप रील्स इतने ज्यादा वो टेम्पटिंग होते हैं, अभी आ रहा है वो, फिर वो आ रहा है, फिर क्या नया आएगा। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये नई चीज की तलाश कर रहा है,
1: बिल्कुल सही।
0: तो आप इसलिए आपको टाइम का पता नहीं चलता क्योंकि एक नई चीज आती है, तो नई चीज आती है तो आपको टाइम खराब होता है, साथ में आपका इन अटेंशन क्योंकि कोई किसी चीज से कोऑर्डिनेट कनेक्टेड नहीं है,
1: कनेक्ट नहीं है,
0: कनेक्टेड नहीं है, वो एक एपिसोड एक चीज दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो यू फील इन अटेंटिव। अच्छा नहीं पसंद आ रहा है तो स्क्रॉल करो आप, तो आप ये समझिए ना तो हमारे पास में उतना कंसेंट्रेशन के साथ में हम उस चीज को समझना भी नहीं चाह रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो वो हमारे हर ऑक्यूपेशनल एकेडमिक सोशल डिक्लाइन का कारण है, तो वो चीज हमें ध्यान देनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल इसमें जो आपने एक बात बताई बहुत ही गजब की और इस तरफ मेरा भी ध्यान नहीं गया था, शुक्रिया आपका, कि इन अटेंटिव होता है कि हम सोचते नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, और वही चीज हमारी जिंदगी में शामिल हो जाता है, और हम भी जब किसी के पास जाते हैं तो उसको भी रील ही समझते हैं और निकल जाते हैं, उसने क्या कहा हम समझ नहीं पाते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मतलब पॉइंट दिया आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सामईन भी इस बात को समझ चुके होंगे। तो अब ये बताइए कि बच्चों को हम किस तरीके से रोके, या बड़ों के अंदर अगर ये खामी आ चुकी है तो उसको कैसे रोके। ये दोनों ही एक बड़ा मुश्किल मरहला है, बच्चे को रोकना भी एक जुए शीर का लाना है, और बड़ों के सामने अगर आप कुछ बात करते हैं तो वो कहते हैं अच्छा अब आप कहेंगे मुझे, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो बताएं आप कुछ है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे डिफिकल्ट टू हैंडल एज अ साइकियाट्रिस्ट पर्सपेक्टिव, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बच्चों के साथ में अगर हम अपने परिवार के साथ में रहकर और उनको एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस दें, आउटडोर एक्टिविटीज, इंडोर एक्टिविटीज, उनसे बात करें जो हम पहले टाइम में करते थे जिससे हमारा दिमाग ठीक होता था, वो चीजें हमें उनके साथ करनी चाहिए। क्या आप अपने बच्चे को सुबह उठा के मॉर्निंग वॉक पे ले जाते हो? क्या नेचर वॉक पे ले जाते हो? नहीं,
1: बिल्कुल नहीं।
0: मैं ले जाती हूँ। जो उसकी दादी ने पेड़ उगाए हैं उसमें अमरूद कितने हैं वो गिनवाओ उससे कभी।
1: क्या बात,
0: उसके अमरूद गिनो और फिर उसको बताओ कि 6 नहीं 9 अमरूद हैं जो मैं करती हूँ।
1: क्या बात, बाकी 3 तलाश करो,
0: बाकी 3 ढूंढो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये चीज आप अपने बच्चे के, आपकी वेकेशंस हैं, बच्चे की वेकेशंस हैं, कभी लूडो खेल के तो देखो, चेस सिखाओ जिसमें बच्चे का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा,
1: बिल्कुल
0: फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, जिससे कि आउटडोर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ेंगी। आप बच्चों को एक बार उनके साथ एंगेज होके तो देखो, लेकिन उसके लिए पहले हमें फोन छोड़ना पड़ेगा।
1: बिल्कुल यही मैं आता
0: हूं, हम तो छोड़े उसको
1: जी।
0: तब तो हम बच्चों को बोले।
1: बिल्कुल,
0: महात्मा गांधी जी का भी सेम सिचुएशन थी।
1: हाँ।
0: जब उनको किसी ने कहा कि मीठा ज्यादा खाते हैं मेरे बच्चे को समझाओ, तो उन्होंने कहा 1 महीने बाद आओ।
1: बिल्कुल,
0: तो पहले खुद तो छोड़ के देखे हम।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन मसला यही है कि मैं आपके साथ जो अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अपने सामईन के लिए बात कर रहा हूँ, कि बच्चों का आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि आप सुबह उठिए, उनको वॉक पे ले जाइए, अगर जाहिर सी बात है
0: टाइम है, वक्त है,
1: तो लेकर जाइए,
0: आप 10 मिनट पहले बच्चे को उठाओ बस।
1: बिल्कुल 10 मिनट में आपका बहुत कुछ हो सकता है, और बच्चों से जो आपने कहा कि भाई 6 नहीं 9 है उसको तलाश करो, तो तलाश करना अगर बच्चे ने सीख लिया तो फिर तो वो तलाश कर ही लेगा, अपने आप को भी तलाश कर लेगा। जब बचपन में किसी चीज को तलाश करना शुरू किया तो अपने आप को तलाश कर लेगा। बहुत शुक्रिया, लेकिन बात ये आती है फिर वही कि हमारी बात हम कैसे,
0: देखिए हर इंसान का, अगर हम बड़ों की बात करें तो हम सबका एक वीक पॉइंट है, हर इंसान का होता है, मैं नहीं मान सकती अंटिल अनलेस आप सोशियोपैथ हो, साइकोपैथ हो, हर इंसान का एक वीक पॉइंट है, ज्यादातर वो वीक पॉइंट उनके बच्चे होते हैं।
1: बिल्कुल
0: आप, मैं हमेशा यही फॉलो करती हूँ कि आप वीक पॉइंट पे अगर आप वर्क कर दोगे, आप उनको समझाओगे कि आपके फोन देखने से

0: आपकी जहनी आपकी शारीरिक समस्याएं तो ठीक हैं, लेकिन उससे आपके बच्चे भी वही चीज सीख रहे हैं, तो आप उस चीज को समझाइए। दूसरी चीज है कि आपको एक 20-20-20 या 30-30-30 का रूल है, विच मीन्स कि अगर हमने 30 मिनट्स या 20 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम है तो 20 या 30 फीट्स दूर देखना है और 20 या 30 सेकेंड्स के देख लें। मतलब अगर मैंने 30 मिनट फोन देखा अपना, तो उसके बाद में मुझे टाइमर लगा के देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाइमर लगाना है हमें। हम जब भी रील्स देखते हैं हम 1.5 घंटा खराब कर देते हैं और हम भूल जाते हैं, तो टाइमर लगाइए आप। 30 मिनट बाद हम 30 फिट दूर देखेंगे, विच मीन्स 6 से 9 मीटर 30 सेकेंड के लिए, तो हमारी आंखें ठीक होंगी, उसमें जो स्ट्रेन पड़ रहा है, जो ड्राइनेस हो रही है, वो ठीक होगा, प्लस जो इनअटेंशन हमने कॉज किया है वो ठीक करेगा। ये चीजें खत्म करने के लिए नहीं है इंटरनेट एडिक्शन, पर
1: लो
0: उसकी उसकी जो हानिकारक प्रभाव है हमारे दिमाग
1: उसको
0: पे वो कर सकते
1: कम कर
0: हैं।
1: सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर में हम कैसे अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ भी रहें और नेचर के भी साथ रहें, इस दोनों का तवाजुन कैसे हम बरकरार रखें?
0: मुझे लगता है व्हेन यू हैव वर्क, आपको पास जब काम है उस समय काम करिए, और जिस समय काम नहीं है उसके बारे में तकल्लुफ, अपने दिमाग को जहन को शांति दीजिए।
1: शांति दीजिए।
0: यू नीड टू हैव मैंडेटरी ब्रेक्स।
1: जी
0: एज ए साइकेट्रिस्ट मैं खुद करती हूँ, मैं जब अपने मरीज देखती हूँ मैं 100% डेडिकेटेड हूँ, पर जब आप अपने मरीज देखने के बाद में आपकी छुट्टी है तो शांति दीजिए इस दिमाग को, अच्छा टाइम एंजॉय करिए,
1: जी
0: कुछ अच्छे पल बनाइए अपनी जिंदगी में अगर नहीं है तो, क्योंकि जब आप आगे जाके मतलब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो गए, या आज से 2 साल 4 साल बाद देखोगे और याद करोगे कि मैं वहां उस जगह से निकला था, तो वो आपको एक खुशी दे जाएंगे।
1: बिल्कुल। चूंकि आपका ताल्लुक जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दरस व तदरीस से भी है, यानी आप टीचर भी हैं, माँ भी हैं और इलाज भी करती हैं, तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर हुकूमत को या किसी तालीमी इदारे को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, अगर कोई मशवरा देना हो कि बच्चों को किस तरीके से एक तरफ किया जाए, तो क्या कहेंगी आप?
0: देखिए कोविड ने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दी और बुरी चीजें दी हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ, पर मेरा ये मानना है सीबीएसई जो है करिकुलम जो बोर्ड है वो काफी कोशिश कर रहा है बच्चों के समझने, वो समझता है बच्चों को, वो उनको चीजों को कम करने की कोशिश करता है, पर मुझे लगता है कोविड के बाद में एक दौर सा आ गया है बच्चों को स्क्रीन टाइम अवेलेबल करवाने का।
1: बिल्कुल।
0: स्मॉग हो रहा है दिल्ली में, हम दिल्ली में हैं, स्मॉग हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस करेंगे।
1: जी
0: एक नर्सरी एलकेजी और फर्स्ट क्लास का बच्चा जिसको हम चाहें कोशिश करें, तो कोई जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कहती बुनियादी ढांचा नहीं होना चाहिए, फाउंडेशन बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है,
1: जरूरी है।
0: पर उस 15 दिन में टीचर कम से कम एक मैसेज लिख सकती है कि बच्चे को इतना काम करवा दिया जाए, उसको वो 3 घंटे का स्क्रीन टाइम एक 5 साल के बच्चे को देने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: हम एडिक्टेड ही मान लीजिए, हमारा काम इसके बिना नहीं चलता, हमारी मीटिंग्स हैं जो यहां से फिर केरला तक हो रही हैं या आउटसाइड इंडिया हो रही है, उसके लिए तो ठीक है,
1: जी
0: लेकिन बच्चों का जो छोटे बच्चे हैं
1: बिल्कुल।
0: उनका एटलीस्ट 5वीं क्लास तक उनका मुझे नहीं लगता कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए।
1: बहुत शुक्रिया आपका, और मैं भी इस बात की तायद करता हूँ और मैं भी ये कहता हूँ कि छोटे बच्चों को तो ऑनलाइन क्लास होनी ही नहीं चाहिए, और इनफैक्ट मैं तो इसके बिल्कुल ऑनलाइन क्लास के खिलाफ ही हूँ, बिल्कुल इसकी मुखालफत ही
0: बच्चा
1: करता हूँ।
0: पढ़ता नहीं है, उसकी
1: बिल्कुल
0: वजह से मेरे पास कोविड के बाद में बहुत सारे पेरेंट्स आए,
1: जी
0: और आप मानोगे नहीं बहुत सीनियर लेवल के लोगों के पेरेंट्स आए, मतलब लाइक जो जज्स हैं और यू नो मिनिस्ट्री में हैं, कि हमारे बच्चे को हमने आईपैड दिया था कोविड में पढ़ने के लिए, और हमारी ड्यूटी कोविड में बिकॉज इमरजेंसी ड्यूटीज थी तो हम घर भी नहीं आ पाते थे, क्वारंटाइन होता था, उसके बाद में मेरा बच्चा जो एकेडमिकली मतलब अच्छे टॉप 5 टॉप 10 में था, आज वो आईपैड, मैं जब आता हूँ तो वो आईपैड में पढ़ रहा होता है, जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला वो गेम खेल रहा है,
1: जी
0: तो कोविड ने हमें ये एक सौगात दी है,
1: तो अच्छी भी और बुरी भी है।
0: बुरी भी।
1: आखिर में आप बच्चों और नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो टेक्नोलॉजी के इस दौर में टेक्नोलॉजी के साथ भी रहें और अपने करियर को या अपने आप को भी बना सकें? मैं करियर से ज्यादा अपने आप की बात करूंगा कि वो अपने आप को भी बना सके।
0: मुझे लगता है कि इंसान के लिए वो खुद जरूरी है, पर्सनल इम्पोर्टेंस जरूरी है, टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, इरिप्लेसेबल है, नीड ऑफ द आवर है, लेकिन आप अपने आप को ये बात समझने की कोशिश करें, किसी भी चीज को अगर हम नाप तौल के यूज करेंगे

0: हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को एक साथ सामंजस्य बना पाएंगे।
1: जी, तो बहुत शुक्रिया सामईन कराम, आज की गुफ्तगू से ये बात वाजह हो जाती है कि मोबाइल और इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल बच्चों और नौजवानों की सेहत के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकता है, मगर हम वक्त की पाबंदी, मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रुझान और वालदेन और असाज़ा की रहनुमाई को अपना लें तो इस मसले पर हम काबू पा सकते हैं या पाया जा सकता है। हम डॉक्टर किरण के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी बसीरत और तजुर्बे से हमें आगाह किया। उम्मीद है कि आप इस गुफ्तगू से रहनुमाई हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद तब्दीलियां भी लाएंगे। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम उर्दू मजलिस यहीं ख़त्म होता है। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे दावत पे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह तशरीफ़ लाती रहेंगी। सामीन, हम आपको बताते चले कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतज़ार सैफ़ी ने, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और मेहमानों के साथ, कुछ और मौजूआत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्यून ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
3: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनुसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं और पेशेवरों का किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का उपयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक का इस्तेमाल और इंजेक्शन का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग के प्रभावित देशों से आने और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता

0: African Union and the African Union Commission. Following these consultations, it was agreed that it would be advisable to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date. New dates for the summit and its associated meetings will be finalized through mutual consultations and communicated in due course. New Delhi has expressed its solidarity with the people and governments of Africa and its readiness to contribute to Africa's CDC-led efforts aimed at addressing the evolving health situation. The government has said that no cosmetic product is permitted to be used as an injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. The Central Drug Standard Control Organization has said that cosmetics are only intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on the human body. And in IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:10 और ठीक 20 सेकंड्स हुए हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। हमारी आज की पहली सूचना इस प्रकार है। थाना मायापुरी दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार कपिल पुत्र सुनील निवासी जनकपुरी दिल्ली दिनांक 20 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी आयु 16 वर्ष, कद 5 फीट और शारीरिक बनावट सामान्य है। कपिल के मस्तक के मध्य में काले तिल का निशान है। ये 20 मार्च 2026 की शाम तकरीबन 4 बजे घर से निकले थे और फिर वापस नहीं लौटे। यदि आप इनके बारे में कोई भी जानकारी रखते हैं तो कृपया संपर्क करें थाना मायापुरी दिल्ली। मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9312021279, 9312021279। कोतवाली दनकौर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त सूचना के अनुसार रूपा पुत्री मोहम्मद साबिर मूल निवासी जनपद अरैया बिहार हाल निवासी ग्राम गढ़ी मंडी श्याम नगर दनकौर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर दिनांक 31 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। रूपा की उम्र करीब 18 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल और शारीरिक बनावट एक हरी है। इनके दाहिने हाथ पर जले का निशान है। इनके संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति को ₹2000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। यदि आप इनके संबंध में कोई भी सूचना देना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें कोतवाली दनकौर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9639814474, 9639814474। थाना विसरख जनपद व कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त सूचना के अनुसार शारदा पत्नी संजय कुमार निवासी अहमदाबाद थाना विसरख गौतम बुद्ध नगर दिनांक 5 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। शारदा की उम्र 23 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच और शारीरिक बनावट हल्की है। ये अपने घर से नाराज होकर कहीं चली गई हैं और अभी तक वापस नहीं लौटी। यदि आपके पास इनके संबंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध है तो कृपया संपर्क करें थाना बिसरख जनपद व कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9411407774, 9411407774। थाना

सेक्टर 113 नोएडा, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त सूचना के अनुसार सचिन पाल पुत्र रामचरण पाल निवासी सेक्टर 113 नोएडा कहीं लापता हैं। सचिन पाल की उम्र 28 वर्ष, कद 5 फीट 11 इंच और शारीरिक बनावट सामान्य है। इनको अंतिम बार इनके घर ग्राम परथना थाना सेक्टर 113 नोएडा में ही देखा गया था। इनके संबंध में जानकारी देने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। यदि आपके पास इनके संबंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध है तो कृपया संपर्क करें थाना सेक्टर 113 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। मोबाइल नंबर नोट कर लें 8449201949 8449201949। हमारी अगली सूचना इस प्रकार है। थाना सेक्टर 50 गुरुग्राम से प्राप्त सूचना के अनुसार नौमिता मांझी पत्नी समीस मांझी निवासी टिकरी गांव सेक्टर 57 गुरुग्राम दिनांक 21 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। नौमिता मांझी को अंतिम बार सेक्टर 49 गुरुग्राम में देखा गया था। इनकी उम्र 29 वर्ष, कद 4 फीट 2 इंच, चेहरा गोल, रंग सांवला और शारीरिक बनावट हृष्ट पुष्ट है। यदि आपके पास इनके संबंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध है तो कृपया संपर्क करें थाना सेक्टर 50 गुरुग्राम। थाना सेक्टर 50 गुरुग्राम से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार हेमा कहीं लापता हैं। हेमा की उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल और शारीरिक बनावट पतली और फुर्तीली है। इनके दाहिने हाथ पर अंग्रेजी में मॉम डैड लिखा है। इनको अंतिम बार सेक्टर 49 गुरुग्राम में देखा गया था। यदि आपके पास इनके संबंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध है तो कृपया संपर्क करें थाना सेक्टर 50 गुरुग्राम। मोबाइल नंबर नोट कर लें 9053886000 9053886000।

थाना मधु विहार दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार दामिनी कन्नौजिया पुत्री राजन कुमार निवासी मधु विहार दिल्ली दिनांक 25 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। दामिनी कन्नौजिया की उम्र तकरीबन 19 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच, रंग सांवला और शारीरिक बनावट पतली है। यदि आप इनके संबंध में ज्यादा जानकारी चाहते हैं या कोई सूचना देना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें थाना मधु विहार दिल्ली। और आज की अंतिम सूचना इस प्रकार है, थाना इकोटेक 3 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से प्राप्त सूचना के अनुसार शिल्पा सिंह निवासी वेदपुरा इकोटेक 3 गौतम बुद्ध नगर दिनांक 29 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। शिल्पा सिंह की उम्र 22 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच और शारीरिक बनावट इकहरी व मजबूत है। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं और अब तक वापस नहीं लौटी।

यदि आपके पास इनसे संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध है तो कृपया संपर्क करें थाना इकोटेक 3 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: and agribusiness management on contract basis for a period of 3 years. The institute is located in Sector 30, Gandhinagar, Gujarat. Interested candidates may submit their applications by 25th May 2026. Details regarding the remuneration, qualifications and service conditions are available on the institute's website, and the website is www.urimanage.org.in. I repeat the website, it is www.urimanage.org.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, योग्य भारतीय नागरिकों से कुछ पदों पर संविदात्मक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। कॉरपोरेट रिलेशन मैनेजर, यह है पद का नाम। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर एक है जो कि अनारक्षित है। वेतन होगा प्रति माह स्तर 10 के हिसाब से, और आवश्यक योग्यता और अनुभव की बात करें तो उनका 55% अंकों के साथ MBA या समकक्ष योग्यता आवश्यक है। प्लेसमेंट सेवाओं, करियर सेवाओं, B2B सेल्स, व्यवसाय विकास या कॉरपोरेट संबंधों में न्यूनतम उनका 6 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। अभ्यर्थियों को इस पद के लिए तभी विचार उन पर किया जाएगा, और आयु सीमा की बात करें तो 50 वर्ष है। सहायक प्रबंधक कॉरपोरेट रिलेशंस कार्यालय के लिए एक पद यहाँ पर रिक्त है और ये अनारक्षित है। वेतन की बात करें तो प्रतिमाह वेतन स्तर 8 के समकक्ष समेकित वेतन उन्हें प्राप्त होगा। आवश्यक योग्यता एवं अनुभव में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ MBA या समकक्ष योग्यता, 50 वर्ष इनकी अधिकतम आयु सीमा है। वरिष्ठ सहयोगी कॉरपोरेट रिलेशंस कार्यालय के लिए एक पद अनारक्षित है। 65,000 उन्हें प्रति माह समेकित वेतन मिलेगा। आवश्यक योग्यता होगी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर या समकक्ष योग्यता। किसी शैक्षणिक संस्थान के प्लेसमेंट कॉरपोरेट रिलेशंस कार्यालय में 3 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव या फिर सेल्स मार्केटिंग क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है। इनकी आयु सीमा होगी 45 वर्ष। क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, एक यहाँ पर पद रिक्त है जो कि अनारक्षित है। 65,000 रूपए इन्हें प्रति माह समेकित वेतन मिलेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPhil MA अभ्यर्थी का क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI में वैध एवं वर्तमान पंजीकरण होना आवश्यक है। उच्च शिक्षण संस्थानों में पूर्व में परामर्श सेवाएं प्रदान करने का अनुभव हो तो अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर भी आयु सीमा है 50 वर्ष। वेतन स्तर 8 एवं उससे ऊपर के पदों के लिए संस्थान की नीति के अनुसार समूह चिकित्सा बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 25 मई 2026 शाम 5 बजे तक। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, यहाँ पर प्रतिनियुक्ति आधार पर विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। IIAC नई दिल्ली संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। भारतीय नागरिकों से पूरी तरह से प्रतिनियुक्ति आधार पर कुछ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पर सहायक रजिस्ट्रार, यह है पद का नाम। पदों की संख्या 1 है। वेतनमान होगा 7वें CPC के अनुसार Level 9। सहायक रजिस्ट्रार लेखा, ये भी एक पद यहाँ पर रिक्त है Pay Level 9 के अंतर्गत। निजी सचिव, पद की संख्या 4 है। यहाँ Pay Level 8 के अंतर्गत ये आते हैं। और सहायक अनुभाग अधिकारी लेखा, एक पद यहाँ रिक्त है Pay Level 7 के अंतर्गत ये आते हैं। योग्यता, अनुभव और अन्य नियमों एवं शर्तों का विवरण आपको मिल जाएगा इसके वेबसाइट पर www.indiaiac.org। यहाँ पर समस्त जानकारी उपलब्ध है। मुंबई पत्तन प्राधिकरण, प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक के एक पद के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक के पद के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है 29 जून 2026, पात्रता मापदंड वगैरह की जानकारी के लिए

0: इच्छुक उम्मीदवार चाहें तो वेबसाइट देख सकते हैं जो कि है www.mumbaiport.gov.in people and career/jobs। यहाँ पर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ऑनलाइन एप्लीकेशंस देख सकते हैं, वहाँ पर आप अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में स्वागत और अभिनंदन। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। और आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्या है इसका इतिहास। लेकिन आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज मेरा साथ दे रही है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार और मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। नमस्कार अनुजा।
5: नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून फरहत। फरहत, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रेफर यू टू यू द लेटेस्ट ट्रेंडिंग सिंस यस्टरडे।
4: जी,
5: आई जस्ट लव द फन एंड सिंबॉलिक गिफ्ट टू इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज विजिट टू रोम, अ पैकेट ऑफ पार्ले'स मेलोडी टॉफी। द गिफ्ट वॉज अ प्लेफुल रेफरेंस टू द पॉपुलर मेलोडी इंटरनेट ट्रेंड विच कम्बाइंस द सरनेम्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी and Melanie, of course. And from a viral Colosseum selfie and Rome drive to dinner diplomacy and Melody Toffees, PM Narendra Modi and Italian Prime Minister Giorgia Meloni once again sent the internet into a frenzy during Modi's Italy visit. The hashtag Melody trended globally as the two leaders mixed diplomacy with viral moments while also boosting India-Italy ties in technology, AI, energy and connectivity. The trend exploded globally after Prime Minister Meloni posted a selfie-style video with Modi from COP28, where she smilingly referred to him as the most loved leader. The post sparked a huge meme trend online, especially among users in India and Italy, who enjoyed the friendly chemistry between the two leaders. I'm sure you must not have missed it.
4: जी बिल्कुल, कल से बहुत ही ज्यादा हर सोशल मीडिया साइट्स पर ये वायरल हो रही है वीडियो और दोनों देशों की दोस्ती को ये बयां कर रही है।
5: The visit not only had important diplomatic goals, but India and Italy are expected to increase cooperation in areas such as trade, defense, maritime security, connectivity and strategic sectors. And of course, as you mentioned, Farhat, it's also International Tea Day today. Wishing all our listeners a happy tea time while tuned into today's fresh episode of Parikrama. It's time for our headlines first. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe Economic Corridor for deepening economic relations.
4: सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बौद्ध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया।
5: Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries.
4: पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश।
5: Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers.
4: IPL cricket में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से।
5: And India Meteorological Department issues red color warning for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And of course, Farhat, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about International Tea Day.

0: पड़ी। जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से लेना चाय ठंडी हो गई।
1: Certainly, there's something comforting about a cup of tea, isn't it, Farhad?
2: जी बिल्कुल अनुजा।
1: A cup of tea often feels like a pause that heart needs.
2: जी, घंटों काम करने के बाद आराम करता हुआ कोई थका हुआ कर्मचारी हो या फिर हमारी दादी जो अपनी सुबह की शुरुआत शांत प्रार्थनाओं से करती हैं।
1: और फ्रेंड्स सिटिंग टुगेदर ड्यूरिंग मॉनसून रेन्स टॉकिंग ओवर कप्स ऑफ चाय अक्रॉस द वर्ल्ड, टी इज फार मोर देन अ ड्रिंक।
2: जी बिल्कुल, और ये गर्माहट है, यादें हैं और मेहमान नवाजी हैं। लेकिन सुनने वालों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हर एक कप की चुस्की हम लेते हैं उसके पीछे कितने हाथ चुपचाप काम करते हैं और कैसे एक साधारण सी पत्ती ने हजारों सालों से संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और आजीविकाओं को आकार दिया है।
1: Of course, it's a pause shared across cultures, conversations and countless moments around the world. The story of tea began more than 5,000 years ago. Yet, even today, its importance continues to grow. Tea is now one of the most consumed beverages in the world after water.
2: जी अनुजा, चाहे आप भारत की हलचल भरी चाय की दुकानों की बात करें या जापान की शानदार चाय समारोह की, चाय एक सार्वभौमिक भाषा बोलती है। दिन की शुरुआत करना बिल्कुल संभव है अगर हाथ में एक प्यारी सी प्याली चाय न दी जाए। सर्दियों में तो ये और भी जरूरी हो जाती है, जब नरम रजाई से निकलने के लिए हम खुद को मना रहे होते हैं और एक गर्म चाय की प्याली से अपने हाथ सेक रहे होते हैं। ये सिर्फ एक कप चाय से कहीं बढ़कर आगे है।
1: एंड ऑफ कोर्स टी टाइम इज अ ब्यूटीफुल रिचुअल फॉर सोशल बॉन्डिंग, प्रोवाइडिंग द परफेक्ट एक्सक्यूज टू स्टेप अवे फ्रॉम स्क्रीन्स, रिलैक्स एंड शेयर स्टोरीज, वेदर इट्स मॉर्निंग फैमिली चाय, एन आफ्टरनून ऑफिस ब्रेक और अ कोजी वीकेंड गैदरिंग। It naturally fosters connection. And if we recognize the long history and the cultural and economic significance of tea around the world, as well as the significant role it plays in rural development, poverty reduction and food security in developing countries, the United Nations General Assembly proclaimed 21st of May as the International Tea Day.
2: बिल्कुल, यकीनन कभी न कभी हमारे सुनने वालों के मन में भी इस एक कप चाय के पीछे की यात्रा को लेकर जिज्ञासा जरूर जागी होगी। आज हम उसी जिज्ञासा के बारे में बात करेंगे। दुनिया भर में 1,30,00,000 से ज्यादा लोगों के लिए चाय महज एक पेय उद्योग नहीं है, ये उनकी आजीविका है, उनके जीवन का आधार है।
1: एंड इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज टी कल्टिवेशन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ फैमिलीज। फॉर काउंटलेस वुमेन स्पेशली द टी सेक्टर हैज ओपन डोर्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रॉन्गर पार्टिसिपेशन इन लोकल इकोनॉमीज।
2: लेकिन चाय केवल बहुत ही खास तरह की जलवायु परिस्थितियों में ही उगती है, बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन चाय के बागानों पर असर डाल रहे हैं और कई इलाकों में पैदावार कम कर रहे हैं, और इसीलिए आज चाय को लेकर होने वाली बातचीत अब सिर्फ उसके स्वाद या खुशबू तक ही सीमित नहीं है, ये अब पर्यावरण को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।
1: Indeed, how do we ensure that tea production remains fair, transparent and environmentally responsible? That is exactly what International Tea Day seeks to highlight. How to build sustainable value chains from field to cup so that tea continues to benefit people, cultures and the planet for generations to come.
2: बिल्कुल अनुजा, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाय का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। अक्सर चाय ही लोगों को आपस में जोड़ने का जरिया बन जाती है। जब कोई मेहमान घर आता है तो सर पहला सवाल यही होता है कि आप चाय पीना पसंद करेंगे, और कोई मुश्किल बातचीत भी साथ मिलकर एक कप चाय पीने से आसान हो जाती है।
1: एंड दैट्स सो ट्रू फरहत जी। बिजनेस मीटिंग्स, ट्रेन जर्नीज, कॉलेज कैंटीन्स, रोड साइड स्टॉल्स, tea quietly accompanies life's moments. Different cultures have shaped tea in beautiful ways. Some prefer strong milk tea with spices, others enjoy delicate green tea or fermented varieties.
2: ji aur chai khud bhi is baat par nirbhar karte hue badal jati hai ki uski pattiyon ko kaise process oxidize ya ferment kiya gaya hai, phir bhi in antaron ke bawajood bhavna wahi rehti hai.
1: Right, so speaking of Assam, the northeastern states share a long historical association with tea. Since at least the 12th century, the Singpho tribe in Assam utilized the leaves of wild growing tea bushes found in the forest for medicinal purposes. It is believed that the Singphos, considered to be among India's first tea drinkers, still process tea using a traditional centuries old method known as धुआंगचांग।
2: जी अनुजा, और सिंगफोस का मानना है कि प्रत्येक भोजन के बाद पारंपरिक रूप से चाय सेवन करने से पाचन में सहायता मिलती है और समुदाय को कैंसर और मधुमेह से मुक्त रखती है। असम में अहोम राजाओं के शासनकाल के दौरान भी लाल चा, जो कि असम में उगाए जाने वाले विशेष जंगली पत्तियों से बना एक शराब का सेवन है, दोनों शाही और

0: आम लोगों के घरों में एक लोकप्रिय स्वागत पेय है। वो सिंगफोस के अध्यक्ष बिसागाम थे और जिन्होंने 1823 में अंग्रेज रॉबर्ट ब्रूस और उनके भाई चार्ल्स को चाय पेश की थी। अंग्रेजों ने पाया कि आसामी चाय की उत्पत्ति उन क्षेत्रों में करना अनामिका किस्म की चाय की तुलना में ज्यादा आसान था।
1: And soon they established tea plantations as an alternative to the expensive Chinese teas they were accustomed to drinking. The production of Indian tea witnessed a remarkable increase under British rule, and they paid wages to Indians to work in the tea plantations. And interestingly, tea's cultural importance is so profound that 6 tea cultivation sites have been recognized by Food and Agriculture Organization of United Nations as globally important agricultural heritage systems.
0: जी अनुज, और ये केवल कृषि पद्धतियों बल्कि परंपराओं, जैव विविधता और सदियों के मानवीय ज्ञान को भी संरक्षित रखते हैं।
1: So maybe the next time we take a sip of tea, we'll remember that life's simplest moments can also be the most meaningful. Let's celebrate the comfort, calm and connection that every cup brings. Tea with friends is a therapy in disguise.
0: जी, और ये जिंदगी की सबसे शक्तिशाली चीजें जरूरी नहीं कि जटिल हों। ईमान कैसरानी भी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। फिर कहीं बैठकर पी जाए इकट्ठे चाय, फिर कहीं बैठकर पी जाए इकट्ठे चाय, फिर कोई शाम कपल साथ गुजारा जाए। तो चाय बेहद जरूरी है। और श्रोताओं, अब हम बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं का। तो अनुजा, सबसे पहले हम कहां जा रहे हैं?
1: वी ऑल टेक आवर लिसनर्स फर्स्ट टू लेह To explore the potential of apiculture as a sustainable livelihood in Ladakh, two-day seminar is being organized in Leh from yesterday, and it is an effort to introduce apiculture in the cold, arid region of Ladakh after a series of successful trials and studies at Krishi Vigyan Kendra in Leh. We have a report on this.
2: A series of studies on production of honey in the cold, arid region of Ladakh has found that apiculture has a promising livelihood option for the farmers of Ladakh. With this result, the first ever seminar is being organized in Leh, Krishi Vigyan Kendra Leh, Head Professor Dr. Ferozdin Sheikh, sharing the successful trial on extraction of honey through buckwheat and alfalfa, said,
3: पिछले 2-3 सालों से इस पे काम कर रहे हैं, तो अभी लार्ज स्केल में हमें हनी प्रोडक्शन हो रहा है। इसमें हम जो है कॉलोनीज यहाँ पे हमारे स्थापना सेंटर में वहाँ पे रखा है, तो वहाँ से जो है ये कॉलोनीज को वहाँ पे रखने के बाद वो जो बक वीट और जो अल्फा अल्फा है वहाँ के फ्लावर्स में, उसके हिसाब से फिर हमने वहाँ प्रोसेस सेंटर करके हमने यहाँ पे हनी लगाया, और फार्मर्स के लिए बहुत इनकम अच्छा है। बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डेवलप किया है, जिसमें हमने जैसे चॉकलेट है, केक्स है, और भी वैल्यू एडिशन के हमने किया। हमने यहाँ के कैंडल्स भी हनी का जो वैक्स है बनवा।
2: This initiative, titled as Honey, Sustaining and Sweetening Future, has brought together renowned scientists, researchers, academicians and entrepreneurs from different parts of the country. It is being organized by University of Ladakh in collaboration with Sheri Kashmir University of Agriculture, Science and Technology, Jammu, with support of several reputed institutions and banks. Yangchan Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
0: और श्रोताओं, अब चलते हैं भोपाल। देशी बीजों को बचाने की अनोखी मुहिम मध्य प्रदेश से चल रही है। जानते हैं कैसे सुनीता सिहोरे खास बीज बैंक के जरिए किसानों की जिंदगी बदल रही हैं।
4: मध्य प्रदेश के बालाघाट की सुनीता सिहोरे के घर एक अनोखा खजाना है। इस खजाने में सोना चांदी नहीं बल्कि 70 तरह के देशी बीज हैं। सुनीता आजीविका मिशन की बीज सखी हैं। वो किसानों को ये बीज मुफ्त देती हैं, बस एक वादे के साथ, फसल होने पर जितना बीज लिया था उसका दोगुना वापस करना होगा, ताकि अगले किसान तक भी ये अमानत पहुँच सके। ये बीज भी बहुत खास है, कम पानी में उगते हैं, कम खाद मांगते हैं और सूखे में भी डटे रहते हैं। रासायनिक खेती की दौड़ में जो बीज पीछे छूट गए थे, सुनीता सिहोरे जैसी महिलाएं उन्हें फिर से जिंदा कर रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अब 454 बीज सखियां हैं और 29 जिलों में 99 बीज बैंक बनकर तैयार हो चुके हैं। आगामी खरीफ फसल के लिए किसान बीज सखियों से देशी बीज ले सकते हैं। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: And from Leh to Bhopal, and now we take you to Panaji, where MICE Tourism, or MICE Tourism, which stands for Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, is emerging as an important part of Goa's tourism sector. The Goa Tourism Department is planning new initiatives to promote the state as a preferred destination for business events and conferences. We have more on this from our correspondent from Goa.
5: गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट इज सेटिंग अप ए सिंगल विंडो माइस ब्यूरो टू प्रमोट बिजनेस टूरिज्म इन दिस

0: state. The Bureau will function as a nodal agency for meetings, incentives, conferences and exhibitions tourism in Goa. The decision was discussed during a meeting with tourism stakeholders on the roadmap for the next 6 months. The proposed Bureau is expected to help strengthen Goa's position as a preferred MICE destination. Regarding this, Tourism Minister Rohan Khamte said,
1: "The tour operators, the OTAs, everybody is coming together, including the airport authority, to ensure the monsoon sells well as a package. So, Honorable Prime Minister is ensuring that domestic tourism in India is absolutely witnessing unprecedented growth. And we need to ensure that Goa continues to remain one of the country's most aspirational destinations."
0: Despite global challenges affecting airline operations, tourist arrivals to Goa continue steadily. It is clear that Goa no longer sees an off-season and remains a preferred destination for visitors, and efforts are also underway to promote monsoon tourism in the state. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Parji.
2: और एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का विकल्प देने की शुरुआत की है। इसके लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालय खोले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि फिलहाल वर्ष 2026-27 के बजट घोषणा के अनुरूप पहले चरण में चिन्हित 250 विद्यालयों का शुभारंभ किया गया है। इन विद्यालयों को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ये विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे तथा इनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालयों में आधुनिक संसाधन, बेहतर आधारभूत ढांचा, प्रयोगशालाएं, पाठ कक्षाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का चयन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्रमदान को अनिवार्य किए जाने का निर्णय भी लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन, सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। ये निर्देश भी दिए गए हैं कि शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे। शिक्षकों के मोबाइल विद्यालय में प्रधानाचार्य कक्ष में जमा रहेंगे तथा शिक्षण कार्य के दौरान मोबाइल के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
4: And a three-day workshop on palm oil development in Northeast region concluded at Pasighat in East Siang district of Arunachal Pradesh. We have a report on this.
5: A three-day national workshop on strategic solutions for rapid development of oil palm in the Northeast at Pasighat College of Horticulture and Forestry, CHF, in East Siang district of Arunachal Pradesh concluded today. The workshop aimed on strategic approaches for rapid expansion of oil palm cultivation in the Northeastern hill regions and formulation of a road map for achieving self-reliance in vegetable oil production following the central government's Atmanirbhar Bharat mission. On the occasion, representatives of Northeastern states placed reports of oil palm cultivation in their respective states and explained opportunities and challenges in oil palm cultivation and processing. The workshop was jointly organized by the CHF Society for Promotion of Oil Palm Research and Development, ICAR, IIOPR, Central Government's Agriculture and Farmers Welfare Department, and oil palm processing companies. For Parikrama, Kenyum Ango, Akashwani, Itanagar.
2: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट की सबसे पहले बात, आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी।
4: एंड नाउ कमिंग टू द बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट आफ्टर अ choppy trade today. The Sensex declined 135 points to close at 75,183, while the Nifty dipped marginally by 4 points to settle at 23,655. The broader market on the National Stock Exchange ended mixed. The mid-cap 100 ended flat with negative bias, while the small-cap 100 rose by 0.6%. For more updates about the market activities, of course, tune in to Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
2: और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
6: आज गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी ओमियो कुमार दास की जयंती है। उनका जन्म

0: 21 मई 1895 को असम के नौगांव जिले में हुआ था। वे लोक नायक के नाम से लोकप्रिय थे। ओमियो सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवाद दर्शन में विश्वास करते थे। वे शिक्षाविद और जाने माने लेखक भी थे।
1: ओमियो का लालन पालन उनके नाना लक्ष्मीकांत बरकाकति ने किया, जो स्वयं भी राष्ट्रवादी थे और युवा ओमियो के व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत प्रभावित किया।
0: ओमियो जब तेजपुर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो 1905 में बंग भंग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकता के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मजदूरी भी की। उनकी राष्ट्रवादी भावना को कॉलेज जीवन में और मजबूती मिली जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एनी बेसेंट और अन्य हस्तियों के भाषण सुने।
1: जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने आंदोलन में शामिल होने के लिए आसपास के युवाओं को एकजुट करने का कार्य किया। इस आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब और अफीम की दुकानें बंद कराई गई और अदालतों का त्याग किया गया।
0: 1921 में जब ओमियो दरांग जिला कांग्रेस के महासचिव थे तो ये आंदोलन और तेज हो गया। एक बार तो शराब की दुकान बंद कराते समय ओमियो का सामना एक क्रोधित महिला से हुआ, जो शराब खरीदने आई थी। ओमियो ने उन्हें शराब पीने के नकारात्मक असर के बारे में समझाया। वो महिला ओमियो से इतनी प्रेरित हुई कि उसने शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद उस महिला ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ऐसा था ओमियो का नेतृत्व कौशल।
1: जब गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने स्वयं ही युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी संभाली। स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा।
0: ओमियो को 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवा की। श्रम मंत्री के रूप में ओमियो ने असम के चाय बागान कामगारों के लाभ के लिए चाय बागान कामगार भविष्य निधि की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार किया।
1: ओमियो समाज सुधारक और लोकप्रिय लेखक भी थे। गांधी जीर जीवन और आसोमोत महात्मका जैसी पुस्तकों के लेखन के साथ उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का असमिया भाषा में अनुवाद भी किया, जो मूर सत्य अनीश चवनर काहिनी के नाम से प्रकाशित हुई। 1963 में भारत सरकार ने राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
0: ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी 1975 को हुआ। वे अपने पीछे प्रतिबद्धता और देशभक्ति की विरासत छोड़ गए। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।
1: आज हम थाला सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी के निवासी थे। थाला सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान थाला सिंह मलाया में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और हवलदार के रूप में सेवाएं दी।
0: बर्मा के मोर्चे पर 21 मई 1944 को अंग्रेजों से युद्ध के दौरान थाला सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के महान सपूत को शत शत नमन।
2: And we also pay tribute to the man who taught India to hug trees, the Gandhian who was the driving force behind the Chipko movement, who died due to COVID-19 on this date in 2021. Yes, I'm talking about Sundar Lal Bahuguna. It was a non-violent agitation, the Chipko movement, which originated in Uttar Pradesh's Chamoli district in 1973. And the name of the movement Chipko comes from the word embrace, as the villagers hugged the trees and encircled them to prevent being hacked. It is best remembered for the collective mobilization of women for the cause of preserving forests, which also brought about a change in attitude regarding their own status in society. Its biggest victory was making people aware of their rights to forests and how grassroots activism can influence policy making regarding ecology and shared natural resources. It led to a ban on commercial felling of trees above 30 degrees slope and above 1000 mean sea level in 1981. Of course, it was known for coining, the person was known for coining the CHIPCO slogan, the ecology is permanent economy. After the CHIPCO movement in the 1970s, he gave the message across the globe that ecology and ecosystem are more important. And he was of the opinion that ecology and economy should always go together.
3: बिल्कुल अनुजा, और इसके अलावा उन्होंने दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए भी काफी काम किया और उनके लिए टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना की, दलितों को मंदिर

0: प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी इन्होंने आंदोलन छेड़ा था.
1: वी रियली नीड अनदर सच मैन नाउ फरहत एंड ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन 2009.
0: जी, और अब आगे बढ़ते हैं, एक और शख्सियत को याद करते हैं, गांधीवादी जीवन शैली की कट्टर समर्थक रही जानकी देवी बजाज को. उन्होंने कुटीर उद्योग के माध्यम से ग्रामीण विकास में काफी सहयोग किया और एक स्वावलंबी महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया.
1: She was inspired by Mahatma Gandhi and her husband Jamnalal Bajaj embraced a life of rigorous simplicity and patriotism. Her dedication to nation building continued long after India gained independence in 1947. And today we also pay respectful tribute to former Prime Minister Bharat Ratna Shri Rajiv Gandhi, who served as the Prime Minister of India from 1984 to 1989 for two terms, on his death anniversary today. His life was cut short by an act of terror, and that is why the day is observed as National Anti-Terrorism Day, reaffirming our firm resolve to fight terrorism in all its forms. Terror has no religion, no humanity, and no place in a democratic society. It also reminds us that peace is not merely the absence of violence, but the strength of a nation that refuses to surrender to fear.
0: और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं समय के अनूठे व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी को. अपने वक्त की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने अत्यंत पैनी निगाह से देखा. अपनी पैनी कलम से बड़ी सावगोई के साथ इन्होंने सटीक शब्दों में व्यक्त किया. शरद जोशी पहले व्यंग्य नहीं लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी आलोचना से खिन्न होकर व्यंग्य लिखना शुरू किया.
1: नोन फॉर हिज रेजर शार्प विट, ही मास्टरफुली ब्लेंडेड टाइमलेस ह्यूमर विद सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री. ही वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट of India in 1990. Sharad Joshi has written many satirical essays on political, social, cultural and economic topics. And of course, we have also, he has also given dialogues for many of films, and we have chosen a dialogue from his, from a film, Choti Si Baat, for which he had written a dialogue.
2: मुझे मालूम है आपका नाम प्रभा नारायण है और आप खार में 9th लेन में रहती हैं, शाम निवास तीसरा माला.
3: कितने दिनों से आप मेरा पीछा कर रहे हैं?
2: बस मैं हमेशा कोई किताब पढ़ती रहती हैं, डेनिस रॉबिन्स के रोमांटिक नॉवेल्स.
3: चाय पीजिए नहीं तो ठंडी हो जाएगी.
2: पिछले सोमवार को आपने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और शुक्र को हरी. अक्सर हल्के रंग की साड़ी पहनती हैं आप. आपका बैग हमेशा सफेद रंग का रहता है ना? बैठते समय आप अपना पैर एक दूसरे के ऊपर रखती हैं और आपके सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाखून बड़ा है.
1: And today we also pay tribute to Rai Bahadur Sir Sundarlal, who was a prominent Indian jurist, academic administrator and the founding vice chancellor of Banaras Hindu University. He is widely remembered for his major contributions to Indian education and the Indian legal system.
0: और श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में अब हम याद कर रहे हैं कुछ ऐसे डायरेक्टर की बात कर रहे हैं जो कम फिल्मों का निर्देशन करते थे, लेकिन जितनी भी फिल्में बनाते थे वो कमाल की होती थी. उन डायरेक्टर्स में से एक यश चोपड़ा थे और उनके बेटे आदित्य चोपड़ा. और सोशल मीडिया पर भी आदित्य चोपड़ा की बहुत कम तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन इनका काम बोलता है. 23 साल की उम्र में आदित्य ने पहली फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे.
1: Yes, and the films he has produced make him the highest grossing Indian film producer of all time. And of course, the first one was Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, a genre-defining Bollywood film directed by him and released in 1995. The movie had Shah Rukh Khan and Kajol. Of course, we remember all that those things. And the film is regarded as the definitive Bollywood romance and has significantly shaped Indian popular culture and imagination over the years.
4: I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया.
5: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं.

0: अलावा आदित्य ने रब ने बना दी जोड़ी और बेफिक्रे जैसी फिल्में भी की और आदित्य चोपड़ा ने धीरे धीरे अपने पिता की कंपनी यशराज फिल्म संभालना शुरू किया और नई ऊंचाइयों तक पहुंच गए।
1: टुडे वी ऑल्सो विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मोहनलाल हु इज एन इंडियन एक्टर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर होस्ट एंड प्लेबैक सिंगर हु हैज स्टार्ड इन मेनस्ट्रीम ब्लॉकबस्टर एंड आर्ट हाउस फिल्म्स मलयालम फिल्म्स मेनली ही हैज मेड ओवर 360 appearances

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46,000 से 47,000 टन LPG का उत्पादन हो रहा है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी नमस्कार।
1: तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं लोक रंजनी कार्यक्रम लेकर के। और देखिए आज हम अपने सभी बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं प्यारे प्यारे लोकगीत।
0: बिल्कुल। और देखिए लोक रंग यानी कि लोक भाषा में हमारे लोकगीत और लोक संगीत यानी कि लोक भाषा में जो हमारे एक तरह से कहते हैं ना कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे भाव हैं, उन भावों को, उन विचारों को, उन खुशियों को, उन सब विचारों को प्रकट करने का एक प्यारा सा माध्यम है लोक संगीत। तो
1: बिल्कुल
0: आज इसी लोक संगीत के साथ ही कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत अपने सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं। और सबसे पहले सुनवाते हैं सविता शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: उनसे बलम की ऐसी बिगड़ी वो तो कतरी सुपारी न खाए। अभी हमारे सभी बहन भाई सुन रहे थे सविता शर्मा की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत, और अब सुनवाते हैं प्रवीण कुमार की आवाज़ में ये भजन।
1: ओ गुरु बिन मनुष्य जन

गुरु बिन मनुष्य जन्म बेकार, तेरी नैया पार लगाना। बहुत ही बढ़िया भजन सुनवाया हमने अपने सभी बहन भाइयों को प्रवीण कुमार की आवाज़ में अतुल भाई। और अब सुनवाते हैं वीणा ढिल्लो और उनकी सखियों से एक प्यारा सा लोकगीत।

पायल बहन अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे वीणा ढिल्लो और उनकी सखियों की आवाज़ में ये लोकगीत। और अब चलते चलते अपने भाइयों को मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं रचना शर्मा की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे रचना शर्मा की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत। और इसी लोकगीत के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज धर्मेंद्र और
3: प्रतीक आनंद
2: का नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आज खेलों की बात करें तो निश्चित रूप से आईपीएल के दिलचस्प मुकाबलों की कहानी है, साथ ही बैडमिंटन की भी रिपोर्ट है। बात हम करेंगे रोविंग की भी, बात करेंगे सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भी और साथ ही साथ बैडमिंटन की भी। तो शुरुआत करते हैं आईपीएल से, क्योंकि आईपीएल के आज से मुकाबले नहीं हो रहे हैं बल्कि आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। सीएसके का सामना होना है और सीएसके के लिए बहुत कुछ दांव पर होगा जीटी के खिलाफ। सुनते हैं पहले कल के मैच के परिणाम के साथ साथ आज के मैच का पूर्वावलोकन।

कल ईडन गार्डन्स पर कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया। मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर 147 रन ही बना सकी। वर्षा से प्रभावित इस मैच में टीम का रन रेट 7.35 रहा, जो इस सीजन 20 ओवर पूरे खेलने वाली टीमों में तीसरे सबसे खराब स्कोर रहा। इस मैच में कोलकाता के गेंदबाजों का दबदबा रहा। मैच की शुरुआत बेहद खराब रही। मुंबई पावर प्ले के भीतर ही अपने 4 अहम बल्लेबाजों को खो दिया। डायन रिकल्टन 6 रन बनाकर कैमरन ग्रीन की गेंद पर आउट हुए, जहां मनीष पांडे ने एक शानदार कैच पकड़ा। रोहित शर्मा 15 रन बनाकर सौरभ दुबे का शिकार बने। नमन धीर बिना खाता खोले ग्रीन की गेंद पर आउट हो गए और सूर्य कुमार यादव भी 15 रन बनाकर चलते बने। सूर्य कुमार यादव का इस सीजन बल्लेबाजी औसत 17.5 रहा है, जो उनके आईपीएल करियर में दूसरा सबसे खराब औसत है। इस तरह शुरुआती 6 ओवरों में मुंबई दबाव में आ गई। मध्य क्रम में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालने की कोशिश की। मुंबई की सबसे बड़ी साझेदारी तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच 49 गेंदों पर 43 रन की रही, लेकिन 5.26 के रन रेट से बनी ये साझेदारी इस सीजन 30 से ज्यादा गेंद खेलने वाली साझेदारियों में दूसरी सबसे धीमी है। अंत के ओवरों में विल जैक्स ने 14 रन और कॉर्बिन बॉश ने नाबाद 32 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। बॉश की यह पारी मुंबई के लिए सबसे तेज रही। बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी की, तो ग्रीन और सौरभ की अगुवाई में केकेआर की उम्दा गेंदबाजी देखने को मिली। कोलकाता के लिए कैमरन ग्रीन ने सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी की। उन्होंने 3 ओवरों में 23 रन देकर 2 विकेट लिए और 9 गेंदें डॉट डाली। यह पहली बार है जब ग्रीन ने आईपीएल में एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले। वहीं सौरभ दुबे ने अपने 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए। स्पिन विभाग में सुनील नरेन ने 4 ओवरों में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 28 रन दिए। बड़ी ही किफायती गेंदबाजी रही। कार्तिक त्यागी ने भी 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। कोलकाता की अनुशासित गेंदबाजी के सामने मुंबई के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए। ग्रीन और सौरभ की शुरुआती सफलता ने मुंबई पर दबाव बनाए रखा, जिससे पूरी टीम 20 ओवर में गति नहीं पकड़ पाई। इसके बाद कोलकाता के बल्लेबाजों ने 148 रन का पीछा करते हुए तेज शुरुआत करने की कोशिश की, मगर 7.1 ओवरों में 54 रन पर 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। फिर मनीष पांडे और रॉबमैन पवल के बीच 41 गेंदों में 64 रन की साझेदारी हुई, जिसने केकेआर को मैच में बनाए रखा। अंत में रिंकू सिंह ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई और केकेआर की क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को बनाए रखा।

अब नजर डालते हैं आज के मैच पर। अहमदाबाद में आज गुजरात टाइटंस के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती होगी। यह दोनों टीमों का प्रतियोगिता का आखिरी मैच होगा। चेन्नई के लिए ये मैच बेहद अहम है। टीम अगर आज हार जाती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं गुजरात के पास मौका है मैच जीत

कर टॉप टू में फिनिश करने का। पिछले साल जिस टॉप टू फिनिश से वो चूक गए थे। अब तक जीटी और सीएसके के बीच 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें जीटी ने 5 मैच जीते हैं, जबकि चेन्नई ने भी 4 मैच जीते हैं। ये आंकड़ा बताता है कि आज का मैच बेहद रोमांचक होगा। बात करें गुजरात के बल्लेबाजों की, तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने गुजरात के लिए 500 से अधिक रन बनाए हैं। दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने 13 मैचों में 21 विकेट लिए हैं। वहीं बात करें चेन्नई के लिए, गायकवाड़ का इस आईपीएल में स्ट्राइक रेट 120.68 का रहा है। शुरुआती मैचों में फॉर्म से जूझ रहे चेन्नई के कप्तान को कुछ मैचेस से लय प्राप्त हुई है। गेंदबाजी में भी अंशुल कंबोज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 मैचों में 20 विकेट लिए हैं।

आईपीएल 2026 में एक हिट थ्रिलर फिल्म का सारा एलिमेंट देखने को मिल रहा है। सांसें रोक देने वाले मुकाबले हैं, हर पल बढ़ता रोमांच है, क्लाइमेक्स पर सब कुछ उलट पलट कर देने वाले मुकाबले हैं। सभी टीमों के लिए लीग का एक एक मुकाबला बचा हुआ है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि प्लेऑफ की चौथी टीम कौन सी होगी। प्लेऑफ का रोमांच और बढ़ गया है। अभी तक की बात करें तो कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर अपनी प्लेऑफ उम्मीदें जिंदा रखी। टीम के अब 13 मैचों में 13 पॉइंट्स हो गए और वह छठे स्थान पर पहुंच गई है। टीम का आखिरी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से है। केकेआर को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मैच जीतना होगा, साथ ही राजस्थान और पंजाब के हारने की भी उम्मीद करनी होगी। अब प्लेऑफ के चौथे स्थान के लिए राजस्थान, पंजाब, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला बना हुआ है। चेन्नई आज गुजरात टाइटन्स से भिड़ेगी और टीम को हर हाल में जीत चाहिए। चेन्नई 13 मैचों में 12 पॉइंट्स के साथ सातवें स्थान पर आ गई है। टीम को कोलकाता की जीत से एक पायदान का नुकसान हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 पॉइंट्स और प्लस 1.065 नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है। टीम पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। अगर नेट रन रेट में बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो आरसीबी का क्वालिफायर एक खेलना तय है। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद 16-16 पॉइंट्स के साथ और नेट रन रेट के आधार पर दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। गुजरात का आखिरी मुकाबला चेन्नई से है। टीम अगर इस मैच में जीत दर्ज करती है तो 18 पॉइंट्स के साथ क्वालिफायर एक खेल सकती है। वहीं हैदराबाद का सामना बेंगलुरु से होगा। एसआरएच को टॉप टू में जगह बनाने के लिए आरसीबी को बड़े अंतर से हराना पड़ सकता है। राजस्थान रॉयल्स 14 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है। टीम का आखिरी मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। 24 मई को अगर राजस्थान जीतती है तो 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी और प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी। पंजाब किंग्स 13 पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर है। टीम लगातार 6 मैच हार चुकी है। पंजाब को प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत दर्ज करनी ही होगी, साथ ही राजस्थान के हारने की भी उम्मीद करनी होगी। दिल्ली कैपिटल्स 12 पॉइंट के साथ आठवें स्थान पर खिसक गई है। टीम का नेट रन रेट -0.871 है। दिल्ली को आखिरी मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी और दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। मुंबई 8 पॉइंट्स के साथ 9वें जबकि लखनऊ 8 अंक लेकर आखिरी स्थान पर है। मुंबई का आखिरी मैच राजस्थान से जबकि लखनऊ का पंजाब से होगा। हम आपको बता दें कि अभी ऑरेंज कैप राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी के सिर पर है, जबकि पर्पल कैप की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, जो भारत के अनुभवी गेंदबाज रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं।

और आईपीएल के बाद अब बात एथलेटिक्स की। प्रचंड गर्मी के बीच देश के शीर्ष एथलीट झारखंड की राजधानी रांची में कल से 25 मई तक 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में आगे निकलने के लिए अपने पसीने की एक एक बूंद से ट्रैक को सींचेंगे और फिर वहां से पदक पैदा होगा। भारतीय एथलेटिक्स संघ के निर्देशानुसार झारखंड एथलेटिक्स संघ और झारखंड सरकार के खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी भाग लेने जा रहे हैं। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ओलंपियन और एशियाई पदक विजेता खिलाड़ी भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस आयोजन से एक तरफ जहां झारखंड को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी, वहीं ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ग्लासगो और एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जापान के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा।

रांची में इस स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। रांची में होने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का जबरदस्त माहौल है। इस आयोजन से झारखंड की खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस आयोजन में कई नामी गिरामी एथलीट भाग ले रहे हैं। पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर में जाने माने एथलीट अनिमेश कुजूर और अभय सिंह की भागीदारी होगी। 400 मीटर दौड़ में राजेश रमेश और विशाल टीके की भागीदारी होगी। 800 मीटर दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्ण कुमार मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। अजय सरोज और सुनील डावर 1500 मीटर के प्रमुख एथलीट होंगे। 5000 मीटर और 10000 मीटर की लंबी रेस में कार्तिक करकेरा पर मुख्य नजर होगी। 110 मीटर बाधा दौड़ में तेजस शीर्षे और कृषक एम मुख्य एथलीट होंगे। इसी तरह 400 मीटर हर्डल में रुचित मोरी, यशस पलाक्सा, जुबीर मदारी और संतोष टी एक दूसरे को तगड़ी चुनौती देंगे। जहां तक जंप इवेंट्स की बात है, हाई जंप में सर्वेश कुशारे और आदर्श राम जैसे सितारों की चुनौती होगी। वहीं पोल वॉल्ट में देव मीना, कुलदीप कुमार और जी रीगन छलांग लगाएंगे। लॉन्ग जंप में मुरली शिवशंकर, पूर्व नेशनल रिकॉर्ड होल्डर जैस्विन एल्ड्रीन, सरुण पैसिंग और एस लोकेश अपनी चुनौती रखेंगे। ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबूबकर, प्रवीण चित्रवले और सेलवा प्रभु अपना दम झोंकेंगे। थ्रो स्पर्धाओं में शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप गिल अपनी बाजुओं का दम दिखाएंगे। हैमर थ्रो में दमनीत सिंह और आशीष जाखड़ की ताकत का जोर देखने को मिलेगा। जैवलिन थ्रो में रोहित यादव और सचिन यादव मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। डेकाथलान में तेजस्वी शंकर और जसबीर नायक के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। महिला एथलीटों में 400 मीटर दौड़ में ऐश्वर्या मिश्रा, विथिया रामराज, देवयानी बाजाला और रशदीप कौर शिरकत करेंगी। पूजा महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी। 1500 मीटर दौड़ में अन्य एथलीटों के साथ साथ पूजा और अंकिता ध्यानी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। 5000 मीटर दौड़ में सीमा, सोनम परमार और रवीना मुख्य धावक होंगी। 400 मीटर हर्डल में विथ्या रामराज और अनुआर के बीच तगड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। 3000 मीटर स्टीपल चेज में अंकिता ध्यानी पूरा दम लगाएंगी। 10000 मीटर की दौड़ में महिला वर्ग में मुनीता प्रजापति के प्रदर्शन पर सबकी नजर होगी। प्रियंका और रवीना भी इस स्पर्धा में शामिल होंगी। लॉन्ग जंप के महिला वर्ग में मुबासिना मोहम्मद, शालिनी सिंह और ईएनसी सोजन आकर्षण का केंद्र होंगी। महिला हाई जंप में अभिनया एस शेट्टी, रीत राठौर और ख्याति माथुर पर नजर होगी। पोल वॉल्ट में बारानिका एलंगवन की चुनौती दिखेगी। ट्रिपल जंप में निहारिका वशिष्ठ, पूर्वा सावंत और निमाशा डायमा के बीच कड़ा मुकाबला होगा। डिस्कस थ्रो में सीमा एंतिल और कृष्णा जयशंकर की बाजुओं का दम देखने को मिलेगा। जैवलिन थ्रो में अन्नू रानी तो होंगी ही, साथ ही करिश्मा सानिल भी पूरा ताकत लगाएंगी। 10 किलोमीटर की रेस वॉक में रवीना और प्रियंका गोस्वामी मुख्य आकर्षण होंगी। वहीं हेप्टाथलॉन में अन्य एथलीटों के साथ साथ अनामिका और पूजा के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कल से देश के शीर्ष एथलीटों का जमावड़ा झारखंड की राजधानी में देखने को मिलेगा, जिसमें कोई आगे निकलेगा तो कोई पीछे छूट जाएगा। अब बात कुआलालंपुर में चल रहे छठे सेपेक्टोक्रॉ वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय प्रदर्शन की। भारत की टीम रेगु ग्रुप बी के अपने दोनों मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। कल मेजबान मलेशिया के हाथों एक तरफा मुकाबले में 3-0 से हारने वाली भारतीय टीम आज म्यांमार के हाथों भी पराजित हो गई। भारत को इस मैच में 1-2 से शिकस्त मिली। आज खेले गए इस मैच में R1 मुकाबले में भारत 2-0 से पिछड़ गया। पहले सेट में भारत को 6-15 से हार मिली। दूसरे सेट में उसने संघर्ष किया, फिर भी 13-15 से मात खानी पड़ी। R2 में भारतीय टीम थोड़ी बेहतर नजर आई। इसके पहले सेट में संघर्ष के बाद भारतीय टीम को 11-5 से हार मिली। दूसरे सेट में स्कोर भारत के खिलाफ 9-15 का रहा। R3 में कांटे का मुकाबला देखने को मिला। पहला सेट भारत ने अपने नाम किया और 15-11 के स्कोर से जीत हासिल की। दूसरे सेट में म्यांमार ने पलटवार किया और स्कोर 8-15 का रहा, लेकिन तीसरे सेट में फिर भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया और यह सेट 15-12 से अपने नाम किया। हालांकि जीत भारत को अगले दौर में पहुंचाने के लिए काफी नहीं रही। इस तरह से रेगु ग्रुप से लगातार 2 हार के बाद भारतीय टीम की विदाई हो गई। अब कुछ तकनीकी जानकारी सेपेक्टोक्रॉ से। एक टीम इवेंट मैच में 3 रेगु मैच होते हैं। हर देश अपनी 3 अलग रेगु उतारता है। एक रेगु में 3 खिलाड़ी होते हैं, एक टेकोंग, एक फीडर, एक किलर या स्ट्राइकर। हर रेगु का मैच बेस्ट ऑफ 3 सेट में होता है। 15 पॉइंट का सेट 2 पॉइंट से जीतना जरूरी है। टीम मैच जीतने के लिए 3 में से 2 रेगु जीतने होते हैं। और दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि भारतीय रोविंग दल की एशियाई खेलों को लेकर तैयारियों और उम्मीदों को लेकर साई की विशेष प्रेस वार्ता दिल्ली में आयोजित की गई और इसमें क्या कुछ

0: खास रहा ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी शाहिद आजमी।
1: आज बात होगी उस खेल की जहां शोर कम होता है लेकिन मेहनत और जुनून की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय रोइंग टीम की। शांत पानी पर तेजी से दौड़ती नावें, खिलाड़ियों की एक जैसी लय और हर स्ट्रोक के साथ पदक का सपना। भारतीय रोइंग अब एशिया में केवल भाग लेने वाली टीम नहीं बल्कि चुनौती देने वाली ताकत बन चुकी है। अब पूरी नजरें टिकी हैं 2026 एशियन गेम्स पर जो जापान के आइची नागोया में आयोजित होंगे। भारतीय टीम से इस बार सिर्फ पदक नहीं बल्कि गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा रही है। पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स में भारत की अनुभवी जोड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं फिटनेस, तालमेल और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के कारण भारत की संभावना पहले से कहीं बेहतर दिखाई दे रही है। हालांकि चुनौती आसान नहीं होगी। चीन, जापान और उज्बेकिस्तान अभी भी एशिया की सबसे मजबूत रोइंग ताकत मानी जाती है लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास अब बदल चुका है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोइंग के दो दिग्गज खिलाड़ियों बलराज पवार और बाबूलाल यादव ने भारत के वाटर स्पोर्ट्स और एशियन गेम्स में रोइंग खेल से संभावना पर खुलकर बात की। सबसे पहले सुनते हैं बलराज पवार को।
2: इस बार सर हमारा थर्ड डे, सर फोर्थ भी आएगा, फिफ्थ भी आएगा सर। हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बार और बहुत ही रूट लेवल से लेके हम एडवांस तरीके से अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं।
1: इसी सवाल के जवाब में बाबूलाल यादव कहते हैं,
3: जी सर हमें जो पिछली बार 2022 एशियन गेम में हमने 5 मेडल जीता था, अब की बार हम उस मेडल का अच्छा कलर लेके आए।
1: सिंगल स्कल्स में बलराज पवार पिछले एशियन गेम्स में मेडल के पास पहुंचकर चूक गए थे और चौथा स्थान हासिल हुआ था। क्या इस बार पदक का रंग बदलेगा? यही सवाल जब हमने बलराज से किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: जी सर पिछली बार मैं फोर्थ रेस पर आ गया था और लगभग जिस हिसाब से मैं ड्रॉइंग स्टार्ट किया मेरे को लगभग 10 साल ही थे लेकिन मेरी टाइमिंग भी मेरी अच्छी थी और मेरा जो भी ओवरऑल जो एशियन गेम में फोर्थ पोजिशन आई थी उससे मैं रह गया लेकिन इस बार हम अपने पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं गोल्ड मेडल लेके आएंगे।
1: एक खिलाड़ी को निखारने के लिए कोच की बड़ी भूमिका होती है। जब कोच और कोचिंग स्टाफ के बारे में बलराज पवार से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं।
2: जी सर हमारे कोचिंग स्टाफ के बारे में सबसे जो हमें प्लस पॉइंट है हमारे पास ये फॉर्म कोच है जो एंथनी पैटरसन है, उनके पास लगभग अपना 30 से प्लस साल का एक्सपीरियंस है जो हमारे बहुत काम आएगा और हम अभी भी देख रहे हैं जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इम्प्रूवमेंट दिखता है हर एक सेशन में हर एक उसमें और उन्हीं की गाइडलाइंस पे हमारे जो सीनियर कोच है इधर हमारे आर्मी के और साई के कोच है वो ही काम कर रहे हैं, हमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिल रही है कोच के तौर पर। इसमें भी एक सर को हम मिस करेंगे लेकिन जो भी हमारे पास उपलब्ध है कोच हम उनसे ट्रेनिंग कर रहे हैं और फ्रंट कोच है हमारे वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं।
1: बलराज पवार से हमने ये भी पूछा, ईमानदारी से बताइए इस बार कितने पदक भारत को रोइंग में मिलने वाले हैं?
2: एशियन गेम्स में 7 इवेंट पार्टिसिपेट करेंगे बॉयज की टीम से तो हमें अपने पूरी उम्मीद है कि हम हर एक इवेंट में अपना मेडल लेके आएंगे और जो हमारे पिछली बार मेडल रह गए थे उनका कलर हम चेंज करेंगे इस बार, हमें इसकी पूरी उम्मीद है।
1: इसी सवाल के जवाब को आगे बढ़ाते हुए बाबूलाल कहते हैं,
3: जी सर जो पिछली एशियन गेम में जो हमारे 3 ब्रॉन्ज आए थे 2 सिल्वर आए थे हम उनको इम्प्रूव करेंगे हम और उनका कलर अच्छा लेके आएंगे।
1: हांगजू 2022 यानी पिछले एशियन गेम्स में डबल स्कल्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरविंद सिंह से हमने खास बातचीत की और उनसे जानना चाहा जो पिछली बार चूक हुई थी उसकी भरपाई इस बार हो जाएगी, कितने पदक भारत जीतेगा और कहां वर्तमान में भारत की रोइंग खड़ी है, तमाम तरह के सवाल किए, आइए सुनते हैं अरविंद सिंह को।
4: हम 2022 से कंपेयर करें अपने 2026 जो एशियन गेम्स की हम तैयारी कर रहे हैं तो सर लगता है बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। अगर हम उस टाइमिंग की बात करें 2022 में जो हमारे टाइम आ रहे थे और 2026 में जो टाइम आ रहे हैं तो लगभग बहुत मतलब फर्क है 3 से 4 सेकंड का फर्क है तो 3 से 4 सेकंड में तो बहुत सारे मेडल चेंज हो जाते हैं। पूरी उम्मीद है कि अच्छा मेडल आएंगे आपके, कम से कम हमारे 3 गोल्ड आएंगे सर।
1: 3 गोल्ड की बात कर रहे हैं, हालांकि पदक पिछली बार बढ़े लेकिन गोल्ड नहीं आए थे, इस बार इतना भरोसा कैसे अरविंद जी?
4: सर हम ट्रेनिंग जो कर रहे हैं मतलब ट्रेनिंग पहले से मतलब बहुत हार्ड ट्रेनिंग चल रही है और जो हमारी जो टाइमिंग है हम उनसे बहुत मोटिवेट है सर तो हमें पूरी उम्मीद है टाइमिंग देख के कि हाँ पहले से क्लोज टाइम आ रहे हैं तो हो सकता है 3 गोल्ड सर पक्का आएंगे।
1: ट्रेनिंग कैसी चल रही है, कोच आपकी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए।
4: सर जो शेड्यूल है हमारा ट्रेनिंग तो ज्यादा हम कर रहे हैं सर, पिछली बार से हम रोइंग में कम से कम अगर हमारी 2022 से कंपेयर करें तो 18 से 20

0: किलोमीटर होती थी पर डे की, और इस टाइम हम रोइंग कम से कम 35 से 40 किलोमीटर रोइंग कर रहे हैं पर डे। हाँ तो सर हमें पूरी उम्मीद है टाइमिंग देख के पिछले और अब के अच्छे मेडल आएंगे।
1: अगर आपके इंडिविजुअल की बात करूँ जिस तरह से पिछली बार प्रदर्शन था, हालांकि अगर हम सिंगल्स की बात करें तो सिंगल्स में कुछ बहुत अच्छा नहीं निकल गया है, हमारा जो टीम इवेंट में अच्छा था, इस बार सिंगल्स में क्या देख रहे हैं?
0: सिंगल्स में सर पिछली बार हमारी फोर्थ पोजीशन थी सिंगल में, अब के शायद मैं खेल रहा हूँ अभी तक तो, और मुझे उम्मीद है कम से कम मैं सिल्वर मेडल तक पहुँचू सर। हाँ पूरी उम्मीद है सर, टाइमिंग बहुत अच्छे आ रहे हैं पहले से कम्पेयर करें।
1: भारत में रोइंग वर्तमान सर क्या है, कैसा भारत में इसका भविष्य कैसा लग रहा है, कितने प्लेयर निकल के आ रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं?
0: थोड़ा सा मतलब फर्क तो है हमारे गेम में और जो गेम है, थोड़ा सा पॉपुलर नहीं है हमारा गेम इतना, पर अगर पिछले दो या तीन साल से देखे तो मतलब जैसे एशियन गेम्स में हम खेल गए थे अभी, फिर ओलंपिक में भी बहुत अच्छा किया था, टोक्यो ओलंपिक में भी हमने, तो थोड़ा पॉपुलर हो रहा हमारा गेम, तो लोग बागों को जैसे सिविल में पता चल रहा है कि गेम अच्छी चीज है, गेम क्या है उसके विषय में लोगों को पता चल रहा है और खिलाड़ी निकल रहे धीरे धीरे सर।
1: एशियन गेम्स 2026 में ओवरऑल कितने पदक भारत जीतेगा?
0: सर हमारे 7 इवेंट जा रहे हैं सर, 7 में से 3 गोल्ड और 4 सिल्वर दिखाई दे रहे हैं सर मुझे 100%।
1: जैसा कि बलराज पवार ने अपनी बातचीत में बताया कि कोच इस्माइल बेग को वो मिस करेंगे, हालांकि इस्माइल बेग इस वक्त टीम के साथ नहीं है, लेकिन उनसे हमने खास बातचीत की और जानना चाहा भारत का रोइंग स्पोर्ट्स इस वक्त कहां पर है, किस स्थिति में है और एशियन गेम्स को लेकर क्या होप्स हैं। मिलते हैं द्रोणाचार्य अवार्डी कोच इस्माइल बेग से।
2: कई साल से रोइंग काफी बेहतर से प्रदर्शन करते आ रहा है, एशियन गेम में बेहतर भी किया, पिछले एशियन गेम में भी हमने 5 मेडल जीते थे और पारा में भी एक सिल्वर मेडल जीता था, ओलंपिक में भी कंटिन्यू, सिडनी ओलंपिक से लेकर कंटिन्यू हमने क्वालिफाई भी करते आ रहे हैं। इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो आने वाले वर्तमान में भी हमारा रोइंग का काफी अच्छा प्रदर्शन होने का बहुत संभावना है।
1: जी आपने तो शुरू से देखा भारत के स्पोर्ट्स को देखा, खासतौर से रोइंग को देखा है, कल बलराज पवार से मेरी बातचीत हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई की थी, तो उन्होंने कहा था हम इस्माइल बेग को मिस करेंगे, आपने क्या गुण सिखाए कि आज भी खिलाड़ी आपको उतना ही मिस करते उतना ही याद करते हैं?
2: पता नहीं कौन सी काबिलियत है हमारे पास है जो हमने भी प्यार मोहब्बत के साथ काम करते हैं इसके साथ है। वो भी मिस करते हैं, हम भी मिस तो करते हैं और आने वाले एशियन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
1: जैसा कि बलराज पवार कह रहे हैं और अरविंद भी कह रहे हैं इस बार मेडल की संख्या बढ़ेगी, आपको भी उम्मीद है?
2: दुआ तो कर रहे हैं, बनना चाहिए।
1: इस्माइल बेग दुआ कर रहे हैं कि भारत एशियन गेम्स में ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर आए। अब आपको सुनवाते हैं उस खिलाड़ी को जिससे श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में बात की थी, उल्लेख किया था। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ रश्मिता साहू की, भारत की उभरती हुई रोइंग खिलाड़ी। उनसे हमने खास बातचीत की और जानना चाहा प्रधानमंत्री जी ने जब आपसे बातचीत की थी उसके बाद से आपके खेल में कितना बदलाव आया, आपका हौसला कितना बढ़ा है और एशियन गेम्स में क्या होप्स कर रही हैं। सुनते हैं रश्मिता को।
3: बहुत अच्छा लगा था कि मैं करोड़ों लोग के बीच में मेरे बात किया और बहुत खुशी लगा था साउथ मूवमेंट मेरे लिए, मेरे गेम के लिए, मेरे गांव के लिए, परिवार के लिए।
1: तो जब प्रधानमंत्री जी ने आपसे फोन पे बात की उसके बाद आपके खेल में कितना बदलाव आया, आपका हौसला कितना बढ़ा, आपका उत्साह कितना बढ़ा?
3: बहुत ही ज्यादा मेरे को मोटिवेट मिला सर, मैं 10 गेम कर रहा था तो मैं इंटरनेशनल नहीं खेला था और मैंने उसके बाद इतना प्रैक्टिस और भी मेहनत जितना मेरा कर रही थी और भी ज्यादा मेहनत करके मेरे को इंडिया कैंप में सिलेक्शन मिल गया एशियन गेम्स के लिए। उसके बाद मैंने अभी 18 इंटरनेशनल कंपटीशन खेल लिया, प्रेसिडेंट कप खेला था इंडिया में हुआ था तेहरी में, उसके बाद एशियन जापान में हुआ था उसमें मैंने 500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल आया, सेकंड कॉम्पिटिशन था वो। उसके बाद एशियन चैंपियंस में गया था उसमें भी 10th पोजिशन में आया है। मैं यहाँ कर दू अभी इंडिया कैंप में फिलहाल हूँ, एशियन गेम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, फाइनल लिस्ट आया नहीं है, आगे मैं चल के इंडिया को मेडल दूँ मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरे साथ KSBC हाई परफॉर्मेंस एकेडमी और IKCA और साई जो काम कर रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको।
1: जैसे सिलेक्शन होता है एशियन गेम्स में आपको जाना होता है तो क्या आपको लग रहा है वहाँ पोडियम फिनिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा रोइंग में भारत को महिलाओं की श्रेणी में कोई पदक नहीं मिला था।
3: अभी हमको इंडिया को आगे जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी एशियन चैंपियनशिप में भी देख आया वो हम बहुत पीछे में, हमको और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तभी जाके मेडल पोडियम में हम फिनिश कर सकते हैं। हमारे पीछे तो साई से लेके साडेनी से लेके सबको ही सपोर्ट मिल रहा है।
1: टीम का लक्ष्य साफ है, अब सिर्फ फाइनल तक पहुंचना नहीं बल्कि पोडियम के सबसे ऊंचे स्थान पर तिरंगा लहराना है। अगर हम पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारतीय रोइंग टीम ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रगति दिखाई है। सबसे पहले बात 2022 एशियन गेम्स की, चीन के हांगझो में भारत ने रोइंग में शानदार 5 पदक जीते थे जिनमें 2 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल थे। अरविंद सिंह और अर्जुन लाल जाट की जोड़ी ने पुरुष लाइटवेट

0: डबल स्कल्स में रजत पदक जीतकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं पुरुषों की 8 सदस्यीय टीम ने भी बेहतर तालमेल दिखाते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। बाबूलाल यादव और लेखराम ने कांस्य पदक जीतकर भारत की सफलता को और मजबूत बनाया। लेकिन भारतीय रोइंग के सफर में 2018 एशियन गेम्स का अध्याय भी बेहद खास रहा। इंडोनेशिया के जकार्ता पालमबाग में भारतीय रोवर्स ने शानदार वापसी करते हुए 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते थे। 2018 से 2022 तक का सफर यह बताता है कि भारतीय रोइंग लगातार आगे बढ़ रही है। पहले 1-2 पदक, फिर कई फाइनल, अब गोल्ड की उम्मीद। भारतीय रोइंग टीम की नाव अब नई दिशा में आगे बढ़ चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि 2026 में क्या यह टीम एशिया के पानी पर इतिहास की सबसे बड़ी लहर पैदा कर पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
1: थाईलैंड ओपन में किसी की जीत का जश्न, किसी की हार का गम अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कुछ ही घंटे बाद दुनिया के चुनिंदा बैडमिंटन दिग्गज अपनी कड़ी मेहनत से सफलता की नई कहानी लिखने मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट में कोर्ट पर उतर गए। इनमें कई भारतीय महिला और पुरुष खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ का सफर पहले ही दौर में समाप्त हो गया, कुछ अगले दौर में पहुंचे। इसी कड़ी में टूर्नामेंट के तीसरे दिन के मैचों का परिणाम भारत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में अश्मिता चालिया ने सफलता हासिल की। इस उभरती भारतीय खिलाड़ी ने मेजबान देश की गो जिन वेई को आसानी से 2 गेम में शिकस्त दी। अश्मिता ने 21-13, 21-16 से जीत दर्ज की और अब टूर्नामेंट में भारत की एकमात्र उम्मीद है। इसी वर्ग में एक और युवा खिलाड़ी मालविका बंसोट को हार का सामना करना पड़ा। कड़े मुकाबले में मालविका को 7वीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क की लाइन होसबर्ग जार्सफेल्ट ने 21-16, 8-21, 15-21 से शिकस्त दी। हम आपको बता दें कि डेनिस खिलाड़ी ने पहले दौर में भी एक भारतीय खिलाड़ी अनमोल खरब को पराजित किया था। देविका सिहाग भी राउंड ऑफ 16 में चीन की शीर्ष रैंकिंग वाली चेन यू फेई से 16-21, 13-21 से मात खा बैठी। उन्होंने कल पहले दौर में मैराथन मैच में दक्षिण कोरिया की पार्क गायुन को 19-21, 21-18, 21-19 से मात दी थी। आज देविका के ऊपर उस लंबे चले मैच की थकान का असर साफ दिख रहा था। हालांकि चीन की टॉप सीडेड खिलाड़ी ने अपने अनुभव का भी पूरा फायदा उठाया। उधर पुरुष डबल्स में हरिहरन, अमसा करुणन और एमआर अर्जुन को चीन की जोड़ी लिन जियांग यी और हु के युआन ने 14-21, 15-21 से पराजित किया। मिक्स डबल्स में कानापुरम सात्विक रेड्डी और राधिका शर्मा की जोड़ी राउंड ऑफ 16 में दक्षिण कोरिया की जोड़ी से 12-21, 25-27 से पराजित हो गई। हम आपको बता दें कि पुरुष सिंगल्स, पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स डबल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो चुकी है। अब क्वार्टर फाइनल में कल अश्मिता चालिया का मुकाबला उसी लाइन होसबर्ग जार्सफेल्ट से होगा जिन्होंने भारत की 2 खिलाड़ियों अनमोल खरब और देविका सिहाग को पहले ही शिकस्त दी है। और अब बात WTT कंटेंडर 2026 लाओस में हो रहा है ये टूर्नामेंट, और वहां पर भारत के लिए आज अच्छी खबर यह है कि मिक्स्ड डबल्स के जो मुकाबले हुए हैं उसमें 3 जोड़ियां भारत की क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मानुषा और दिया चिताले की जोड़ी ने इटली और नाइजीरिया की जोड़ी को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मानव ठक्कर और मनिका बत्रा ने नाइजीरियाई जोड़ी को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ साथ हरमीत देसाई और शश्विनी घोरपड़े भी नाइजीरियाई जोड़ी को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। हालांकि हम अगर बात करते हैं मुदित दानी और रहिका मुखर्जी की तो वो प्री क्वार्टर फाइनल में चिली और नीदरलैंड की जोड़ी से 1-3 से हार गए।
2: अब बात करते हैं चेस की। रोमानिया में चल रहे सुपर चेस क्लासिक टूर्नामेंट अब अपने निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। छठे दौर के बाद भारत के प्रज्ञानंदा रमेश बाबू ने रोमानिया के बॉगडन डेनियल डियाक से ड्रॉ खेला छठे दौर के बाद। वहीं गत विजेता आर प्रज्ञानंदा 3.5 अंकों के साथ दूसरे से चौथे स्थान पर बने हुए हैं। अचंभे की बात यह रही कि फीडे कैंडिडेट्स 2026 जीतने वाले उज़्बेकिस्तान के जावोखेर सिंदरोव, जो डी गुकेश के सामने वर्ल्ड चैंपियन बनने की दावेदारी पेश करेंगे, अब तक इस प्रतियोगिता में 6 में से एक भी बाजी नहीं जीत पाए हैं। सातवें दौर में आर प्रज्ञानंदा का मुकाबला यूएसए के फेबियानो करुआना से होगा। अब बात करते हैं हॉकी की। भोपाल के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर 18 पुरुष हॉकी टीमों के बीच खेली गई 4 मैचों की द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज का कल समापन हो गया। सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। इस अंतिम ड्रॉ के साथ सीरीज भी 1-1 से ड्रॉ रही।
1: और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर

0: शहनवाज खान के साथ साथ मुझे यानी धर्मेंद्र और
1: प्रतीक आनंद
0: को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में

0: आदौ मुख्य वार्ताः। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सर्वकारेण कस्यापि सौन्दर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौन्दर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषेधितम्। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन इबोला संक्रमणेन प्रभावित देशेभ्यः आगच्छद्भ्यः अथवा पारगमनं कुर्वद्भ्यः यात्रिणां कृते कश्चन विशेष स्वास्थ्य परामर्शः प्रसारितः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमन्त्रिणः सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वयुते मन्त्रिमण्डले द्वात्रिंशत् जनाः सम्मिलिताः, येषु चतस्रः महिला मन्त्रिणः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य सायं अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स तथा चेन्नई सुपर किंग्स दलयोः मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा च तस्य इटली समकक्षीया जॉर्जिया मेलोनी इत्येतौ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर इत्यत्र सहकार्याय स्वकीय प्रतिबद्धतां ज्ञापितवन्तौ। अस्याः परियोजनायाः भूरिशः प्रशंसां कुर्वन्तौ उभौ नेतारौ ऐषमः 26,000+ अस्य उपक्रमस्य प्रगतये आईमेक मन्त्रिस्तरीय गोष्ठ्याः प्रथमायोजने दृढपदक्षेपं स्वीकर्तुं प्रोत्साहितवन्तौ। रोमनगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह आयोजिते संयुक्त संवाददातृ सम्मेलने इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी आईमेक इत्येतं यूरोप मध्य पूर्व भारत देशान् संयोजयितुं कश्चन महान् आर्थिक सम्पर्क मार्गः वर्तते इति वर्णितवती। तया प्रोक्तं यदस्मिन् व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखला स्थैर्यं दृढीकर्तुं महत् सामर्थ्यं वर्तते। मेलोनी इत्येषा अवोचत् यत् क्षेत्रीयान्तर सम्पर्कस्य सुदृढीकरणार्थं सर्वोपरि प्राथमिकता अस्ति तथा च उभावपि देशौ अस्य वीथिमार्गस्य विकासं दृढतया समर्थयतः। उभावपि प्रधानमन्त्रिणौ पुनरपि प्रोक्तवन्तौ यत् नवोन्मेषः विज्ञानं प्रौद्योगिकी च भारत इटली देशयोः मूलाधाराः सन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् इटली देशः स्वस्य विशिष्टाभिकल्पनायै सूक्ष्मता कौशलाय च विश्वविश्रुतोऽस्ति। अपरत्र भारतस्य ख्यातिः विशालतायै प्रतिभायै सुलभ नवोन्मेषाय च वर्तते।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: सर्वकारेण प्रोक्तं यत् कस्यापि सौन्दर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौन्दर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषिद्धो वर्तते। केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् प्रसाधन सामग्र्यः केवलं मानव शरीरे घर्षणाय सेचनाय प्रोक्षणाय अथवा विकिरणाय च उद्दिष्टाः सन्ति। संघटनेन प्रोक्तं यत् विक्रयण वितरणार्थं प्रसाधनानां निर्माणं तथा च आयात प्रक्रिया प्रसाधन नियम 20/20 इत्यस्य प्रावधानैः नियन्त्रिता भवति। CDSCO इत्यनेन दृढीकृतं यत् प्रसाधनोत्पन्नेषु प्रतिबन्धित तत्त्वानाम् उपयोगः नामपत्रे भ्रामकोक्तिः संक्रमणोपचारार्थं सौन्दर्य प्रसाधनानां प्रयोगः तथा च सूचिका भेषज माध्यमेन एतेषाम् अनुप्रयोगः औषध तथा प्रसाधन अधिनियमन नियमानां गंभीरं उल्लंघनं मन्यते यस्य कृते दण्डविधानं निश्चितं वर्तते। संस्कृत वार्तायाः

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारे
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: अतुल भाई
1: जी पायल बहन,
0: भाई, हर बृहस्पतिवार की तरह आज भी हम इस बृहस्पतिवार अपने सभी श्रोताओं के सभी बहन भाइयों के लिए लेकर आए हैं अपना ये राम संसार कार्यक्रम। और आज का कार्यक्रम सभी को पता है कि खास होता है, क्योंकि आज होता है SMS पर आधारित हमारा ये लोक संगीत का प्यारा सा कार्यक्रम।
1: बिल्कुल। और देखिए भाई, छोटी छोटी चर्चाएं भी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से लेकर के आते हैं। ऐसी एक चर्चा है, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक दिवस।
0: बिल्कुल। और अतुल भाई, भारत में हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एक तरह से मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर रखना, शांति और मानवता का संदेश देना तथा देश के नागरिकों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा
1: बढ़ावा
0: देना।
1: देना,
0: और देखिए,
1: बिल्कुल। देखिए, यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में भी जो है ये मनाया
0: मनाया
1: जाता है।
0: जाता है। देखिए, सद्भाव की अगर हमने बात करी तो सद्भावना दिवस के रूप में भी कहीं ना कहीं इसको मनाया जाता है। इसकी एक ऐतिहासिक अपनी पृष्ठभूमि है। इस दिवस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में इसे मनाते हैं। तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में भी एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी।
1: जी, पहली
0: तो पहली बार इसे कब मनाया गया था?
1: बार देखिए इसे मनाया गया था राजीव गांधी जी के बलिदान को याद करते हुए 21 मई 1992 को।
0: बिल्कुल।
1: तो ये तो रही जानकारी राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक दिवस के बारे में। और देखिए, जैसा कि आज का हमारा फरमाइशी कार्यक्रम है और आज के जो हमारे पहले कलाकार हैं वो हैं गजेंद्र, इनके लिए भी हमारे पास में भाई काफ़ी SMS आ गए हैं। चर्चाएं हम और भी करेंगे अपने सभी बहन भाइयों से। तो गजेंद्र के लिए हमारे पास में SMS आ गए हैं और ये SMS हमारे पास में आया है भाई खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़ से भेजने वाले हैं विजेंद्र सिंह लखेरा और उनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं नीतीश कुमार देवांगन और उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं देवशंकर तामूरिया और उनका पूरा परिवार। गांव चोहलदा बागपत से हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं संजय ढींगिया और उनका पूरा परिवार। पटेल नगर मैलोट से हमारे पास में SMS आया है, भेजने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया और उनका पूरा परिवार। ये SMS हमें मिला है गांधीनगर गुजरात से, भेजने वाले हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। एकता कॉलोनी रोहतक से भी हमारे पास में SMS आया है, भेजने वाले हैं सीताराम कांगड़ा और इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमारे पास में आया है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं रौशनलाल देवांगन उनका पूरा परिवार। और कोटवा नारायणपुर बावापट्टी पलिया से भी हमारे पास में फरमाइश आई, भेजने वाले हैं ओम प्रकाश राय और इनका पूरा परिवार। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से फरमाइश भेज रहे हैं प्रतीक राय और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है दादा बाबू रोड ग्रीडी झारखंड से, भेजने वाले हैं मोहम्मद यासीन अंजान और उनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से भेजने वाले हैं रमेश कुमार कंबोज और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास आई है महाराजपुर करकोरा पोस्ट पुठरी कला जिला बुलंदशहर तहसील डिबई दानपुर थाना अहमदगढ़ से और भेजने वाले हैं जितेंद्र सिंह सोलंकी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव चौधरीवास से और भेजने वाले भाई हैं राधा स्वामी जी और इनके परिवार के सभी सदस्य। मेरठ कैंट से भी हमें फरमाइश भेजी है दिग्दर्शन और कविता गौड़, इन दोनों ने ही हमें ये फरमाइश भेजी है। और ये फरमाइश हमारे पास आई है ढाणा नरसान भिवानी से, भेजने वाले भाई हैं जगदीश चंडालिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमारे पास आई है सारिमपुर बक्सर से और भेजने वाले हैं राजेश डी अंसारी और समस्त परिवार के सदस्य। डुमराव बिहार से हमें फरमाइश भेजी है W अंसारी और परिवार के सभी सदस्यों ने। और ये फरमाइश बक्सर बिहार से ही हमें भेजी है, भेजने वाले भाई हैं सरफुद्दीन अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: ये फरमाइश हमारे पास में ये छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से, भेजने वाले हैं कमलेश कुमार साहू और इनका पूरा परिवार। भटिंडा रोड मंडी डब वाली से फरमाइश भेज रहे हैं।

हैं राजेंद्र नारग और इनका पूरा परिवार। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई संदीप मक्कर की, और जो भेज रहे हैं हमें भाई साहिनी पिंगा वाला चौक गोरा या जलंधर पंजाब से हमें फरमाइश भेज रहे हैं। और ये फरमाइश आई है चंडीगढ़ से, भेजने वाले हैं सतीश अनेजा और इनका पूरा परिवार। गांव फरासी जिला हिसार से फरमाइश भेज रहे हैं राजकुमार डूडी और इनका पूरा परिवार। MLB रोड ग्वालियर से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश खुराना पप्पी और इनका पूरा परिवार। और गजेंद्र सिंह को ही सुनना चाहा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा और इनके पूरे परिवार ने। धनौरी तेलीवाला से हमें फरमाइश भेज रहे हैं निसार सलमानी और उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, भेजने वाले हैं रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है बाग बहरा भदरसी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं पन्नालाल सेन और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर गजेंद्र सिंह की आवाज़ में ये राग।

0: बाबा जी, रात आज की काट कुटिया तेरी मैं बहुत ही बढ़िया रागनी सुनवाई गजेंद्र सिंह से हमने अपने सभी श्रोताओं को, सभी बहन भाइयों को अतुल भाई।
1: जी
0: और भाई अगले जो हमारे कलाकार हैं उनके लिए भी हमारे पास SMS आ चुके हैं। और अगली जो हमारी कलाकारा हैं वो हैं नीलम चौधरी।
1: बिल्कुल, और इनके लिए भी हमारे पास में SMS आ गया है। और ये SMS हमें मिला है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। भेजने वाले हैं राजू मिगलानी, उनका पूरा परिवार पदमपुर जिला जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। फरमाइश भेज रहे हैं मेहर अरोड़ा, इनका पूरा परिवार पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। फरमाइश भेज रहे हैं सुदर्शन साहा और इनका पूरा परिवार गांव नथाना पंजाब से। फरमाइश भेज रहे हैं हरजिंदर सिंह छिद्दा और इनका पूरा परिवार छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से। फरमाइश भेज रहे हैं राष्ट्रपाल गजबीये और उनका पूरा परिवार कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से। फरमाइश भेज रहे हैं रवि कुमार राहुल और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा और इनका पूरा परिवार।
0: क्वाथ बिहार से हमें फरमाइश भेजी है अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू और इनके पूरे परिवार ने। और ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव हांडी खेड़ा से। भेजने वाले भाई हैं राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। ये फरमाइश हमें भेजी है जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले भाई हैं श्रवण कुमार प्रजापति और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमारे पास आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। भेजने वाले भाई हैं अभिजीत गवणकर राही और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव कला जिला अम्बाला हरियाणा से भी फरमाइश भेजी है राजेंद्र कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है गोविंदगढ़ माझी वाला से, राजस्थान से। और ये भेजने वाले भाई हैं राजू टुटेजा खुशदिल और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है गाँव डांडी तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर से। भेजने वाले भाई हैं पुरुषोत्तम कुमार। ये फरमाइश हमारे पास आई है जेल रोड बक्सर से। भेजने वाले हैं राज SD अंसारी और परिवार के सभी सदस्य। बिहार स्टेट डुमराव से फरमाइश भेजी है राजवली अंसारी और परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: ये फरमाइश हमारे पास में आई है खैल बाजार पानीपत से। भेजने वाले हैं नरेश मल्होत्रा नीटू और इनका पूरा परिवार। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से फरमाइश भेज रहे हैं पीयूष सिक्का और इनका पूरा परिवार।

0: पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से फरमाइश भेज रहे हैं अनिल मोहन और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है जटवाड़ा गाजियाबाद से, भेजने वाले हैं शीशपाल अकेला और इनका पूरा परिवार। जलालाबाद वेस्ट से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश गगनेजा और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, फरमाइश भेज रहे हैं PS नहावकर और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है मलकापुर से, भेजने वाले हैं नारायण इंगले और इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला है भाई ग्राम पंचायत बढ़ेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं बलकरण वर्मा और इनका पूरा परिवार। वनिंग खेड़ा पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं मिंटू टॉम्स और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई गांव माइचा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से, भेजने वाले हैं कंचित शर्मा सतपाल शर्मा मास्टर बनी सिंह मास्टर देवेंद्र सिंह सर्वेश गिरी महाराज कुमारी तनु शिव कुमार शर्मा और पवन शर्मा की। हमें ये फरमाइश मिली जो सुनना चाहते हैं नीलम चौधरी की आवाज़ में ही रागनी। ये फरमाइश हमारे पास में आई है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से, भेजने वाले हैं राजेश सावले पाटिल और इनका पूरा परिवार।
1: ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, भेजने वाले भाई हैं सैयद मसरूर और इनके पूरे परिवार के सभी सदस्य। गांव कलाना तहसील भदरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भी फरमाइश भेजी है विक्रम कड़वासरा और परिवार के सभी सदस्यों ने। और ये फरमाइश हमारे पास भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से फरमाइश भेजी है विजेंद्र कुमार जयजान और परिवार के सभी सदस्यों ने।
0: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर नीलम चौधरी की आवाज़ में ये रागनी।

0: सुन नए नाथ मेरी बात, या चंद किरण जोगी के तने, तन मन धन से ऐसा वैसे नीचे न कमद लटका दी चढ़ जा क्यों वार लगा वैसे। चंद किरण के किस्से की और भाई बाजे भगत की रची हुई रचना, बहुत ही बढ़िया रागनी हमने इस किस्से से अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाई।
1: बिल्कुल, और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं उपेंद्र राणा। इनके लिए भी हमारे पास भाई SMS आ गए हैं, और ये SMS हमें मिला है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भेजने वाले हैं विजेंद्र विश्वकर्मा, इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं रामचरण विश्वकर्मा, इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई गाँव लहलौड़ा जिला बागपत से भेजने वाले हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से भेजने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी, और उनका पूरा परिवार। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनका पूरा परिवार। और पहले में ये SMS हमें मिला है जसपुर उत्तराखंड से, भेजने वाले हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी और इनका पूरा परिवार।
0: अतुल भाई ये फरमाइश हमारे पास आई है सूरतगढ़ राजस्थान से, भेजने वाले भाई हैं भूपेंद्र मिशन और इनके परिवार के सभी सदस्य। सादूल शहर राजस्थान से भी हमें फरमाइश भेजी है राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। ये फरमाइश हमारे पास कलानौर हरियाणा से आई है और भेजने वाले भाई हैं नरेंद्र शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश आई है खिलेश कुमार साहू और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। ये फरमाइश हमें भेजी है हनुमानगढ़ से और भेजने वाले भाई हैं सुल्तान सिंह तरार और परिवार के सभी सदस्य। बहरवाला खुर्द सिरसा से हमें फरमाइश भेजी है बलवंत जाखड़ और परिवार के सभी सदस्यों ने। दादरी गेट भिवानी से भी हमें फरमाइश भेजी है कृष्ण मेहरा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: अनारकली बाजार जगराव से फरमाइश भेज रहे हैं सुनील पाठक और उनका पूरा परिवार। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं रमेश चंद्र चौहान का पूरा परिवार। दतरंगी से फरमाइश भेज रहे हैं भागवत वर्मा इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमें भेजी है भाई जावेद अंसारी उनके पूरे परिवार ने। ये फरमाइश आई है भाई महिपाल सिंह शौरान की गांव बड़दू चैना जिला भिवानी हरियाणा से। और ये फरमाइश आई है हमारे पास में भाई रावर करनाल से भेजने वाले हैं ज्ञानभूषण शर्मा उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है हमारे पास में राजकोट गुजरात से भेजने वाले हैं रश्मि झरना उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है नूर महल सीतामढ़ी बिहार से भेजने वाले मुर्शद जहानाज और उनका पूरा परिवार। तो सुनवाते सभी की फरमाइश पर उपेंद्र राणा की आवाज़ में ये रागनी।

0: मुगल मेरा भर भर मारे ताना, आज मन मुश्किल मुंह दिखलाना। ओ
1: पायल बहन, अभी हमारे भाई सुन रहे थे उपेंद्र राणा की आवाज में ये
2: रागनी, और ये किस्सा था किरणमयी और पृथ्वी सिंह का। और भाई बहुत ही बढ़िया रागनी हमने अपने सभी श्रोताओं को सुनवाई, और इसी के साथ ही आज का हमारा ये ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम राम।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।

0: भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुआन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं

0: सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो पायल बहन, हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के। और भाई, आज हम अपने कार्यक्रम में लेकर के आए हैं अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी, धान की उन्नत किस्में और उनका नर्सरी प्रबंधन।
1: बिल्कुल। और देखिए, इस जो ये बातचीत है, इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर आयुषी पालीवाल, जो कि शैक्षिक वैज्ञानिक हैं पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल।
0: बिल्कुल, तो पायल बहन पहले लेते हैं ये थोड़ी सी जानकारी।
2: नमस्कार। किसी भी फसल के उत्पादन में उसके उन्नत बीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है, और आज हम बात करेंगे बासमती धान की उन्नत किस्में और नर्सरी प्रबंधन की, और इस पर विस्तार से जानकारी लेते हैं डॉक्टर आयुषी पालीवाल से, जो कि सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर हैं। डॉक्टर आयुषी पालीवाल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो आज हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि धान की कौन कौन सी उन्नत किस्में पूसा द्वारा निकाली गई हैं, और उसमें से विशेष तौर पे आज आप बासमती धान की बात करेंगी, और उसका जो नर्सरी प्रबंधन भी कैसे किया जाए उसके बारे में भी बताइए।
1: आज मैं कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो गत वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई है।
2: जी
1: जो 2014 से 2023 तक जो भी किस्में विकसित की गई है, जो न केवल सिर्फ भारत देश में बल्कि विदेश में भी बहुत ही अपना दबदबा जमा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ पूसा 1121 की। किसान साथियों, पूसा 1121 हमारी राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पंजाब के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है, जिसकी पैदावार 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है और जो 140 दिन में परिपक्व होकर तैयार हो जाती है। इसकी विशेषता ये है कि इसके लंबे सुडोल दाने, पकने के उपरांत 4 गुना आयतन विस्तार एवं 20 से 25 मिलीमीटर तक लंबाई इस दानों की होती है। किसान भाइयों, ये विदेश में भी काफी कमाई कर रही है पूसा 1121।
2: जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि ये विदेश में भी ज्यादा कमाई कर रहे हैं, यानी जो विदेशी मुद्रा है उसको भी ला रहे हैं,
1: जी
2: तो
1: जी
2: इसकी क्या खूबी है, क्या इसमें कोई खुशबू भी है?
1: मैंने जैसा कि बताया, इसकी बहुत ही अहम विशेषता ये है कि पकने के उपरांत 4 गुना आयतन विस्तार करती है। मतलब कि ये कि जब भी विदेशी मार्केट्स में ये बिकने जाती है, तो एक तो होता है हमारा पारंपरिक धान जिसके दाने छोटे होते हैं, इसके दाने पकने के उपरांत 4 गुना विस्तार बढ़ा देते
2: यानी
1: हैं।
2: लंबे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, जो देखने में आज हमारे ग्राहकों को कैसे धान पसंद है, कैसे चावल पसंद है, जो लंबे पककर तैयार हो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, इसीलिए ये विदेश में बहुत कमाई कर रही है।
2: इसके अलावा और कौन कौन सी किस्में हैं?
1: तो दूसरी किस्म पर मैं आती हूँ, पूसा बासमती 1509, जो पश्चिमी यूपी और दिल्ली के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जिसकी पैदावार किसान भाइयों 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक जाती है और जो मात्र 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जो पूसा 1121 से भी कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी विशेषता ये है कि ये अर्ध बोनी होती है, अधिक लंबे एवं सुडोल दाने। किसान भाइयों, इसका एक और विकल्प है पूसा बासमती 1609, जो कि यूपी, दिल्ली, पंजाब के लिए उपयुक्त है। इसकी पैदावार सिर्फ 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो भी 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें एक विशेष गुण है, किसान भाइयों ध्यान दें, ये ब्लास्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता लेकर किस्म विकसित की गई है। जो मैंने 1509 बताई पूसा बासमती, उसमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, लेकिन उसकी पैदावार ज्यादा है पूसा बासमती 1609 से। अब बात करती हूँ पूसा बासमती 1592, जो कि पूसा सुगंध 5 की उन्नत किस्म है। किसान भाइयों, ये बैक्टीरियल ब्लाइट, जो कि मैंने आपको अभी एक बीमारी बताई जो धान में बहुत आती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर है, जो मात्र 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 47.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। किसान भाइयों, इसके अलावा एक पूसा बासमती 1692, जो अभी बहुत ज्यादा चलन में है, जो कि हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयुक्त किस्म है। इसकी पैदावार 52.4 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है और ये मात्र 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये भी अर्ध बोनी है, शीघ्र पकने वाली है और अत्यधिक उपज देने वाली किस्म है। ये लगाने से मात्र 115 दिनों में

0: आपके पास बहुत ही अच्छी पैदावार 52.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जैसा मैंने बताया वो पककर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और किस्में भी हैं जैसे सहभागी धान, जैसे कि अगर कहीं पे सूखा पड़ता है तो ये सूखे के प्रति बहुत ही सहनशील है। उसकी अगली है CSR 30, जो कि लवणीय भूमि के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह सिंचित नहीं होती, क्योंकि कुछ किस्में ऐसी भी बनाई गई है जो कि सूखे में सहनशील है, जैसे सहभागी धान। तो किसान साथियों, मैं यही सुझाव दूंगी कि अपने क्षेत्र की जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार आप किस्म चुनें, प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें, समय पर नर्सरी और रोपाई करें, संतुलित उर्वरक एवं जल प्रबंधन अपनाएं।
1: जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसी भी किस्में हैं जहाँ कम पानी बरसता है वहाँ के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन क्या धान में कोई ऐसी भी किस्म विकसित की गई है? क्योंकि धान की फसल ज़्यादातर जब तैयार होती है गिर जाती है, क्या उसको मजबूती प्रदान के लिए कोई किस्में तैयार की गई हैं?
0: जी, जैसा कि मैंने बताया कि सहभागी धान वो काफी अच्छी रहती है सूखे में, तो वो आप किसान भाई चुन सकते हैं सूखे में सहभागी धान। और इसके अलावा CSR 30 भी है, जो कि अगर आपकी मिट्टी उपयुक्त नहीं है, अगर वहां पर बहुत लवणी या क्षारीय मिट्टी है, तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। उसके अलावा सिंचित क्षेत्र में पूसा बासमती की वेराइटीज काफी अच्छी रहती है।
1: जो धान की नर्सरी डालना चाहते हैं हमारे किसान भाई, वो किन बातों का ध्यान रखें?
0: देखिए किसान भाइयों, जो जल्दी पकने वाली किस्म है, जो 120 से 25 दिनों तक जो पकने वाली किस्म है, उसकी जो नर्सरी प्रबंधन है उसका सबसे उपयुक्त समय है 20 जून तक। अगर आप अपनी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो 20 जून तक आप अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ज्यादातर किसान भाई गीली क्यारी विधि से बुवाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले खेत तैयार किया जाता है, उसके बाद पानी भरा जाता है और उसके बाद कल्टीवेटर, पडलर या देसी हल से गारा तैयार किया जाता है। अगर आपने गारा तैयार कर लिया है तो अब क्यारियां बनाने की बात करते हैं। क्यारियां बनाने के लिए 1.25 मीटर 1.25 मीटर चौड़ी क्यारी बनाना चाहिए और उसके बाद में क्यारियों की लंबाई आप सुविधा अनुसार भी रख सकते हैं। मोटे तौर पर लंबाई 5 से 8 मीटर तक हो सकती है और दो क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर की नाली रखनी चाहिए, क्योंकि ये नालियां अत्यधिक जल निकासी करने का काम करेगी। इसमें श्रमिक भाई जो है वो खरपतवार नियंत्रण के लिए बैठ भी सकते हैं और साथ साथ में ये पानी लगाने का भी काम कर सकती हैं। जब गारा बनाया जाता है खेत में, तब उस समय खाद और उर्वरक देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले आपको 700 से 800 क्विंटल प्रति 1000 वर्ग मीटर में आपको गोबर की खाद जब गारा बना रहे हैं उसी समय डाल देनी है, क्योंकि जब भी हम नर्सरी का एरिया लेते हैं वो 1/10 एरिया होना चाहिए। अगर आप 1 हेक्टेयर का ले रहे हैं तो वो 1000 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये एक पैमाना होता है नर्सरी का एरिया, आपको अगर निश्चित तौर पर डिसाइड करना है। उसके बाद में गोबर खाद डालते समय आपको 8 से 12 किलो यूरिया का प्रयोग करना है, उसके बाद 15 से 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, फिर 5 से 6 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, फिर 2 से 2.5 किलो जिंक सल्फेट। उसी के साथ जहां आप गोबर की खाद डाल रहे हैं उसी के साथ सभी को मिक्स करके जब गारा बना रहे हैं तभी आप उसमें मिला दीजिए। दूसरी तरफ इसी के साथ आपको बीज की तैयारी भी करनी होती है। बीज को तैयार करने का मेरा मतलब ये है कि बीजोपचार पर जाना। देखिए किसान साथियों, बीज उपचार करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आगे चलकर बहुत ही बीमारियां और कीट हमारे पौध को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले बीज उपचार के लिए आप बाविस्टीन और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन पानी में घोल बना लें। इन दोनों दवाइयों का बाविस्टीन की दर है 1 ग्राम प्रति लीटर। जैसे 10 लीटर पानी का अगर आपने घोल बनाया है तो उसमें 10 ग्राम बाविस्टीन घोल लें और उसी 10 लीटर में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी घोल लें और फिर घोल बना लें। इसमें 8 से 10 किलो बीज डाल सकते हैं। मोटे तौर पर रोपाई के लिए बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक होती है, लेकिन ये महीन किस्मों के लिए है। अगर हम मोटी किस्मों की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भी आपके बीज की मात्रा जा सकती है। तो जो बीज आपने दवाई में घोले थे उन्हें आप 24 घंटे तक उस दवाई के घोल में डुबो कर रखें। आपको 24 घंटे तक देखना है और उसके बाद में जब आप उस बीज को उस घोल से निकालें तो आप 4 से 5 घंटों के अंतराल में उस पे पानी का छिड़काव करें। जब आपने एक बार दवा में डाल दिए बीज, उसके बाद आपको टाट के बोरे के ऊपर आपको बीज बिछा लेने हैं और उसमें धूप नहीं लगने देनी है उनको। वापस से टाट के बोरे से उसको ढक देना है। 4 से 5 घंटे के अंतराल

0: में आप उस पर पानी छिड़काव कर सके और आप पाएंगे कि 24 से 36 घंटों के बाद में उन बीज का अंकुरण हो चुका होगा। फिर आप उन बीज को रोपाई के लिए आप उसको छिड़क सकते हैं जो आपने गाढ़ा बनाया था उसके अंदर। उसके अंदर जब आपने बीज छिड़काव किए हैं तो पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो अगर आपने छिड़काव कर दी तो उससे पहले भी आप उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी रख सकते हैं, या फिर आप हल्का सा पानी रोपाई के वक्त भी चला सकते हैं। किसान भाई, जब आपने रोपाई कर दी उसके बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए नर्सरी के देखभाल का विषय सामने आता है। सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण। अगर मैं रासायनिक तरीके से बताऊं तो रासायनिक विधि से 120 मिलीलीटर मचेती जो ब्यूटा क्लोर है उसको 60 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 2 से 3 दिन के अंदर में छिड़काव करें। इससे आपकी जो खरपतवार है वो नियंत्रित हो जाएगी। उसके बाद में आगे चल के काफी बीमारियां और कीट भी आते हैं, जैसे तना छेदक, स्टेम बोरर जिसको बोलते हैं, एक पत्ती लपेटक कीट भी आता है। इसके लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपोरिफॉस पर लीटर पानी में आप एक घोल बना लें। ऐसा आप 60 लीटर घोल बनाएं और उसमें छिड़क दें। और इसके अलावा एक झंडा रोग जिसको बकाने रोग भी बोलते हैं, ये भी बहुत प्रचलित रोग है, इसमें बहुत आता है। और अगर आपकी पौधशाला में ये रोग आया है और अगर 1 से 2 पौधे इससे ज्यादा प्रभावित हो गए हैं तो आप सारे पौध को निकाल कर फेंक दें, क्योंकि ये रोग ऐसा है अगर एक बार आ गया तो ये अपने पग पसार लेता है आपकी पौधशाला में। अगर सिर्फ आपको 1 से 2 पौधे प्रभावित नजर आ रहे हैं तो आप उन 1 से 2 पौधों को हटाकर अपनी नर्सरी सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ दवा भी आप डाल सकते हैं। जब आप रोपाई करेंगे तब आप 1 ग्राम बाविस्टीन प्रति लीटर पानी में घोल बना लें, फिर इसमें जड़ की तरफ से पौधे को डुबा कर रखें। 7 से 8 घंटे के बाद में आप वापस उसका रोपाई कर सकते हैं। बाविस्टीन इसमें बकाने रोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। किसान भाई, पानी कभी भी जब भी आपको पौधशाला में चलाना है तब आप दिन के समय पानी न दें, क्योंकि दिन के समय बहुत गर्मी पड़ती है और पानी गर्म हो जाता है, उससे आपकी फसल को बहुत नुकसान होता है। इसलिए पानी हमेशा शाम को चलाएं। अगर सुबह पानी लगाते हैं तो पानी बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए आपको पानी कब लगाना है, शाम को। पौधे में आगे चल के पीलापन की समस्या भी बहुत देखने को मिलती है। देखिए, पौधे में पीलापन की समस्या 2 कारणों से हो सकती है। पहला कारण ये है, या तो आपने गोबर की खाद उसमें नहीं डाली है, या फिर नाइट्रोजन की कमी हो गई है, यूरिया आपने सही तरीके से नहीं डाला है। और दूसरा जो बहुत मोटे तौर पर आता है वो इसका कारण ये है कि लोहे की कमी, नर्सरी में आयरन उसकी कमी मोटे तौर से देखी जाती है। सबसे पहले जो पीलापन है पत्तों का वो ऊपर से शुरुआत होगा, फिर नीचे के पत्ते पीले पड़ना स्टार्ट होंगे। अगर थोड़ा और आगे जाएंगे तो फिर पत्ते सफेद रूप में बदल जाते हैं, उसके बाद पत्ते भूरे हो जाते हैं और उसके बाद पूरा पौधा सूख जाता है। तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि अगर लोहे की कमी आपको नहीं आने देनी है तो नर्सरी में पानी की मात्रा को बरकरार रखें। इससे ये होगा कि लोहे की कमी नहीं आएगी। अगर कहीं पे भी बीच में पानी कम पड़ता है तो लोहे की कमी हमेशा देखने को मिलती है, इसलिए पानी को सुचारू रूप से चलाए रखें। तो अंत में यही कहूंगी कि इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी पौध अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल आयुषी पालीवाल जी, निश्चित तौर पे आपने जिस तरीके से बताया कि धान की उन्नत किस्में और नर्सरी प्रबंधन किस तरीके से करें, और विशेष तौर पे आपने नर्सरी प्रबंधन पे अच्छा प्रकाश डाला, और हमारे किसान भाई इस जानकारी से फायदा उठाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो पायल बहन, बहुत ही अच्छी जानकारी अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों को मिली है बासमती धान की उन्नत किस्में और नर्सरी प्रबंधन के बारे में। इसकी जानकारी दे रही थी डॉक्टर आयुषी पालीवाल, सस्य वैज्ञानिक पूसा नई दिल्ली, उनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। निश्चित रूप से हमारे जो किसान भाई हैं अब अपनी नर्सरी की तैयारी तो करेंगे ही पायल बहन।
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि देखिए अब मई के आप अंतिम सप्ताह में कई बार हमारे किसान भाई अगेती जो धान की बिजाई करने के लिए जो है अपनी पौध तैयार करने शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग जो जून के पहले सप्ताह में जा करके करते हैं।
3: बिल्कुल,
2: और देखिए आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए, और हम किसान भाइयों के लिए भी अत्यंत गर्व का विषय है और खुशी का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पायल बहन FAO के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान देश के किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और कृषि विकास के लिए किए गए कार्यों का वैश्विक स्तर पर सम्मान है, इसके लिए हम उन्हें हार्दिक बधाई।

0: बिल्कुल। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे किसानों को सीधा लाभ मिला है अतुल भाई। और कृषि क्षेत्र में उनकी दूरदर्शी सोच और प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FAO के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित करना हम सभी किसानों के लिए गौरव का विषय है, और हम उन्हें इस उपलब्धि के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए ये जो है ना, आज पूरे किसान समुदाय के लिए ये गर्व का क्षण है पायल भाई,
0: बिल्कुल
1: और ये जो सम्मान है ये हमारे पूरे देश के किसान भाइयों को भी मिला है उनके साथ साथ, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं भाई, उनका भी अथक प्रयास रहा है अपनी कृषि के अंदर।
0: प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने तथा खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया है अतुल भाई। और जो AFO द्वारा दिया गया ये एग्रीकोला मेडल है उनके नेतृत्व में, और कृषि क्षेत्र के प्रति उनका जो समर्पण है उसको प्रणाम है, एक तरह से हम उन्हें प्रणाम करते हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए एक और छोटी सी जानकारी हम भी लेकर के आए हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार भी जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं।
2: आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा। हम नहीं कहते, जमाना कह रहा है। अभी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को FAO जो संयुक्त राष्ट्र संघ का फूड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वैश्विक संगठन है, उसने सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और ये इसलिए दिया है कि फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, न केवल भारत की बल्कि दुनिया की इस मामले में चिंता की है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, गरीबी दूर हो, और उसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारे कृषि उत्पादों की, उसके लिए जो काम किया है, गरीबी दूर करने के लिए जो काम किया है, अलग अलग जो हमारे रिसर्च और शोध को बढ़ा के एक तरह से पूरी दुनिया में कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, इस दृष्टि से उन्होंने जो प्रयास किए हैं उसको पूरी दुनिया आज सराह रही है। भुखमरी समाप्त करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ काम किया है उनको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सम्मान केवल उनका सम्मान नहीं है, ये सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है, हमारे किसानों का सम्मान है, हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान है। लेकिन उनका नेतृत्व इतना उत्कृष्ट है कि वो हमको उस दिशा में प्रेरित करते हैं। श्री अन्न का ही उदाहरण देख लें, इसके पहले किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन ये तो सुपर फूड है श्री अन्न, और केवल देश के लिए नहीं दुनिया के लिए वो बात कर रहे हैं। एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, और उनके नेतृत्व में दुनिया से भुखमरी मिटे, और भारत केवल भारत के लिए नहीं है, भारत दुनिया का फूड बास्केट बने, इसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे।
1: श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला FAO के द्वारा दिया गया ये सम्मान जो है, इसी की जानकारी दे रहे थे श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार।
0: और चलते चलते अपने सभी किसान भाई बहनों को सुनवाते हैं एक गीत लोकेंद्र द्वारा।
3: धरती

0: पहल में ना भी हमारे भाई सुन रहे थे लोकेंद्र की आवाज़ में ये उपदेश, और अब घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है अपने सभी किसान बहन भाइयों से विदा लेने का। तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम
1: राम राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कुछ गज़ल सुनने का, तो लीजिए सबसे पहले आनंद लीजिए इस प्यारी सी गज़ल का, जिसे स्वर से सजाया है पंकज उदास ने।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे पंकज उदास की गाए कुछ गजलों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए

0: दिल्ली सरकार ने 12 दिवसीय संपर्क अभियान शुरू किया। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर रविवार को पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर प्रातः 6 बजे से शुरू होगी। दिल्ली सरकार बारिश के मौसम से पहले 75 सीएमश्री स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करेगी। और दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 195 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार राजधानी के सरकारी स्कूलों के कामकाज को बेहतर और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 12 दिवसीय जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस अभियान के 6वें दिन आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रधानाचार्यों के साथ वर्चुअल संवाद किया। एक रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री आशीष सूद ने कहा कि संवाद के दौरान उन्होंने आधुनिक कक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, आईसीटी लैब्स, विद्यालयों की सुरक्षा, विद्यालयों के मानसिक स्वास्थ्य और सीबीएसई के पैमानों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही नवाचार आधारित गतिविधियां, शून्य अपशिष्ट अभियान, नशा विरोधी जागरूकता, बेहतर आधारभूत संरचना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया। इस जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व शिक्षा मंत्री आशीष सूद और शिक्षा निदेशालय कर रहे हैं। इसका देश राजधानी के स्कूलों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल माध्यम से सीधे संवाद कर सरकारी स्कूलों के कामकाज को बेहतर बनाना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली मेट्रो की सेवाएं रविवार को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर प्रातः 6 बजे से शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सेवाएं 1 घंटे पूर्व शुरू की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस बैठक का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीयकरण, सांस्कृतिक जुड़ाव और विद्यार्थियों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत सहयोग को बेहतर करना था। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान दोनों संस्थानों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करने की रणनीतियों पर चर्चा की। साथ ही विश्वविद्यालय को वैश्विक शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के तरीकों पर विचार किया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने से संबंधित विभिन्न चुनौतियों और सहयोगात्मक पहलुओं पर भी बात हुई। चर्चा के दौरान सांस्कृतिक कूटनीति और छात्रों के कल्याण के महत्व पर भी बल दिया गया। इस संबंध में दोनों पक्ष विदेशी छात्रों के लिए योग सत्र शुरू करने पर सहमत हुए। इसके साथ ही भारतीय नृत्य और संगीत के सत्र भी आयोजित करने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कल्याणकारी परंपराओं से गहराई से परिचित कराना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: दिल्ली सरकार बारिश के मौसम से पहले 75 सीएमश्री स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समक्ष संबंधित अधिकारियों ने इस बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें विद्यालयों में मौजूद रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की स्थिति, उनकी कमियां और उन्हें कार्यशील बनाने की कार्य योजना रखी गई।
3: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी में वर्षा जल संरक्षण को मजबूत करना, भूजल स्तर सुधारना और छात्रों तथा समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में वर्षा जल संचयन के लिए गैर सरकारी संगठन एहसास प्रणाली को अपनाया जाएगा, जिसे दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 में स्वीकृति दी गई थी। इसके माध्यम से छतों से आने वाले वर्षा जल को फिल्टर कर स्टोरेज व बोरवेल से जोड़ा जाएगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा और सूखे बोरवेल को भी पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान कई कमियां पाई गयी, जिसे दिल्ली सरकार ने दूर करने के लिए विस्तृत सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत वर्षा जल पाइपों को उचित चैनलों से जोड़ा जाएगा, जल निकासी मार्गों की नियमित सफाई होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य के साथ शिवांग मिश्रा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
4: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 13 वर्षों के लंबे इंतजार के

0: बाद राजधानी में बड़े स्तर पर नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 15 मई से दोबारा शुरू कर दी गई है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय संकल्प को आधार बनाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके हैं।
2: 15 तारीख से डिजिटल ई पोर्टल के माध्यम से हम नए राशन कार्ड के आवेदन ले रहे हैं और पूरी तरीके से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्थाएं हमने शुरू की है। मैं जरूर इस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि हमने पूरी की पूरी राशन व्यवस्था को ही डिजिटलाइज किया है।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद राशन वितरण व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराया है। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं और जांच में लगभग 7 लाख अपात्र और फर्जी लाभार्थी पाए गए हैं।
2: 1,44,000 लोग ऐसे थे जो कि इनकम क्राइटेरिया के ऊपर थे। 35,800 लोग ऐसे थे जो कि राशन उन्होंने एक साल से लिया ही नहीं पर उनके नाम के राशन कार्ड लगातार चलते जा रहे।
1: उन्होंने बताया कि राशन दुकानों पर पारंपरिक वजन मशीनों की जगह ई वेइंग मशीनें लगाई जा रही हैं और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है।
2: राशन दुकान में जो कांटे हैं उसे हमने ई वेइंग मशीन में कन्वर्ट किया है, ई बायोमेट्रिक मशीन में कन्वर्ट किया जो कि पूरी तरीके से अटैच है राशन कार्ड के साथ।
1: उन्होंने जानकारी दी कि अब नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवार को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम आय प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण जमा करना होगा। इससे पात्रता की सही जांच हो सकेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। साथ ही इनमें पारदर्शी और त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया भी इनमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 के तहत राशन कार्ड के लिए अनिवार्य वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली विधानसभा की कार्यप्रणाली, गौरवशाली संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को निकट से समझने के लिए आज परंपरा लेखन समिति प्रबंधक के समूह ने परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने समूह से संवाद कर लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका, विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी।
3: हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम गौरव करते हैं अपने अतीत पर और उससे प्रेरणा लेकर भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। तो आज के दिन बहुत ही एक एकेडमिक डे है दिल्ली विधानसभा में, जो सब लोगों से यहाँ पे एक परिचर्चा हुई है और इतिहास के बारे में यहाँ पर उनको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, कॉफी टेबल बुक का सबने अवलोकन किया और सदन के पटल पर जाकर वहाँ भी सदन का अवलोकन किया। तो ये एक बहुत ही सुंदर अवसर है।
0: राजधानी के देवली विधानसभा तिगड़ी क्षेत्र के पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़कों के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विकास निधि से लगभग 1,61,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने ये जानकारी साझा की है। श्री विधूड़ी ने बताया कि इन विकास कार्यों का शुभारंभ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को करेंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कल से नमो भारत की 8 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। इसके तहत सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच और शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच सराय काले खां से मेरठ साउथ एक्स स्टेशनों के बीच ये सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही ये अतिरिक्त सेवा प्रदान करने के लिए 2 और ट्रेनें कॉरिडोर पर चलाई जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सक्रिय मादक पदार्थों के एक अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया है कि तस्करों के पास से लगभग 195 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए गए। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 मुख्य तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वो सतर्क रहें और अपने आसपास नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देकर नशे के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दें। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट

निषेध अधिनियम 2019 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम प्रतिबंधित हैं। दिल्ली सरकार में विकास मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि पशुओं की तस्करी, अवैध कुर्बानी और पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री मिश्रा ने आज आगामी बकरीद के मद्देनजर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बकरीद के दौरान केवल अधिकृत और निर्धारित स्थलों पर ही कुर्बानी की अनुमति दी जाए। साथ ही गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की हत्या या कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित किया जाए। श्री कपिल मिश्रा ने निर्देश दिए कि सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी ना हो। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री भी पूर्णतः गैर कानूनी है। उन्होंने इस प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने और ऐसी कोई भी शिकायत मिलने पर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवंशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। ये पहल निदान, परामर्श, रोकथाम, प्रशिक्षण और जन स्वास्थ्य जागरूकता को समाहित करते हुए एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से आनुवंशिक विकारों से निपटने का भारत का पहला व्यापक राष्ट्रीय प्रयास है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ये जानकारी सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं की शुरुआती जांच में असामाजिक तत्व शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ इनकी सक्रियता से जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50 यात्री रहेंगे। दोनों मार्गों पर वाहन से जा सकते हैं और ट्रैकिंग का रास्ता भी बहुत कम है। यात्रा मार्ग और जत्थे का ब्यौरा यात्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इन संस्थानों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। राजधानी में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल भी राजधानी में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं कल का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने 12 दिवसीय संपर्क अभियान शुरू किया। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर रविवार को पिंक लाइन, मजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर प्रातः 6 बजे से शुरू होगी। दिल्ली सरकार बारिश के मौसम से पहले 75 सीएमश्री स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करेगी। और दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 195 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मालिका, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे कुछ प्यारे से गीत। और आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना शोला और शबनम से ये गीत, जिसे आवाजें दी थी शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने। लीजिए, आप सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: साथियों, अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म खुदा गवाह से, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति द्वारा गाया था। दोस्तों, अगला गीत सुनवाने से पहले कुछ दो लाइन आपसे कहना चाहती हूँ। अगर दिल में रखो तो दिल से रखो, वरना दिल रखने के लिए दिल में मत रखो।

0: दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म दलाल से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फूल और कांटे फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत। साथियों, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती।

दोस्तों, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का गीत मालिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मुझे यानी आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज

0: नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के

0: सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit,

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासर मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और BJP लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं।

0: और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में एमएसएमई के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासिर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज को वसत देने और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने आज एक बार फिर यकीन दिलाया है कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और एलपीजी की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही हैं। एलपीजी की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोजाना तकरीबन 46 से 47 हजार टन एलपीजी तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: रसोई के मकसद के लिए एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और पिछले 3 दिन में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल ने मुतासिर मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज्यादा खतरे वाले मुल्कों जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफर किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निगलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीकशुदा इबोला मरीजों या मुश्तबा मरीजों से खून लेने के सबब बराह रास्त राब्ते में आए मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस से कबल हवाई अड्डे की सेहत ऑफिसर या हेल्थ डेस्क से फौरन रुजू करें। हुकाम ने मजीद कहा है कि किसी मुसाफिर के अपनी आमद के 21 दिन के अंदर ऐसी किसी बीमारी के आसार पैदा होते हैं तो उसे फौरन तिब्बी मदद तलब करनी चाहिए और अपने पिछले सफर के मुतालिक हिफ्जान सेहत के अहलकारों को खबर देनी चाहिए। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सेहत से मुतालिक बैन अलाक्वामी जाब्तों पर अमल आवरी और तहफ्फुज को यकीनी बनाने की गरज से सेहत जांच और अवामी सेहत के इकदामात के सिलसिले में ताउन करें। दिल्ली से दीपेंद्र और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि 21 मई तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा में इबोला की एक अनोखी किस्म बुंदी बोगियों से मुतालिक 650 मुश्तबा मामलात का पता चला है, जिसमें 144 अमवात भी शामिल हैं। इतवार को आलमी सेहत तंजीम ने इसे बैन अलाक्वामी तशबीश की एक अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया था, अलबत्ता उसने कहा था कि ये वबाई सतह पर नहीं है। सेहत की इस सूरत हाल के पेश नज़र भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होना थे मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल आज ही भारतीय हुकूमत ने अफ्रीका में रहने वाले, सफर पर जाने वाले या अफ्रीकी मुल्कों से वापस आने वाले इबोला वायरस से मुतासर लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। अब तक भारत में किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ज़रई पैदावार में इजाफा करके गजा की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल को मुस्तहकम करने और लाखों की किसानों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाकर दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश

0: किया है। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गजा और जरई तंजीम FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजे जाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि ये एजाज नए भारत के बढ़ते हुए वकार की एक अलामत है।
1: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख से 31 तारीख तक नई दिल्ली में मुनक्कद होना था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत अफ्रीकी यूनियन के सदर नशीं और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान मुशावरत की गई, जिसमें समिट और उससे वाबस्ता सरगर्मियों को मुनक्कद करने पर गौर खोज किया गया, जिसमें अफ्रीकी लीडरों और तरफेन की मुकम्मल शराकतदारी और शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत का एतराफ़ किया गया। इस सलाह मशवरे के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि चौथा भारत अफ्रीकी फोरम समिट बाद की किसी तारीख पर तलब करना ज्यादा मुनासिब होगा। समिट और इससे वाबस्ता मीटिंगों की नई तारीख बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा। भारत ने अफ्रीका के अवाम और वहां की सरकारों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि वो अफ्रीका की CDC की क्यादत वाली कोशिशों में तआवुन के लिए तैयार है, जिनका मकसद सेहत की मौजूदा सूरत हाल से निमटना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। भारत ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों, खुसूसन सरहद पार की दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुत्तहिदा आलमी कोशिशों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी खित्तों के खारिजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए MEA के सेक्रेटरी ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने और उनको पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी की माली एयानत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए मजबूत बैन अलाक़वामी तआवुन की अपील की। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाजाराई में आम शहरियों के तहफ़ुज़ के बारे में सलामती कौंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा हरीश प्रवर्तन ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मुड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी की बात है कि पाकिस्तान ने, जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है, उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो कुल्ली तौर पर भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश ने यह रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के स्कूल तलबा के एक वफद ने आज उपराष्ट्रपति भवन में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया ने सरकारी स्कूलों के गरीब और पसमानदा तबके के तलबा को एक तालीमी दौरे पर दिल्ली लाने के कदम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के दौरों से तलबा क्लासरूम से हटकर काफ़ी कुछ सीखेंगे और उनके नज़रियात में वसत पैदा होगी। नायब सदर जमहूरिया ने अपनी बातचीत में तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने मौजूदा माली हालात की वजह से हिम्मत न हारें। उन्होंने ये भी कहा कि तालीम से वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के अहल बनेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16वीं आसाम कानून साज असेंबली का स्पीकर मंतखब होने पर रंजीत कुमार दास को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जनाब दास का कानून साजी का वसी तजर्बा और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतजलजल अज़्म असेंबली के वक़ार और जमहूरी रिवायात को मजबूत करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए शदीद से शदीद तरीन गर्म

0: लहर की सूरतहाल के बारे में रेड अलर्ट किया है। इस तरह की सूरतहाल इस हफ्ते जारी रहेगी। इसी तरह के हालात दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और साहिली आंध्र प्रदेश में भी रहने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से अख्तितामी हफ्ता तक गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आइंदा 2 से 3 दिन तक गर्म और मरतूब मौसम रहने की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि सब हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक शदीद से शदीद तरीन बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल तक गरज चमक और झालाबारी के साथ तूफान की पेशगोई की है। इसी दौरान IMD ने अंडमान निकोबार जजायर, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, साहिली कर्नाटक, कोंकण, गोवा और शिमाल मशरक के खित्ते में आइंदा 2 दिनों तक बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बारे में भी पेशगोई की है। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइस ने आज मुंबई में कौमी स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और घंटी बजाने की रिवायती तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुब्रुस भारत और यूरोप के दरमियान एक कुदरती राहदारी है, नीज वो वसी तर मशरकी बहरे अरब और मशरक़ वस्ती के दरमियान एक राहदारी है जो उमंग, इख्तरा और मुस्तकबिल पर मरकूज खाके के साथ सियासी और इकतसादी इस्तेहकाम फराहम करती है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत कल अच्छी कारकर्दगी वाली निगहदाश्त मईशत तख्लीक देने के एक वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वजारत ने बताया कि इस तकरीब की अहम सरगर्मी मुअम्मर शहरियों के लिए जीवन ऐप और मुअम्मर अफराद की निगहदाश्त वाले करने वालों के बारे में जानकारी के शतायु डैशबोर्ड का आगाज करेगी। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी एक मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से सुदर्शन ने 53 गेंदों में शानदार 84 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फवाइद की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजामों को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिरखास सप्लाई मौजूद है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Countrywide. नमस्कार, कंट्रीवाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
3: हीट वेव जो हमारे समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज के टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में, जून महीने में, अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है।
2: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हम इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
3: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल था, काल बांडा में ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री, तो ये एक बैड

0: है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया, कर्नाटक कोस्टल एरिया, वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग वो जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो ऑरेंज और रेड अलर्ट का, अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
0: हीट वेव भी आजकल ये स्लो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव पे चलते बहुत कर कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो को ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें चार कलर जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये चार कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है। एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइंस होता है कि ऐसे ऐसा स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, NDMA या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो जो बताते हैं, यही हम कलर कोड वार्निंग के देके उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देख के उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
1: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से, और इसमें जो इसकी अवधि होती है और वो तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
0: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं? हमारे जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते हैं जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में, जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है, उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है, तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
1: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है, किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
0: देश के बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये तीन राज्य जो है मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर भी दिए हुए हैं, देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा, धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
1: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
0: ठीक है, हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे, दिल्ली में क्या है आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह में 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि एक दिन के अंदर, आज ये शाम को 4 बजे के बाद किया होगा, 6 बजे के बाद किया होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हेवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने AIML का टेक्निक टूल भी हम उसमें लगा के उस हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
1: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं को।
0: अर्बन हीट आइलैंड ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है। दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, दो चार

0: डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से। तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा। और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका एसी है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
1: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
0: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहला स्टार्ट हुआ, बहुत सारे स्टेट राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा। लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो आईएमडी की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान। तो ये हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है। ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
1: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है, एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
0: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का, इतना वो करना चाहिए जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है, या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा, या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली का, तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा, या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है। लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है। तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हमको एक्सट्रीम बोलते हैं। वो ऑलरेडी हर मंथ का, हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में, ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसा कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मॉनसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है, और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है, और थोड़ा हीटवेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण। बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है, तो उसके चलते ये जो सीजन में है उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं। लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का आईएमडी फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 तारीख अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है, एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मॉनसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मॉनसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रांग एलिनो होगा। ये हमारा जो फोरकास्ट, उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आंकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है, तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और इसका

0: जानकारी हमने पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं। लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है, जिसको हम बिलो नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारणतः तो ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, इसमें तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का फुटपाथ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। ये जनरल पैटर्न है। पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा, वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में, खासतौर पर हीट वेव की परिस्थितियों में, अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सके।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जो जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशियंट पीना चाहिए। ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहिए, क्या क्या करोगे, एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है, एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैल है उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सर अपडेट करते रहते हैं, हम जो परिस्थिति है, जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

0: What this does is this insulate the lower half of the people, the economy in that ladder. It insulates them from any food price related shocks. So that also is what the UN must have taken note of,
1: Right.
0: that when in a crisis like situation, when almost 810 million people continue to get free food, what happens is that any adverse impact of higher oil prices on food prices, food particularly, food grain, they are muted. So the adverse impact on consumption in that sense is much less. So
1: Right.
0: these are some of the measures that actually have helped the Indian economy. But please remember that,
1: Yes.
0: as I said, it's a mid-year update. There is a monsoon that is threatened by El Nino.
1: Yes.
0: So we will see it after 3 months or so
1: Right.
0: that where we stand. But as of now, it seems to me that the global agencies, including the UN, is looking at a growth rate which is not very high. Please remember, Indian economy needs to grow at 8% plus rate.
1: Right.
0: So at least 6% plus growth rate is something that you cannot easily dismiss.
1: Right. Now, the very last question. Now, countries such as ours, which are large importers of crude oil, also have to deal with the pressure of rising inflation when energy prices rise, as is happening right now. And that obviously has a direct impact on economic growth. So, how challenging is this for the Reserve Bank of India?
0: It is a big challenge, and the RBI Governor, Mr. Sanjay Manohotra, has already made some statements in this regard. He has said that if fluctuations in crude oil prices, he will look through them and not respond to these things with any interest rate actions. Now, this is reassuring, because what happens is that if there is inflation goes up, then Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee will be encouraged to come in and will look at interest rates and see in what way it can be tweaked. So one has to wait and watch to see what kind of final action the Reserve Bank of India will take. But there's no doubt the Reserve Bank of India will be closely engaged with what is really happening on the price front.
1: Yeah, we will know what the Reserve Bank of India decides, when it convenes its MPC next month in June. But on that note, Mr. A.K. Bhattacharya, thank you so much for joining us on Akashvani's Insights program.
0: Thank you very much for having me.
1: That was a discussion on the UN report on India's strong economic growth, key highlights. Listeners, you can listen to this program again on our YouTube channel, News on AIR Official, and on our mobile app, News on AIR.
2: Insights.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी, आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जाँच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस तथा एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 3 विकेट पर 32 रन बना लिए थे। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में अश्मिता चाहिला मलेशिया की गो चिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन हॉजमार्क से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:10 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। सुनते हैं विनीत गोस्वामी की आवाज में गजलें। संगत कलाकार है हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष, सारंगी पर पुनित सिसोदिया और तबले पर सलीम अहमद।

अभी आप सुन रहे थे विनीत गोस्वामी की आवाज़ में गजलें, कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडिल वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित प्रभात कुमार का राग पहाड़ी झंझोटी में सरोद वादन।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित प्रभात कुमार का राग पहाड़ी झंझोटी में सरोद वादन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DNM 810 किलो हर्ट्स पर। 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों

देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंद प्रेस चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, जहां हर धुन में छुपी है एक याद और हर गीत में बसा है एहसास। तो सुनते रहिए अपनी फरमाइश के ये गीत और शुरू करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, प्यार में जिद करने का अलग ही मजा होता है। कभी मुस्कुराहट मिलती है तो कभी मनाने का बहाना होता है। छोटी छोटी बातों में छुपा वही एहसास खास हो जाता है। सच्चा प्यार तो हर पल दिल के पास होता है। आप सुने थे अलका याग्निक की आवाज में ये गीत, फिल्म आप लौट चले। इस गीत की फरमाइश की थी साउथ एक्सटेंशन से खुशनुमा गीत गुरमीत, और इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक, परी स्वाति, देविका और पूरा चौधरी फैमिली ने।
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हाँ दोस्तों, सादगी की भी अपनी एक अलग पहचान है। बिना कुछ कहे भी वो दिल के पास होती है, न दिखावे की चाह न खुद पर गुरूर। जो सादगी में जीते हैं उनका अंदाज सबसे खूबसूरत होता है। अलका याग्निक और पंकज उदास की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म आदमी खिलौना है से। इस गीत की फरमाइश की है दिल्ली नागलोई से राजेंद्र जटोलिया, उषा चारू और संबल से छोटे अंसारी और आलम अंसारी ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DNM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
1: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी।
5: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जी हाँ दोस्तों, जब किसी से प्यार हो ना तो कुवारा मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार का एहसास भी इतना खास होता है ना कि हर खुशी में किसी को अपने साथ महसूस करता है, दिल जाता है बस यूं ही वो अपना बन जाए, और कोई अकेले से ज़्यादा उसका साथ रहना पसंद करेगा। अलका याग्निक की आवाज़ से मैं आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म जहाँ से, इस गीत की फरमाइश की थी उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने।
1: Hey guys! आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी। ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड

0: किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

किशोर कुमार और सपना की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म चाबहार से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाले, कमला रानी गीतिका, भानु प्रकाश और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से रशीद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना मोहम्मद कैफ अंसारी ने।

जब भी तुम्हें लिखने बैठते हैं, जब भी तुम्हें लिखने बैठते हैं, शब्दों से पहले तुम्हारा ख्याल आ जाता है। दिल की हर धड़कन बस यही कहती है कि तुम्हारा नाम आते ही चेहरा मुस्कराने लगता है। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लकी रहो मुन्ना भाई से। इस गीत की फरमाइश की थी रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू ने, और शास्त्री नगर भीड़सैर से किशन सप्पाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। इस गीत की फरमाइश की थी पंचकुला सेक्टर 9 से अंशु चुग, अश्वनी और गोविंद ने।

मोनाली ठाकुर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दम लगा के हैसा से। इस गीत की फरमाइश की थी चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सरोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद, और साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी पटियाली रोड से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया, आहिल, अरहान परिवार के सभी सदस्य ने।

0: शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सागर से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपके दोस्त प्रिया अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है। अब समाचार होंगे। समाचारों के बाद 12:10 पर इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होंगे। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे AIR लाइव न्यूज 24/7 पर। हमारे प्रसारण जारी है। जय हिंद।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म

0: हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। 3 सदस्यों की एसआईटी का नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चलाई थी। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। शिवम दुबे ने सबसे अधिक 47 रन बनाए। गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने 3-3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Navanita Adhikari Srivastav. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
2: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
1: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan yesterday said that India has presented a new model to the world by increasing agricultural production, strengthening food security and bringing positive changes in the lives of millions of farmers. Expressing happiness over the conferment of Food and Agriculture Organization FAO Agricola Medal to Prime Minister Narendra Modi in Rome, Mr. Chauhan said that this honor is a symbol of the growing prestige of New India. He said the world looks upon India's policies, leadership and humanitarian vision with respect. Railway Minister Ashwini Vaishnav yesterday held a high-level security review meeting in New Delhi with field officers. During the meeting, it was noted that preliminary investigations into several Recent fire incidents in trains have revealed the involvement of antisocial elements.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। लीजिए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। जी हाँ, गाने की आवाज से सुन लिया होगा हमने बहुत ही प्यारे कंपोजर विजू शाह के बारे में। आज हमारा शुरू का सफरनामा समर्पित है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अल्पना, और आज की शाम बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस संगीतकार की जिन्हें किंग ऑफ सिंथ कहा जाता है। जी हाँ, सिंथ क्यों, क्योंकि सिंथेसाइजर का उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है अपने गीतों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जो कि बहुत ही फेमस हुआ था अपने समय में, और अमित कुमार की आवाज़ में है ये गीत।

जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं आज विजू शाह कंपोज़र की। और आपको बता दें कि विजू शाह ने अपने कैरियर की शुरुआत अपने पिता कल्याण जी और चाचा आनंद जी के साथ की, लेकिन जब वो सोलो आए तो उन्होंने शोर ही मचा दिया संगीत की इस दुनिया में। और आपको हम उनके एक से एक अच्छे हिट्स तो सुनवाएंगे, और हम बताएं कि 90 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और सिंथेसाइजर से हर महफिल में उन्होंने जान फूंक दी थी। और इतने वर्सेटाइल उनके संगीत था, इतने अच्छे अच्छे गीत हैं कि आप सुनते ही रह जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत साधना सरगम की आवाज में। फिल्म विश्वात्मा से हमने ये गीत चुना है।

साथियों, क्या आप जानते हैं इस प्यारे से गीत के बारे में कि इस गाने के बीजू शाह ने 3 या 4 वर्जन बनाए थे, लेकिन हैप्पी वर्जन आज भी अमर है। और ऐसे ही और भी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया। और उसमें से एक और बहुत ही प्यारी मूवी है जो कि है मोहरा, जिसमें इतने अलग अलग अंदाज के गीतों को कंपोज किया था बीजू शाह ने कि इसके क्या कहने। तो चलिए उसी का एक वर्जन सुनते हैं, पंकज उदास की आवाज़ में और साधना सरगम की आवाज़ में, फिल्म मोरा से प्यारा सा गीत।

शाह, जी हाँ, बहुत ही अच्छे कंपोजर की। और अगर वीजू शाह की बात की जाए तो वो सस्पेंस फिल्मों के तो मास्टर कहे जाएं तो कुछ कम नहीं है, क्योंकि उनकी धुनों में वो नशा है जो आपको कुर्सी से बांधे रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म गुप्त की। गुप्त फिल्म का म्यूज़िक अगर आपने सुना है तो एक से एक खूबसूरत उसमें गीत हैं, और उसका जो टाइटल ट्रैक है उसका अपना मज़ा है। और सुनाते हैं हम आपको एक और बहुत ही बेहतरीन नगमा गुप्त फिल्म से, जिसमें आवाज़ दी है उदित नारायण, सुनीता राय और साथियों ने।

जी हाँ, आपने विजू शाह की इस ट्यून को सुना ही होगा और देखा कितना अच्छा साउंड और कितनी अच्छी धुन उन्होंने दी है। और इसी तरह से उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों में अपनी धुन दी है। और एक और भी बहुत ही हिट फिल्म रही है उनकी, वो है विश्व आत्मा, और उसके भी गीत बहुत ही प्यारे प्यारे और हिट रहे हैं। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, मोहम्मद अजीज़ और अमित कुमार, सपना बनर्जी मुखर्जी की आवाज़ में।

साथ ही बीजू शाह ने सिर्फ सीरियस फिल्म ही नहीं बल्कि बहुत ही कॉमेडी फिल्म में भी अपना जलवा दिखाया, उसके भी गीतों में संगीत दिया और वो भी बहुत हिट रही हैं उनकी फिल्में। तो चलिए एक अगला गीत सुनते हैं, फिल्म यूं होता तो क्या होता सी।

जी हाँ, अगर हम बात करें तो विदुषा इतने वर्सेटाइल थे कि उनके आपने एक से एक धुनी सुनी होंगी। अभी आपने गुप्त का संगीत सुना और इतना रोमांटिक गीत अभी आपने सुना। और लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसी फिल्म से गीत जो कि एक रहस्यमय फिल्म और उतना ही उसका रहस्यमयी संगीत था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्यापार फिल्म की। तो उसका टाइटल ट्रैक सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में।

तो साथियों ये थे बीजू शाह के वो नगीने जिन्होंने हमें 90 के दशक से लेकर आज तक बांधे रखा है। और उम्मीद है आपको ये स्पेशल शो अच्छा लग रहा होगा। लेकिन देखिए अभी रोके रहिए, अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक और प्यारा सा गीत आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अल्पना को इजाज़त दीजिए इस कार्यक्रम से, आगे भी सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम। और ये गीत जो हमने आपके लिए चुना है वो है धुंध द फॉक्स से, ये गीत है और बहुत ही प्यारा गीत है, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में रोमांटिक सॉन्ग है। तो चलिए सुनते हैं विजू शाह स्पेशल का ये आखिरी नगमा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, जो केंद्रित था विजू शाह पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज चैनल है। लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। 3 भारतीयों सहित 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कीर्तिमान बनाने वाली टीम में शामिल 3 भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी पालपुनुरी, संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। नेपाल के कामी रीता शेरबा ने भी एक नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम।

सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे पुराने यानी हमेशा की तरह यादगार फिल्मों से प्यारे प्यारे गीत, जो कि होंगे ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। गोल्डन एरा की ये खूबसूरत गीत में हमने सबसे पहले शामिल किया है आशा भोसले की आवाज़ में इस खूबसूरत गीत को, जो कि है फिल्म साहेब बीबी और गुलाम सी।

और अगला गीत जो हमने चुना है वो है फिल्म उमराव जान से, एक बार फिर आवाज़ आशा भोसले की, और बहुत ही प्यारा गीत है ये, चलिए सुनते हैं।

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ ही ये सुनहरे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई।

0: एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर भी बल दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। बैठक में समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसी गैर कानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। शीर्ष दो में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात के 230 रन के लक्ष्य को चेन्नई की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on PM Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the PM's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complementary.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली

0: ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में आपसी समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत और फ्रांस ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली में अगले महीने की पहली तारीख को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी आगे की तारीख पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुंदेलखंड के ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Ashish Abraham. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on PM Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the PM's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
2: The 8th India-France Maritime Cooperation Dialogue was held in Paris on Wednesday. It was co-chaired by Deputy National Security Advisor in National Security Council Secretariat, Pavan Kapoor, and Director General for International Relations and Strategy, Ministry for the Armed Forces of France, Guillaume Oleignia, and Director for Strategic Affairs, Security and Disarmament at the Ministry of Europe and Foreign Affairs, Mrs. Clary Rollin. The discussions focused on their shared commitment to strengthening operational cooperation for countering illicit maritime activities, including piracy and armed robbery, maritime terrorism, drug trafficking, illegal, unreported and unregulated fishing, as well as other hybrid threats. In a major development in the NEET paper leak case, a pediatrician from Latur, Dr. Manoj Shirure, has reportedly been taken into custody by the CBI. According to sources, investigating agencies suspect that Dr. Shirure allegedly purchased the NEET examination question paper for his daughter. A few days ago, CBI officials had visited his hospital in Latur and conducted an extensive inquiry. The Calcutta High Court has set up a special investigation team to probe the R.G. Kerr Medical College and Hospital rape murder case. The three-member SIT will be led by the Central Bureau of Investigation's Joint Director for the Eastern Zone. The court has asked the team to file its report by June 25th. The court's decision follows repeated concerns from the victim's family, alleging tampering of evidence and suppression of facts. Delhi government has announced a major initiative to strengthen water conservation in the national capital, with rainwater harvesting systems to be revived and made functional in 75 government schools before the onset of the monsoon. Delhi CM Rekha Gupta said that the move is expected to generate an annual rainwater harvesting capacity of nearly 50 crore litres. India Meteorological Department has issued a red alert for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for today, and it will continue this week. Similar conditions are likely to prevail over Delhi, Haryana, Chandigarh and coastal Andhra Pradesh. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 3:10 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीतों और गजलों का और आज के गीत गजल के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ आनंद लीजिए इस कार्यक्रम में खूबसूरत गीतों के साथ साथ बेहतरीन गजलों का। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ।

0: वसीम बरेलवी जी ने क्या खूब कहा है कि रात तो वक्त की पाबंद है, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है चराओं का सफर कितना है। जना आप सुन रहे हैं गीत और है गजलों का कार्यक्रम अपनी दोस्त सरिता के साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपका एक बार फिर स्वागत है गीतों और गजलों के कार्यक्रम में। रात आकर गुजर भी जाती है, रात आकर गुजर भी जाती है, एक हमारी सहर नहीं होती।

हाथों में हाथ थाम कर यूं ही चलते रहें, हाथों में हाथ थाम कर यूं ही चलते रहें, तुम मेरे हम सफ़र बनकर हर पल मुस्कुराती रहें। न कोई फ़िक्र हो राहों की, न मंजिल की कोई चाहत, न कोई फ़िक्र हो राहों की, न मंजिल की कोई चाहत, बस सफ़र में यूं ही तुम्हारी बाहों का बसेरा रहे।

यारों कुछ तो जिक्र करो उस कयामत बाहों का, यारों कुछ तो जिक्र करो उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर ही जाते होंगे। जी हाँ दोस्तों, और फिलहाल हम भी आपके साथ जुड़े हुए गीतों की और गजलों के कार्यक्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिसे सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में अगली नज़्म।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गीतों और गज़लों का ऐसे ही खूबसूरत से गीत के साथ। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4:20 हुए हैं और ये वक्त होता है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। आज के नाद ब्रह्म कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुश्री सिक्किल माला चंद्रशेखर का बांसुरी वादन। आपके साथ घटम पर हैं बी पद्मनाभन। त्यागराजा की रचना है। नीचे सुनते हैं सुश्री सिक्किल माला चंद्रशेखरन का राग कंबोजी में बांसुरी वादन।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना सुश्री सिक्किल माला चंद्रशेखर का बांसुरी वादन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई 2026। सुबह के 4:56 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं, माफ कीजिए,

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे शोल्डर मूवमेंट, कंधे के आसन और ताड़ासन के बारे में। 5:20 का वक्त रहेगा देशभक्ति संगीत के कार्यक्रम का। प्रातः 5:30 पर आप सुन सकते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन सकते हैं प्रातः 6:10 पर। प्रातः 6:40 का वक्त रहेगा कार्यक्रम चिंतन का। आज के चिंतन के कार्यक्रम में आप सुनेंगे तुलसी के राम। प्रातः 6:45 का वक्त है श्री रामचरितमानस से पाठ का। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 63।

कहते 7:10 का वक्त है संगीतिका का। 7:30 पर आप आनंद ले सकते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम का। 8:45 से आप आनंद उठाएंगे कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। कार्यक्रम का नाम है स्वर गंगा। गांधी चर्चा का वक्त रहेगा प्रातः 9:15। 9:30 पर पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10:00 आप आनंद ले सकते हैं 10:10 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का।

0: श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री एलेक्सिस वाफियाडिस, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी साथ है। राष्ट्रपति बनने के बाद श्री निकोस की ये पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के बारे में नई दिल्ली में कल श्री गोयल ने कहा कि ये यात्रा समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने जांच दल को 25 जून तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। परिवार ने आरोप लगाया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और तथ्यों को छिपाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान

के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। दिल्ली में 1 जून को होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी बाद में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार 5वें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा। वहां कल का अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। अहमदाबाद में कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर, अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। रात 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं, आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे कंधे के मूवमेंट और ताड़ासन के बारे में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों

को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज हम करेंगे सबसे सरल व सुखद आसन ताड़ासन, जिसे कहीं भी ऑफिस में, घर में, किसी भी प्रकार के कार्यस्थल पर सावधानी से किया जा सकता है, जिसको करने से पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक समस्त मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, विशेष रूप से हमारी पसलियां एवं विष्ठ की मांसपेशियां। जानते हैं इसे करने का तरीका। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को साथल से जंघा से मिलाकर रखें, धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में फंसाएं और श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर की ओर थोड़ा खिंचाव दें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, समस्त भार अपने पैर के पंजों पर ले आएं। तीन लंबे गहरे श्वास लें और प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में और ऊपर और ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करें, खिंचाव दें। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं। दोबारा इस आसन को करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर ले जाएं। इस बार एड़ियों को ना उठाएं, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं, कुछ देर रुकें, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं। पूरे शरीर में खिंचाव अनुभव करें, श्वास भरते हुए फिर बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को दो या तीन आवृत्ति दोहराएं, रिलैक्स अनुभव करेंगे। कहीं भी इस आसन को कर सकते हैं, अपने शरीर के तनाव को दूर करने के लिए, अपने को स्वस्थ अनुभव करने के लिए तनाव अथवा थकान की अवस्था में। धन्यवाद। और विशेष रूप से यह आसन बच्चों के लिए और भी ज्यादा लाभकारी है, उनकी लंबाई बढ़ाने में। विशेष रूप से 25 वर्ष तक की उम्र के लोग इस आसन को

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री मनीष शर्मा का राग भैरवी में जल तरंग वादन। आपके साथ तबले पर हैं शब्बीर हसन।